आकाशवाणी जोधपुर का ये एफएम सेंसिटिव चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की छठी तिथि। तदनुसार 27 जून सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हुए हैं। हमारी पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: FM 102.1 MHz पर ये FM सनसिटी चैनल है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रूपये है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में टी20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में

0: आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। एफआईएच पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएमएन 102.1 मेगाहर्ट्ज पर आइए अब सुनते हैं विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।
2: विविध भारती
3: वंदन वार।

0: फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.1 MHz पर आइए अब सुनते हैं विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।
2: विविध भारती
3: वंदन वार।

चिंतन। महर्षि वाल्मीकि का कथन है, किसी भी मनुष्य की इच्छा शक्ति अगर उसके साथ हो तो वो कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प मनुष्य को रंक से राजा बना देती है। भक्ति संगीत।

के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात

अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का अनाज भाग 232। संगीत सरिता में चल रही है श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार हैं वायलिन वादक SL कंटारा। आज सुनिएगा 10वीं कड़ी, प्रस्तुति मनीषा जैन की, सुबह 7 बजे भूले बिसरे की। 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी सुनिएगा। 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित होगा संगीतकार राहुल देव बर्मन पर। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत होगी गीतों भरी कहानी। आज की कहानी है उन दिनों की बात है, लेखक और वचन स्वर अरुण शेखर का।

दिन में 11 बजे चित्रपट संगीत, 11:30 पर मैटिनी शो। मैटिनी शो के अंतर्गत चित्र भारती प्रसारित की जाएगी। 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर। दिन में 2 बजे त्रिवेणी, 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 बजे मनचाहे गीत। 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत आप सुनेंगे नाटक कटीला रास्ता, इसका पहला भाग। मूल तमिल लेखक नित्या मूर्ति, हिंदी अनुवादक ए शौर्य राजन, निर्देशक वीपी दीक्षित बटुक। पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज में गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग आज शाम 4 बजे। 5 बजे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:05 पर तराने नए पुराने कार्यक्रम जारी रहेगा। 6:35 पर संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता के अंतर्गत वायलिन का विहंगम संसार, 10वीं कड़ी। जाने माने संगीतकार आरडी बर्मन द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला सुनवाई जाएगी शाम 7 बजे। 7:45 पर जिज्ञासा। 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनो कहानी श्रृंखला में मुंशी प्रेमचंद की कहानी नशा, वाचन अमरकांत दुबे का, प्रस्तुति हर्षवर्धन कवई की। 8:15 पर चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए, 9:30 पर आज के फनकार आर डी बर्मन पर केंद्रित। 10 बजे छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात, 11 बजे चित्रपट संगीत और मैटिनी शो।

चित्रकूट की सभा में गुरुजन, मातृत्रय तथा अयोध्यावासियों की उपस्थिति में भरत श्री राम के सम्मुख अपने अंतरतम के उद्गार प्रकट कर रहे हैं। उन्हें इस बात की प्रतीति है कि अपने हितैषियों, बुद्धिमान जन तथा स्वामी के सामने अधिक नहीं बोलना चाहिए। श्री राम के प्रति भरत का स्नेह और समर्पण देखकर उपस्थित समुदाय प्रेमातिरेक से शिथिल पड़ जाता है। स्वयं श्री रघुनाथ जी सम्मान भरे वचन के साथ उनका हाथ पकड़ अपने पास बिठा लेते हैं।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 10वीं और अंतिम कड़ी,
1: वायोलिन का विहंगम संसार। श्रृंखला की इस अंतिम कड़ी में हम स्वागत करते हैं सभी श्रोताओं का और जाने माने वायोलिन वादक पंडित एसएल कंडारा जी का। पंडित जी, आज इस अंतिम कड़ी में आपके गुरुजी श्रद्धेय पंडित राम नारायण जी के बारे में बात करेंगे।
2: बिल्कुल।
1: और चर्चा करेंगे राग भैरवी की भी।
2: जयंत जी, आपको बताना चाहता हूँ कि भैरवी कई शेड्स में मेरे गुरुजी ने बजाई है।
1: जी जी।
2: उसके विविध रूपों का प्रकटीकरण उनके वाद्य में हुआ।
1: हाँ।
2: उनका वाद्य तो आप जानते ही, सारंगी है, और सारंगी गज के वाद्यों में मदर इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है।
1: जी बिल्कुल।
2: मतलब वायलिन, चेलो, ये सब गज के वाद्य हैं, इसराज वगैरह। बट सारंगी इज ऑन टॉप ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट।
1: जी।
2: और पंडित राम नारायण के बारे में मैं कुछ कहूंगा तो आप कहेंगे कि चूंकि मैं उनका शिष्य हूँ इसलिए उनको टॉप पे रख रहा हूँ, लेकिन दुनिया उनको टॉप मानती है। तो उन्होंने भैरवी बहुत अच्छे ढंग से अलग अलग शेड्स में बजाई है, लेकिन मैं जिक्र करना चाहता हूँ उनकी भैरवी से पहले एक और वाक्य का, कि जो श्रोताओं को भी शायद उनके इन्फॉर्मेशन के लिए ऐड करेगा। वो वाक्य ये है कि पंडित जी जब फिल्मों में बजाते थे
1: जी,
2: तो वो फिल्म थी जो दो हंसों का जोड़ा, गंगा जमुना, उस फिल्म की रिकॉर्डिंग का प्रोसेस चल रहा था। तो नौशाद साहब को लगा कि ये दो हंसों का जोड़ा उन्होंने भैरवी में बनाई
1: जी,
2: ये गीत।
1: हाँ जी।
2: तो ये किसका लिखा हुआ गीत है?
1: शकील बदायूनी साहब का।
2: अच्छा, देखिए, एक से एक उम्दा लेखक थे उस समय, एक से एक उम्दा संगीतज्ञ संगीतकार थे
1: जी,
2: और उनके साथ जो टीम बनती थी उसमें क्या क्या लोगों ने बजाया। पंडित राम नारायण, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित शिव कुमार शर्मा, और भी पहले अली अकबर खान साहब वगैरह, उन्होंने भी बजाया फिल्मों में
1: जी,
2: पंडित रविशंकर ने भी बजाया। तो क्या कैटेगरी के लोग थे उस समय जिन्होंने फिल्मों में कंट्रीब्यूट किया म्यूजिक, और इस वजह से फिल्म म्यूजिक जो है बहुत रिच हुआ, उसमें बड़ी संपन्नता आई।
1: जी हाँ जी।
2: एक जिक्र करना चाहता हूँ मैं कि किस तरह से पुराने म्यूजिक डायरेक्टर अपने उस्ताद संगीतज्ञों का उपयोग करते थे।
1: जी।
2: मेरे गुरुजी ने बताया कि दो हंसों का जोड़ा जो फिल्म गंगा जमुना का जो गीत है, हाँ, उन्होंने नौशाद साहब ने बनाया, तो गुरुजी को कहा कि आप आ जाइए, ये गीत मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। गुरुजी अपनी सारंगी लेके पहुंचे और उन नौशाद साहब के घर पे पहुंचे तो उन्होंने गीत सुनाया और उन्होंने कहा, पंडित जी इसमें मैं चाहता हूँ कि कुछ सारंगी के पीसेस रिकॉर्ड हो जाएं।
1: हाँ।
2: तो गुरुजी ने कहा कि आप बताइए मैं क्या बजाऊं, नोटेशन बता दीजिए।
1: जी।
2: तो देखिए, बड़े लोग जो होते हैं वो ऐसे ही बड़े नहीं हो जाते हैं। नौशाद साहब ने

0: था कि मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, सारंगी के आप विद्वान हैं और भैरवी का गाना है, लता जी ने गाया है, और अब इससे ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और गुरु जी ने बैठ के कुछ घंटे भर में वो तीन चार जो भी पीसेस हैं बनाए, एक से एक उम्दा अद्भुत पीसेस हैं वो,
1: बेशक,
0: और रिकॉर्ड किए, रिकॉर्ड हुए। देखिए क्या शऊर था लोगों का, म्यूजिक डायरेक्टर्स का क्या स्टेटस था उस जमाने में, कि वो उस व्यक्ति को पहचानते थे कि ये क्या काबिलियत रखते हैं। आज के मामले में ऐसा संभव नहीं है। वो जमाने में गुलाम अली खान साहब ने कंट्रीब्यूट किया, आमिर खान साहब ने कंट्रीब्यूट किया, डीवी पलुस्कर साहब ने कंट्रीब्यूट किया, किस किन लोगों ने फिल्म म्यूजिक में हिस्सा लिया, वो लुप्त हो गया, पूरी परंपरा लुप्त हो गई। और ये जो गीत आज जब भी बजता है दोनसों का जोड़ा, तो बरबस ही कोई भी व्यक्ति पानी की दुकान पे हो, चाय की दुकान में हो, बाजार में हो, खड़ा खड़ा जब तक पूरा नहीं सुन लेता तब तक आगे नहीं हिलता। तो ये फिल्म संगीत का कैटेगरी और एक स्टेटस था, और मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि वो स्टेटस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर्स के भी थे। नौशाद साहब गुरुजी को छोड़ने आए कार तक, और गेट खोल के उनको कार में बिठाया, और ये होता नहीं आजकल। तो ये संपन्नता जो संगीत की है वो इस पीढ़ी के साथ लगभग चली गई, जिसका मुझे भी दुख है, आपको भी दुख है, और सब हम सब लोग उसको मिस करेंगे। मेरा कहना है कि इस गीत के अलावा गुरुजी का एक रिकॉर्ड अगर आप भैरवी का लग सके
1: जी,
0: तो श्रोताओं को जरूर सुना दीजिए।
1: अवश्य।

0: पंडित राम नारायण की बजाय सारंगी पर ये थी राग भैरवी की झलक। और अब राग भैरवी पर आधारित पंडित जी अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं वही गाना, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो जी। फिल्म का नाम है गंगा जमुना।
1: बिल्कुल।

0: भैरवी राग पर आधारित फिल्म गंगा जमुना का ये गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं, लता जी के स्वर में, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत, और इसी के साथ वायोलिन का विहंगम संसार, ये श्रृंखला आज यहाँ समाप्त हो रही है। हम विविध भारती परिवार की ओर से, सभी संगीत प्रेमी सुनने वालों की ओर से वायोलिन वादक पंडित SL कंडारा जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विविध भारती का और श्रोताओं का, जिन्होंने हमारे साथ रह के ये पूरी श्रृंखला सुनी, उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 10वीं और अंतिम कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित SL कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने, तबला संगति संतोष मिश्रा की। श्रोताओं, इस श्रृंखला में तकनीकी सहयोगी निखिल धामापुरकर और वंदना ठाकुर।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हम वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: रंगी तिरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे भूले बिसरे की।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आइए सुने बोले बिस्तरे गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और 27 जून का ये दिन बहुत ही खास दिन होता है संगीत के दीवानों के लिए, एक संगीतकार की याद का दिन। 1939 था वो साल जब भारत अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया राहुल, लेकिन आगे चलकर वो पुकारने के नाम से कहलाया पंचम और उसके बाद फिल्म संगीत का एक अनमोल सितारा बन गया।

साल 1961 था। महमूद ने एक फिल्म बनाई छोटे नवाब, और इस फिल्म के जरिए आए म्यूजिक की दुनिया के छोटे नवाब यानी राहुल देव बर्मन। बाकायदा डेब्यू हुआ और लता मंगेशकर के साथ हुआ। शैलेंद्र के बोलते घर आजा, घिराए बदरा सांवरिया, और जरा सोच

के बोलते घर आ जा, घिर आए बदरा सांवरिया। और जरा सोचिए कि एक ऐसा आगाज हुआ जिसकी प्रोग्रेशन का अंदाजा नहीं था, यानी ये यात्रा अपने उन्नत रास्तों पर पहुंचकर कहां चली जाएगी ये लोगों को अंदाजा नहीं था, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआती संकेत था। आर डी बर्मन ने एक एक कदम आगे बढ़ाए। उनके कुछ शुरुआती गाने हैं आज भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। फिल्म का नाम है भूत बंगला, फिर से लता मंगेशकर की आवाज है, इस बार बोल हसरत जयपुरी के।

1965 में आई फिल्म भूत बंगला का ये गाना आपने सुना। हसरत जयपुरी के बोल थे आर डी बर्मन की तर्ज थी। हसरत जयपुरी आर डी बर्मन अनयूजुअल पेयर, दोनों ने संभवतः यही एक फिल्म एक साथ की थी। और आपको बता दें कि भूत बंगला महमूद के निर्देशन वाली फिल्म थी और बहुत ही अनमोल फिल्म और बहुत ही अनयूजुअल अलग तरह का विलक्षण शानदार संगीत है। एक एक गाना अपने आप में कमाल। पंचम पर केंद्रित है आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। और अब तीसरा कौन फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, आनंद बख्शी के भूल हैं और आर डी बर्मन का संगीत। संभवतः यहां से आनंद बख्शी के साथ राहुल देव बर्मन की एक यात्रा शुरू होती है और उसके बाद ये यात्रा आने वाले कई दशकों तक चलती है। और आते हैं कुछ बेमिसाल गाने।

तीसरा कौन फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल, संगीत आर डी बर्मन का था। 1965 में ये फिल्म आई थी। आज बोले बिसरे गीत कार्यक्रम में कुछ बातें पंचम की और अभी एक छोटा सा अंतराल।

फिर कब मिलोगी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में था। कार्यक्रम की अगली पेशकश है ये आवाज मोहम्मद रफी की, साथ में मन्ना डे, आनंद बख्शी की बोल, आरडी बर्मन की तर्ज फिल्म का नाम चंद्र।

जमाने ने मारे जवां कैसे कैसे, ये गीत आपने सुना। और ये आज के बोले बिस्तरे गीत कार्यक्रम का आखिरी गाना था। आपको बता दें कि बहारों के सपने फिल्म का ये गाना मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था। अब आज का बोले बिस्तरे गीत कार्यक्रम खत्म होता है। इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: प्यार लम्हे और किससे
2: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ।

आइए सुने हम है राही प्यार के। कार्यक्रम का पहला गाना फिल्म का नाम यादों की बारात, किशोर कुमार और आशा भोसले, मजरू सुल्तानपुरी, आर डी बर्मन।

0: का हर कोना झंकृत हो उठता है जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोता

सुरों को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: उन्हीं तरंगों की तल पर आप विविध भारती के संग हैं और ये कार्यक्रम है हमें राही प्यार की।
1: मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
2: क्या?
1: अरे बाबा मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
2: मैंने नहीं सुना, जरा जोर से कहो।

फिल्म का ये गीत आनंद बख्शी का लिखा हुआ था। आर डी बर्मन की तरस थी, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें थी। इसी के साथ आज का हमें रही प्यार के कार्यक्रम अब खत्म हुआ। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
3: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी 0 कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहां हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले 1 महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा

0: हम आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सेंसिटी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर इस समय सवेरे के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार।

0: औद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
1: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्साकर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
2: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
4: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
5: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचरे का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
7: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को

0: बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने चार और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए सातवां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले टी20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और कैबो वर्दे तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
1: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ 12 अरब डॉलर का आंकड़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 102.1 MHz पर ये FM सेंसिटिव चैनल है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

भूमि, इस फिल्म का गीत सुनिए राहत फतेह अली खान की आवाज में। प्रिया सरैया के बोल हैं, सचिन जिगर का संगीत।

अरमान मलिक और अमाल मलिक की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे कपूर एंड सन्स फिल्म से। आइए अब सुनते हैं ओके जानू, इस फिल्म का गीत जुबिन नौटियाल की आवाज में, महबूब के बोल हैं, एआर रहमान का संगीत।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी जोधपुर का ये एफएम सेंसिटिव चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर। इस समय सवेरे के 8:30 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार, जिसे हम सूर्यनगरी चैनल से रिले करेंगे।
1: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान

0: कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज न करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिक दम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: जीवन को जीने के लिए जितनी सांस की जरूरत होती है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतनी ही आत्मविश्वास की जरूरत होती है। इसी सुविचार के साथ अभिनंदन, स्वागत, सुप्रभात, नमस्कार।

0: बिल्कुल श्रोताओं, इसी संदेश के साथ आपका फेवरेट प्रोग्राम मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार जो है शुरू हो चुका है, जिसमें आज के दिन से जुड़ी बेहद ही खास खास बातें हम जानेंगे और साथ ही सुनवाएंगे आपको बेहतरीन से गीत। लेकिन उससे पहले आपको करवाते हैं हमारी टीम से परिचय।
1: ट्रांसमीटर पर हमारे साथ हैं चंद्राराम पटेल और प्रकाश पवार।
0: कंट्रोल रूम से हैं सुनील जयपाल।
1: प्राइमरी चैनल पर उद्घोषक पुलाश दास।
0: एफएम चैनल पर हैं सोनिया देवड़ा।
1: नमस्कार, कार्यक्रम की प्रस्तुति और संयोजन है राजेश लामरोड का।
0: और इन सभी के साथ सूत्रधार के रूप में मैं हूं सोफिया खान
1: और मैं मीता मुल्तानी। दोस्तों, नया दिन नए सवेरे, इसी के साथ सुनते हैं गीत नए नवेले।

0: दोस्तों, सच्ची सफलता निरंतर प्रयास और कभी हार न मानने के दृढ़ संकल्प से ही मिलती है। इसी बात को हम एक प्रेरणादायक कहानी से सीखते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। उसे अपने जीवन में कुछ बड़ा करना था, इसलिए वह हमेशा ज्ञान और सफलता के नए रास्ते खोजता रहता था। एक दिन उसने अपने गांव के सबसे बुद्धिमान गुरु के पास जाने का फैसला किया। वह व्यक्ति गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन हर बार छोटी मोटी असफलताएं मुझे रोक लेती हैं। कृपया मुझे सफलता का रहस्य तो बताइए। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें इसका रहस्य कल सुबह नदी के किनारे बताऊंगा। अगले दिन सुबह वह व्यक्ति नदी के किनारे पहुंच गया। गुरुदेव भी वहां आ गए। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, चलो हम नदी के बीचों बीच चलते हैं। दोनों नदी में उतर गए। जैसे ही पानी उनके गले तक पहुंचा, अचानक गुरुदेव ने उस व्यक्ति का सिर पानी के अंदर डुबो दिया। फिर वह व्यक्ति हैरान रह गया मित्रों, और उसने बाहर आने के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन गुरुदेव ने उसे कसकर पकड़े रखा। जब कुछ सेकंड बाद वह व्यक्ति तड़फने लगा और उसका दम घुटने लगा, तब गुरुदेव ने उसका सिर पानी से बाहर निकाल दिया। बाहर आते ही उस व्यक्ति ने लंबी सांस ली और हांफने लगा। गुरुदेव ने पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? उस व्यक्ति ने तुरंत जवाब दिया, हवा की गुरुदेव। गुरुदेव ने गंभीर होकर कहा, यही तुम्हारी सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतनी ही तीव्र इच्छा एक पैशन के साथ चाहोगे जितनी बुरी तरह से तुम्हें पानी के अंदर हवा चाहिए थी, तो वह तुम्हें जरूर मिल जाएगी।
1: बिल्कुल, और इस कहानी से ये सीख मिलती है श्रोताओं कि जब हमारे लक्ष्यों को हासिल करने की हमें भूख होती है ऑक्सीजन की तरह, और जब वो हमारे जीवन मृत्यु का सवाल बन जाती है, तब दुनिया की कोई भी ताकत हमें सफल होने से नहीं रोक सकती।

तुम्हारे। दोस्तों, लाइफ में भी हम एक चीज के बिना अधूरे होते हैं और वो होता है हमारा भरोसा। बिल्कुल भरोसा कोई कमजोरी नहीं, ये तो इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और हमारी भी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कभी कभी लोग आएंगे श्रोताओं, कुछ आपका भरोसा तोड़ेंगे, कुछ आपका भरोसा बनाएंगे। रिश्तों में कभी खटास भी आएगी, लेकिन आप निराश मत होइए। वहां से शुरुआत करना खुद पर और वक्त पर भरोसा रखने की, क्योंकि भरोसा जीत का जरूरी होता है।

0: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
1: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायक हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
2: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायक हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।

श्रोताओं, जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वो ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर लें तो वही प्रेरणा बन जाती है। तो प्रेरणा लेनी है तो आप सभी लहरों से लीजिए, इसलिए नहीं कि वे उठती हैं और गिर जाती हैं, बल्कि जब भी गिरती हैं नए जोश से फिर उठ जाती हैं।

श्रोताओं कहते हैं कि चिंता करने से कल की मुश्किलें दूर नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है, आज की भी और कल की भी, और आज का जो सुकून है वो भी चला जाता है। इसलिए चिंता आप कम करें क्योंकि जो काम होना है वो तो होकर ही रहेगा। इसीलिए जो आपके पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कहें और जो नहीं है उसके लिए लगातार प्रयास करें।

दोस्तों, सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचें और मुस्कुराते रहें, क्योंकि दो ही चीजें ऐसी है जिन्हें देने में किसी का कुछ नहीं जाता।

श्रोताओं 9 बजने वाले हैं। नोट, अब वक्त हो चुका चला है प्रादेशिक समाचारों का। फिर आपसे मुलाकात होगी 9:10 पर।

0: आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। 9 बजने को हैं, कुछ ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले होंगे।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आज जयपुर में। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण अनुदान और सब्सिडी के चेक प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन कल से नई दिल्ली में और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए झुंझुनू के वायुसेना सार्जेंट सुरेंद्र मोगा का नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के रोल ऑफ ऑनर में शामिल किया गया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ।

0: और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर आज जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाले समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण अनुदान और सब्सिडी के डमी चेक प्रदान करेंगे। वे रीको की योजनाओं के लाभार्थियों को भी भूमि आवंटन पत्र और ऑफर लेटर सौंपेंगे। प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी ODOP कॉफी टेबल बुक और रैंप पोर्टल भी लॉन्च किए जाएंगे। इसी उपलक्ष्य में आज विभिन्न जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पाली में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लघु उद्योग भारती द्वारा निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। करौली जिले में भी केंद्र और राज्य सरकार की एमएसएमई क्षेत्र की योजनाएं आम जन के सपनों को पूरा कर रही हैं। अधिक ब्यौरा दे रहे हैं हमारी करौली संवाददाता।
1: एमएसएमई योजनाएं रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र करौली के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर जिले के हिंडौन, करौली और मासलपुर क्षेत्रों में अनेक औद्योगिक इकाइयां सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं। इन इकाइयों के माध्यम से बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं और महिलाओं को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलने के साथ साथ जिले में औद्योगिक विकास को नई गति मिली है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। बांकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री इस दौरान बालोतरा स्थित पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर में इस संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। श्री शर्मा ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी देश की पहली ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स है, जो प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने बालोतरा में होने वाली मुख्य सभा स्थल पर पार्किंग, पेयजल और सुरक्षा सहित आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ने वाली सभी ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और जिला मुख्यालयों में तकनीकी तैयारियां भी समय से पूरी करने को कहा है। उधर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी लोकार्पण करेंगे। उन्होंने बताया कि इस नए टर्मिनल के शुरू होने से जोधपुर सहित पूरे पश्चिमी राजस्थान की हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
2: जोधपुर का हवाई अड्डा केवल जोधपुर शहर के लिए नहीं, अभी तो पूरे पश्चिम राजस्थान के लिए एयर कनेक्टिविटी का एक बड़ा साधन है। पिछले वर्षों से जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, विकास हुआ, उसके चलते हुए हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में उड़ने लगे। जिस तरह की डिमांड बढ़ी थी, उस बढ़ी हुई डिमांड के चलते हुए पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत दबाव भी था और ये मांग की आवश्यकता थी कि हम एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनाए। ये सपना 4 तारीख को साकार होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे।
0: प्रधानमंत्री आज से सेशेल्स की यात्रा पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशेल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौ सैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित भी करेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन कल से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाले दो दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और

0: केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में गांवों के समग्र विकास, प्रमुख ग्रामीण योजनाओं की समीक्षा और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन और लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा भी होगी। सम्मेलन के दौरान ग्रामीण विकास योजनाओं में पारदर्शिता और गति लाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा एआई जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। राज्य में मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए किसानों को व्यापक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कल उदयपुर में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में इसके लिए निर्देश दिए। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को प्राकृतिक खेती तथा मशरूम उत्पादन से जुड़ी आधुनिक तकनीकें सिखाई जाएंगी। श्री गोयल ने उर्वरकों के पारदर्शी और वैज्ञानिक वितरण के लिए फार्मर्स फर्टिलाइजर्स फ्रेमवर्क को उदयपुर संभाग में तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा। उन्होंने राजकीय कृषि महाविद्यालयों के व्याख्याताओं को आधुनिक तकनीक से ऑनलाइन कक्षाएं चलाने के निर्देश दिए। आयुक्त ने मशरूम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा प्राकृतिक खेती से जुड़ी गतिविधियों का भी निरीक्षण किया। जयपुर में मातृभूमि अभियान के तहत 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी भवनों में वाटर रिचार्ज संरचनाएं बनाना अब अनिवार्य होगा। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कल रीको के अधिकारियों के साथ बैठक में इसके निर्देश दिए। उन्हें अधिकारियों को इन संरचनाओं की ई पंचायत एप्लीकेशन के माध्यम से जियो टैगिंग भी करने को कहा। बैठक में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा ने बताया कि अभियान के तहत हर ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड में चार चार वाटर स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। झुंझुनू जिले के मेहरादासी गांव के शहीद और भारतीय वायुसेना के सार्जेंट सुरेंद्र मोगा का नाम नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के रोल ऑफ ऑनर में शामिल कर लिया गया है। स्मारक की त्रिआयामी दीवार पर भी उनका नाम अंकित किया गया है। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले 6 जवानों में नाम में पहली बार आधिकारिक रूप से सार्वजनिक किए गए हैं, जिनमें सार्जेंट सुरेंद्र मोगा वायुसेना के और राजस्थान से एकमात्र शहीद थे। सार्जेंट मोगा को मरणोपरांत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वायुसेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया जा चुका है और वायुसेना ने नई दिल्ली में अपने एक विंग का नाम सुरेंद्र हॉल रखा है। इस सम्मान पर शहीद के पूरे परिवार और पूरे क्षेत्र ने गर्व व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आज जयपुर में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण अनुदान और सब्सिडी के चेक प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जुलाई को प्रस्तावित राजस्थान यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन कल से नई दिल्ली में। और ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए झुंझुनू के वायुसेना सार्जेंट सुरेंद्र मोगा का नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के रोल ऑफ ऑनर में शामिल किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचारों के बाद आपका पुनः स्वागत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में।
2: और कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि क्यों है आज का दिन इतिहास में खास। तो श्रोताओं, आज ही के दिन 1967 में लंदन के बार्कलेज बैंक में खोला गया था पहला एटीएम। इसका आइडिया जॉन शेफर्ड बैरन को एक चॉकलेट वेंडिंग मशीन देखकर आया था। उन्होंने इस तरह की 6 मशीनें बनाई थी और इन्हें अलग अलग जगहों पर लगाया भी था। सबसे पहले मशीन लंदन के इनफील्ड में बार्कलेज बैंक में लगाई और इस मशीन से सबसे पहले ब्रिटिश कॉमेडी एक्टर रैग वार्ने ने पैसे निकाले थे।
1: 1839 में सिख साम्राज्य के संस्थापक और शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर महाराजा रणजीत सिंह का निधन हुआ था आज ही के दिन।

0: और आज ही के दिन श्रोताओं 1957 में कई जगह आपने लिखे बात करें तो कई जगह आपने लिखा देखा होगा कि धूम्रपान से कैंसर होता है, तो आज के दिन साल 1957 में इसकी वैज्ञानिक पुष्टि हुई थी।
1: साल 1954 में सोवियत संघ ने मॉस्को के पास ओबनिस्क में दुनिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत की थी आज ही के दिन।
0: साल 2005 दिन आज का, और ब्रिटेन ने भारत की वीटो रहित स्थायी सदस्यता का समर्थन किया था आज ही के दिन।
1: साल 1964 दिन था आज का, यानी 27 जून को दिल्ली के तीन मूर्ति भवन में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया गया था आज के दिन।

0: और श्रोताओं, अब प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं काम की बात की। तो काम की बात ये है श्रोताओं कि गर्मी की छुट्टियां जो है वो ख़त्म होने के कगार पर है, या कहें ख़त्म हो ही गई है। तो इस गर्मी की छुट्टियां जो बची है एक दिन की, यानी कल संडे है, तो इसमें पेरेंट्स को क्या क्या ध्यान रखने चाहिए, आज की काम की बात जो है हमारी इसी से जुड़ी है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने से पहले आप बच्चों की दिनचर्या को धीरे धीरे सामान्य करें। उन्हें समय पर उठाना, समय पर सुलाना शुरू करें, उनका गृह कार्य पूरा करवाएं और सभी आवश्यक स्टेशनरी, किताबें, यूनिफॉर्म पहले से ही तैयार या व्यवस्थित कर लें। छुट्टियों के बाद स्कूल जाने की तैयारी को सुचारू और तनाव मुक्त बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जैसे छुट्टियों में बच्चों को के सोने की आदत बिल्कुल बदल जाती है, वे लंबी देर तक सोए रहते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, तो स्कूल खुलने से कुछ दिन पहले ही बच्चों को हर दिन 15-20 मिनट पहले उठाने और जल्दी सुलाने की आदत डालें। इसी तरह छुट्टियों के दौरान खोए या खराब हुए पेन, पेंसिल, नोटबुक, पानी की बोतलों को चेक करें। बच्चों के साथ मिलकर नया सामान व्यवस्थित करें और स्कूल को की खरीदारी के को उनके लिए रोमांचक बनाएं।
0: बिल्कुल, और स्कूल खुलने की जो सुबह भाग दौड़ होती है उससे बचने के लिए श्रोताओं, आप एक रात पहले ही यूनिफॉर्म और पॉलिश किए हुए जूते जो है वो एक जगह निकाल कर रख सकते हैं, और गर्मियों की छुट्टियों का सारा काम पूरा हो चुका हो ताकि आखिरी समय में बच्चे तनाव ना आए। इसीलिए जो ये प्रिपरेशन है ये ज़रूर करनी चाहिए आप सभी को। और बता दें कि छुट्टियों में जो जंक फूड और मीठी स्नैक्स की बजाय आप पौष्टिक और संतुलित आहार की भी एक प्लानिंग बनाएं, जिससे स्कूल जो खुल रहे हैं उस समय उनके बच्चों में जो है वो भरपूर ऊर्जा बनी रहे, और आपको भी एक टाइम टेबल बनाने में जल्दबाजी ना हो, क्योंकि सुबह सुबह जो है टिफ़िन बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि बनाएं क्या। तो पौष्टिक चीज़ों का एक टाइम टेबल आप बना सकते हैं ताकि आपके लिए आगे आसानी हो सके। और इसी छुट्टियों के दौरान बच्चों ने जो पढ़ा है उससे थोड़ा दोहरा लें।
1: इससे स्कूल शुरू होने पर उन्हें कोई भी काम करना है, जो कोई विषय सीखना है, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो पेरेंट्स और बच्चों दोनों को यूज्ड टू हो जाना चाहिए स्कूल खुलने से पहले। तो आज से ही आप लोग स्कूल खुलने से पहले की इन तैयारी को शुरू कर दीजिए और फिर देखिए बच्चे कितनी मस्ती से बम बम बोले बोलते हुए स्कूल जाएंगे।

इसी के साथ श्रोताओं अब हम आपको लिए चलते हैं खेल समाचारों की ओर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में नीदरलैंड्स ने ट्यूनीशिया को 3-1 से मात देकर ग्रुप एफ में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है और वह लगातार 10वीं बार नॉकआउट में पहुंच गया है। इसी के साथ जर्मनी का 11 मैचों का विजयी रथ अब थम गया, इक्वाडोर ने उसे 2-1 से हरा दिया है। आज के मुकाबले में कैप वर्डे का मुकाबला सऊदी अरब से सुबह 5:30 बजे शुरू हुआ था, उरेग्वे का स्पेन से और मिस्र का ईरान से सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ जो अब तक चल रहा है।

0: पनामा का मुकाबला इंग्लैंड से होगा और क्रोएशिया का मुकाबला घाना से होगा।
1: और श्रोताओं, बात करें हॉकी की तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में खेले गए प्रो हॉकी लीग के मुकाबले में पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी है। ये लंदन में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रो लीग का दूसरा मैच था और दोनों ही मैच भारतीय टीम ने जीते हैं और इससे पहले भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से भी शिकस्त दी थी।
0: इसी के साथ क्रिकेट की दुनिया में आयरलैंड ने पहले T20 में वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम को 34 रनों से हराकर इतिहास रच दिया। यह आयरिश टीम की भारत के खिलाफ 12 मैचों में पहली जीत रही। साथ ही बैडमिंटन में भारत के 18 वर्षीय युवा शटलर रौनक चौहान ने US ओपन में बड़ा उलटफेर करते हुए दुनिया के 6 नंबर के खिलाड़ी को हरा दिया है।
2: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ।
3: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
4: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कैसे क्लिक में, अरे वाह।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
8: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्लाह स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।

0: श्रोताओं, आज है 27 जून और आज के दिन हम मनाते हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है छोटे उद्यमों को सशक्त बनाना, महिलाओं और युवाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों को बढ़ावा देना और डिजिटल परिवर्तन और नवाचार पर जोर देना। ये क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 31.1% और देश के कुल निर्यात में लगभग 48.6% का योगदान देता है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, आज का दिन उन लोगों को समर्पित है और उन हुनरमंद हाथों को समर्पित है जो चुपचाप देश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं MSME यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को समर्पित दिन के, जिन्हें हम हमारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहते हैं। और आज इसी MSME यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम फोन

0: उट के माध्यम से जुड़ेंगे पूनम राठौर जी से, जो कि जनरल मैनेजर है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सेंटर जोधपुर में। हेलो
1: हेलो
0: हेलो पूनम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नमस्कार में।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो आज एमएसएमई डे है और इससे जुड़े जितने भी सवाल हैं और इस क्षेत्र में जो भी चुनौतियां हैं उसके बारे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये बनता है मैम कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसको सबसे ज़्यादा, ये जो सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र माना जाता है, लेकिन जो आज के दौर में एआई और डिजिटल तकनीक आई है, ये उन व्यापारियों के लिए एक अवसर के तौर पर हम देखें या एक चुनौती के रूप में?
1: जैसे आप आज जानते हैं कि आज एआई का दौर है, डिजिटल युग जिसको हम कहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो अगर हम लोग इस सिचुएशन को देखें तो अगर दोनों पहलुओं से हम देख सकते हैं, ये चुनौती भी है और अवसर भी है। इसमें जो उद्योग समय के साथ खुद को बदलेंगे वो आगे बढ़ेंगे, पर जो बचाव से बचेंगे उनके लिए कठिनाई होगी। अगर हम एआई को अवसर के रूप में देखें तो जो भी छोटे उद्योग हैं वो उसमें एआई का उपयोग करके अपनी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग, क्लाइंट सर्विसेज, नए मार्केट तक पहुंचने के लिए एआई एक बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है। बट जो तो मेरा मानना यह है कि एआई है वो इंसान की जगह नहीं लेगा, बल्कि एआई का उपयोग करने वाला जो व्यक्ति है वो आगे निकलेगा।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए एमएसएमई को अगर इस दौर में आगे बढ़ना है तो इस नई तकनीकी को अपनाने से डरे नहीं, बल्कि उसे अपने व्यवसाय का हिस्सा बनाने की जरूरत है, रेदर देन कि इसको एक चुनौती की तरह लें।
0: बिल्कुल, अगर ये इसका सही यूज होगा तो ये काम की ही बात है।
1: जी बिल्कुल
0: बिल्कुल। और जब हम एमएसएमई की बात कर रहे हैं तो इस सेक्टर की संबंधित ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनका फायदा हर छोटे और नए व्यापारी को अनिवार्य रूप से उठाना चाहिए? तो ऐसी कौन सी योजनाएं आप अगर हमारे श्रोताओं को बताना चाहें तो?
1: आज की दौर में मैम एमएसएमई एक बहुत बड़ा इकोनॉमी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान देता है, एंड इसी को देखते हुए चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि व्यवसायों के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए अपनाई जा रही हैं। तो उसमें मैं कुछ योजनाओं का नाम लेना चाहूंगी, क्योंकि डिटेल में अगर हम लोग जाएंगे तो बहुत डिटेलिंग हो जाएगी। और जैसे मैं अगर केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं का नाम लूं तो जिसमें है पीएमईजीपी, जिसे हम प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कहते हैं, तो उसके माध्यम से मार्जिन मनी जो सब्सिडीज है वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो पीएम विश्वकर्मा योजना हो। अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो वहाँ भी जो स्कीम इस सरकार की द्वारा लाई गई है वो है विश्वकर्मा युवा उद्यमिता योजना है, ट्रेड सेक्टर के लिए आरटीपीपी योजना चल रही है, एमएसएमई पॉलिसी जो स्पेशली एमएसएमई सेक्टर है उसकी कठिनाइयों को देखते हुए विभिन्न प्रकार के बेनिफिट्स इस पॉलिसी के थ्रू दिए जाते हैं, चाहे वो मार्केट असिस्टेंस हो, चाहे मार्जिन मनी सब्सिडी हो, चाहे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अगर वो अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं या डिजिटाइजेशन करना चाहते हैं तो उसमें भी एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट और सब्सिडी के रूप में उनको मिलता है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के बेनिफिट्स हैं जो कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो सब इस योजनाओं के माध्यम से एमएसएमई को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं।
0: बिल्कुल। और जब छोटे उद्योगों की शुरुआत की जाती है मैम तो उन्हें लोन मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इसके क्या उपाय हो सकते हैं?
1: ये बात बिल्कुल सही है कि जब छोटे उद्योग शुरुआत करते हैं तो हम लोग भी इस चीज को फेस करते हैं, क्योंकि जो डीआईसी है वो आपको सब्सिडी और अनुदान देने के लिए आपको एलिजिबल करता है, बट आपको लोन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए वो बैंक अपनी पूरी डिटेल स्टडी करके वो करते हैं। तो ये सही बात है कि बैंक अक्सर अनुभव हो या फिर आपके गारंटी है, आपके डॉक्यूमेंटेशन है, उनकी कमी के कारण बहुत ज्यादा संकोच करते हैं। और हमारे एक्सपीरियंस से हमें ये ध्यान में आया है कि जब भी कोई एप्लीकेंट या व्यवसायी है वो अपनी रिसर्च में कमी रखता है, अपने दस्तावेजों में जब कमी रखता है तो वो एक शंका उत्पन्न करता है बैंक में। बट अगर कोई

0: साई वाकई में जानकार है और कहीं उसने काम किया है और अनुभवी है और बैंक को ये गारंटी रहती है और बैंक सेटिस्फेक्शन रहता है कि ये अपना लोन है वो अच्छे से उसको रिइंबर्स कर पाएंगे, तो वो वाकई में ऐसे लोगों को परेशानी नहीं होती है। पर कई बार हमने ये देखा है कि व्यवसाय पहले जानकारी से पहले ही अपने उस उद्योग जो लगाना चाहता है उसके रिसर्च से पहले ही वो ये कोशिश करता है कि उसको वो लोन मिल जाए। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप कोई उद्योग लगाना चाह रहे हैं तो उनकी बारीकियों को बहुत ज्यादा समझें, उसके जानकार बने, उन सभी दस्तावेजों का आप नॉलेज लें कि जो बैंक में लोन लेने के लिए जरूरत है। अगर बिकॉज अभी मनी इज नॉट द इशू, आपको पैसा व्यवसाय करने के लिए मिल जाएगा। आज का जो सबसे मुख्य एसेट किसी व्यवसाय को चलाने का वो होता है नॉलेज। अगर आपको सही नॉलेज है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए, आपका उद्योग है उसकी बारीकियों के बारे में आपको पता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कठिनाइयां आपको आएंगी।
1: बिल्कुल, यानी कि दिक्कतें हैं लेकिन उनका सामना भी करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, उनके क्या उपाय हो सकते हैं इस सेक्टर में?
0: इसमें और प्रॉब्लम्स में मैं यही कहूंगी कि जैसे कई बार जो अक्सर हम लोगों ने योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान देखा है कि जो स्पेशली मैं लोन के लिए कहूंगी, तो इसमें है कि लोगों को ये लगता है कि अगर सरकारी योजना है तो हमें उसका जो लाभ है वो कई बार वो लोन लेते हैं और वो किसी और उसमें यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके की आप चीजें भी ना करें, मैं संदेश पहुंचाना चाहती हूँ। बिकॉज जिस काम के लिए आप उस लोन को ले रहे हैं उसका उपयोग उसी में करें। दूसरी जो इशू आता है वो अवेयरनेस का आता है। लोग जो कि आपके मिडल मैन होते हैं या फिर किसी प्रकार की भ्रांतियां फैलाते हैं कि इस तरीके की छूट आपको मिल रही है और आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, एंड भोले लोग होते हैं वो अपनी उनकी बातों में आ जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर ऐसा कभी कुछ हो, आप कोई उद्योग लगाना चाहें, तो आपको सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफिस में एक बार आपको जाना चाहिए। वहां पे आपको जानकारी देने के लिए वहाँ स्पेशल डेडिकेटेड सेल्स बनाई हुई है, तो आप पहले जानकारी लें। बिना जानकारी के आप कोई भी चीज शुरू नहीं करें। अगर आप जानकारी बिना अगर कोई चीज शुरू करते हैं तो वो फिर कठिनाइयों की तरफ और ज्यादा, जो कठिनाइयां नॉर्मली आनी चाहिए उनसे भी ज्यादा वो बढ़ जाती हैं। तो मेरा यही कहना है, मेरा यही संदेश है कि आप पहले सरकारी ऑफिस में आप ये पूरी जानकारी लें कि किस टाइप से आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं और जो भी समस्याएं आने वाली हैं आपके पर्टिकुलरली आपके उद्योग को लेके, उनके समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं और किस तरीके की योजनाएं हैं उनकी जानकारी आप जरूर लें।
1: यानी कि क्षेत्र में आने के लिए जो है आपको पहले जागरूक भी होना पड़ेगा।
0: बिल्कुल,
1: ताकि जो ये दिक्कतें हैं तमाम तरह की उनसे आपका सामना ना हो।
0: जी
1: बिल्कुल, और सरकार भी ऐसी योजनाएं चला ही रही है जिनसे छोटे छोटे उद्योगों को जो है, व्यापारियों को है, लाभ पहुंच रहा है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो एक आखिरी सवाल ये है मैम आपसे कि जो युवा खुद का नया स्टार्टअप या कोई छोटा बिजनेस शुरू करना चाह रहा है आज के दिन, तो उन्हें इस दिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: उनके लिए मेरा संदेश यही रहेगा कि कभी भी छोटी शुरुआत करने से कभी मत डरिए। कोई भी जो बड़ा उद्योग होता है वो एक छोटे विचार से शुरू होता है। मैंने अपने सर्विस के दौरान कई ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने एक सच्ची लगन, योजनाओं का उपयोग करके, सही जानकारी के साथ में, वो एक लेबर थे किसी यूनिट में और आज वो आज खुद एक एक्सपोर्टर और बड़े उद्यमी है। तो उनका मेन यही था कि वो कभी उस चीज से डरे नहीं और उन्होंने छोटी शुरुआत करी और आज बहुत बड़े मुकाम पे हैं।
1: मतलब डर के आगे जीत है।
0: बिल्कुल, डर के आगे जीत है। और आज हम आज का दौर देखें तो आज भारत है वो उद्यमिता का एक स्वर्णिम दौर देख रहा है। चाहे वो सरकार की योजनाएं हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, नई तकनीकें हो, सब में ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं।
1: मतलब तो कदम उठाने पड़ेंगे।
0: बिल्कुल, हम अगर कोई नौकरी तलाशने के बजाय अगर रोजगार देने वाले का संकल्प लें तो मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत होगी। जिस बेरोजगारी को, जिससे हम लड़ना चाह रहे हैं, उसका समाधान इसी में ही है कि जो हमारे देश के युवा हैं वो रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने।
1: बिल्कुल। तो पूनम राठौर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त जो है हमें

0: दिया।
1: थैंक यू थैंक यू सो
0: शुक्रिया
1: मच,
0: आप हमसे जुड़े।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम। तो श्रोताओं, अभी आपने सुनी पूनम राठौर जी से, जो कि जनरल मैनेजर हैं डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सेंटर जोधपुर में। एमएसएमई सेक्टर यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस पर हमने उनसे बातचीत की, और इस इंटरव्यू के प्रस्तुति और संयोजन रहा राजेश लामरोड़ का।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। श्रोताओं आज है शनिवार और शनिवार को हमारा स्पेशल सेगमेंट होता है शनिवार की रेसिपी। गर्मियों में तेज धूप और लू से बचने के लिए एक अचूक उपाय हमें कहा जाता है और वो है इमली और गुड़ का शरबत। तो आज हम आपको पिलाने जा रहे हैं गुड़ और इमली का शरबत। यह शरीर को लू से बचाता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, पाचन क्रिया को सुधारता है और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखने में बेहद मददगार होता है। मित्रों सबसे पहले इसके लिए हमें सामग्री चाहिए 100 ग्राम इमली, 100 ग्राम गुड़, 1 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर और आधा कप पुदीना के पत्ते। सबसे पहले इसको बनाने के लिए 3-4 घंटे हम इमली को भिगो देंगे और उसे फिर अच्छे से मसल कर छान लेंगे। उसमें 4 गिलास पानी डालेंगे। अब इसमें गुड़, काला नमक, काले मिर्च पाउडर, चाट मसाला, जीरा पाउडर और पुदीने के पत्तों को पीस कर डालेंगे। अगर ये सब ढंग से मिक्स नहीं होते हैं तो एक बार मिक्सर में इसको चला लेंगे और उसके बाद बर्फ डालकर ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तेज गर्मी और उमस अक्सर पाचन तंत्र को कमजोर कर देती है, तो ये जो शरबत है ये आपको बेहद ही ताजगी देगा। इमली में मौजूद टार्ट्रिक एसिड और फाइबर पेट को साफ रखने और कब्ज को दूर करने में मदद करते हैं। इसी तरह मित्रों गुड़ पाचन एंजाइमों को सक्रिय करता है जिससे खाना जल्दी पचता है और एसिडिटी की समस्या नहीं होती। तो बस बनाइए आप भी गुड़ और इमली का शरबत।

0: और श्रोताओं, आज जन्मदिन मना रही है जानी मानी ट्रैक एंड फील्ड एथलीट, जिन्हें भारतीय ट्रैक एंड फील्ड की रानी और उड़न परी के उपनामों से भी जाना जाता है, यानी हम बात कर रहे हैं पीटी उषा की। आज ही के दिन यानी 27 जून 1964 में इनका जन्म हुआ। और इनकी उपलब्धियों की बात करें तो अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक उन्होंने 1982 के नई दिल्ली के एशियाई खेलों में 100 मीटर और 200 मीटर में रजत पदक के रूप में जीता था। बात करें 1986 की तो सियोल के एशियाई खेलों में भी इतिहास रचते हुए 200 मीटर और 400 मीटर बाधा दौड़ में कुल 4 स्वर्ण पदक उन्होंने जीते थे। और बात करें उनके करियर के सबसे यादगार पल की श्रोताओं, तो 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में उन्होंने ओलंपिक एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली वो पहली भारतीय एथलीट बनी थी।
1: इसी के साथ श्रोताओं, आज हम जयंती मना रहे हैं जानी मानी नृत्यांगना और कोरियोग्राफर अमला शंकर की, जिनका जन्म 27 जून 1919 में हुआ था। इन्होंने उस दौर में नृत्य का प्रशिक्षण लिया जब महिलाओं के नृत्य करने को समाज में उचित नहीं माना जाता था। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 2011 में उन्हें बंग विभूषण से सम्मानित किया था। साल 2012 में संगीत नाटक अकादमी टैगोर रत्न पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। 24 जुलाई 2020 को इनका निधन हो गया।
0: और आज हम जन्मदिन जयंती के अवसर पर याद कर रहे हैं तमिल भाषा के सुविख्यात साहित्यकार, उपन्यासकार, पत्रकार, नाटककार अकीलन जी को। आज ही के दिन 27 जून 1982 को तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था।
1: साथ ही श्रोताओं, आज हम याद करते हैं हिंदी सिनेमा के जाने माने गायक नितिन मुकेश को, जिनका आज जन्मदिन है। 27 जून 1950 को जन्मे नितिन मुकेश ने कई यादगार गीत भारतीय सिनेमा को दिए। नितिन मुकेश ने बॉलीवुड के कई संगीतकारों जैसे बप्पी लहरी, खय्याम, आरडी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ बेहतरीन काम किया। फिल्मी गीतों के अलावा नितिन मुकेश अपने सुमधुर भजनों के लिए भी जाने जाते हैं। इनके लोकप्रिय गीतों की बात करें तो उसमें क्रांति फिल्म का जिंदगी का न टूटे लड़ी, सो गया ये जहां, फिल्म तेजाब, माय नेम इज लखन, फिल्म राम लखन जैसे कई सारे गीत हैं। अपनी सादगी और सुरीली आवाज के दम पर संगीत प्रेमियों के दिलों पर अपनी अलग पहचान बनाई है नितिन मुकेश ने। तो सुनते हैं उन्हीं की आवाज में ये प्यारा सा नूरी फिल्म का गीत।

0: श्रोताओं, पुण्यतिथि के अवसर पर हम याद करते हैं अपने अदम्य साहस और युद्ध कौशल के लिए मशहूर भारतीय सेना के इतिहास में स्वर्णिम दस्तखत करने वाले कुशल सैनिक सेम मानेकशॉ को, जिन्हें फील्ड मार्शल सेम बहादुर के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा के साथ की।
1: और साल 1969 की श्रोताओं बात करें तो ये भारतीय सेना के 8वें सेना अध्यक्ष बने। उनकी अध्यक्षता में ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 में हुए युद्ध को जीता था। देश के लिए विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें 1972 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। और भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने भारत के लिए कई अहम जंगों में अपनी निर्णायक भूमिका निभाई थी।

आकाशवाणी जोधपुर का ये एफएम सेंसिटिव चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर। इस समय सवेरे के 10 बजे हैं और अब समय हो गया है कार्यक्रम एक फनकार का।

0: कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
5: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया, विराम मंडो।
4: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
6: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
7: हेलो नमस्ते आदाब दोस्तों, आप सभी प्रिय श्रोताओं का स्वागत है आप ही के अपने फेवरेट प्रोग्राम, नाम है जिसका एक फनकार। बिल्कुल, इस कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिसके गाने आज भी आपके दिलो दिमाग पे बहुत ही घूमते हैं और ताज़ा भी हैं। और स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में, मैं हूँ सूफिया खान।
8: और मैं मीता मुल्तानी।
7: और कंसोल पर हमारे साथ है सोनिया देवड़ा।

0: बिल्कुल श्रोताओं, आप जान ही गए होंगे कि आज के फनकार में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। बिल्कुल, शोले फिल्म से ये मशहूर गाना आपने सुना आरडी बर्मन की आवाज में।
1: बिल्कुल, भारतीय हिंदी सिनेमा में एक महान संगीतकार के रूप में प्रसिद्ध

0: आर डी बर्मन को आज हम याद कर रहे हैं उनकी जयंती पर। आर डी बर्मन का पूरा नाम राहुल देव बर्मन था और फिल्मी दुनिया में वे पंचम दा के नाम से विख्यात थे। उन्होंने अपने कैरियर के दौरान लगभग 300 फिल्मों में संगीत दिया। मधुर संगीत से श्रोताओं का दिल जीतने वाले संगीतकार राहुल देव बर्मन के लोकप्रिय संगीत से सजे गीतों में आज भी हम तरोताजा हो उठते हैं।
1: बिल्कुल श्रोताओं, आर डी बर्मन जो है ऐसे किस एक अलग ही संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं। उनके जो इंस्ट्रूमेंटल हैं वो बेहद ही खास होते थे। उन्होंने पश्चिमी जो म्यूज़िक है उसको मिलाकर कई सारी धुनें तैयार की थी, और उनकी धुनों की अगर हम बात करें तो उनका अगला गीत तरफ आपकी तरफ आ रहा है।

0: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
1: श्रोताओं, आरडी बर्मन का पूरा नाम राहुल देव बर्मन था। उनका जन्म 27 जून 1939 को कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल कोलकाता से प्राप्त की। बाद में उन्होंने उस्ताद अली अकबर खान से सरोद भी सीखा। आरडी बर्मन के पिता एसडी बर्मन, सचिन देव बर्मन जिन्हें हम कहते थे, उनका एक जाने माने संगीतकार थे और उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत अपने पिता के सहायक के रूप में ही की थी।
2: बिल्कुल श्रोताओं, और आर डी बर्मन जो है वो संगीत जगत में, सिनेमा जगत में पंचम दा के नाम से जाने जाते थे। आर डी बर्मन जो है वो बचपन में जब भी गुनगुनाते थे श्रोताओं, तो प शब्द का ही ज़्यादा यूज़ करते थे। और ये बात जो है अभिनेता अशोक कुमार के ध्यान में आई। सारे गामा पा में प का स्थान जो होता है वो होता है पाँचवा, इसीलिए उन्होंने राहुल देव बर्मन को पंचम नाम से पुकारना शुरू कर दिया और इसी के साथ धीरे धीरे उनका ये नाम भी काफ़ी लोकप्रिय हो गया। और अब श्रोताओं, एक सुपरहिट सा सॉन्ग और सुनवाते हैं आपको, फिल्म कार।

0: मित्रों, आरडी बर्मन को संगीत में प्रयोग करने का बेहद शौक था। नई तकनीक को भी वे बेहद पसंद करते थे। उन्होंने विदेश यात्राएं कर संगीत संयोजन का अध्ययन किया। 27 ट्रैक की रिकॉर्डिंग के बारे में उन्होंने ही जाना।
1: बिल्कुल, और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का भी उन्होंने काफ़ी प्रयोग किया और कई सारी चीज़ें जैसे कंघी हुई और ऐसी ऐसी चीज़ों का उन्होंने उपयोग किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता अपने संगीत में। और भारतीय संगीत के साथ साथ उन्होंने पाश्चात्य संगीत का भी भरपूर प्रयोग भी किया। और आर डी बर्मन के बारे में श्रोताओं कहा जाता है कि वो समय से आगे के संगीतकार थे। उन्होंने अपने संगीत में वो प्रयोग करके दिखाए थे जो आज

0: के संगीतकार भी कर रहे हैं।
1: आरडी बर्मन को युवाओं के संगीतकार भी कहा जाता है मित्रों। उनका संगीत युवा वर्ग को बेहद पसंद आया। उनके संगीत में बेफिक्री, जोश, ऊर्जा और मधुरता है जिसे युवाओं ने पसंद किया। दम मारो दम जैसी धुन उन्होंने उस दौर में बनाकर तहलका मचा दिया था। तो सुनते हैं वही गीत।

0: बिल्कुल श्रोताओं, इस गीत को सुन के तो आप जाने गए होंगे कि और ये बात एकदम सटीक बैठती है उनके ऊपर कि वो समय से आगे के संगीतकार थे।
1: बिल्कुल श्रोताओं, आरडी बर्मन का संगीत आज का युवा भी सुनता है। समय का उनके संगीत पर कोई असर नहीं हुआ। पुराने गानों को रिमिक्स कर जो पेश किया जाता है उनमें आरडी द्वारा संगीतबद्ध गीत ही सबसे अधिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि आरडी ने धूम धड़ाके वाली धुनें ही बनाई। गीतकार गुलजार के साथ राहुल देव एक अलग ही संगीतकार के रूप में नजर आते हैं। इस तरह से उनका बहुआयामी व्यक्तित्व हमें उनके संगीत से प्रभावित करता है।

0: उफ़, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
5: आज ही पधारें लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया, विराम मंडो।
4: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
6: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
7: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
8: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 102.1 FM पर, कार्यक्रम है एक फनकार, और हमारी आज की एक फनकार में फनकार है राहुल देव बर्मन, जिन्हें हम प्यार से पंचमदा कहते हैं। मित्रों, पंचमदा भारतीय संगीत के जादूगर थे, वे अपने संगीत में नित्य नए प्रयोग करते थे। फिल्म शोले का सदाबहार गाना महबूबा महबूबा आरडी बर्मन का गाया हुआ पहला गाना था, जिसमें उन्होंने खुद अपनी आवाज दी थी, और इस गाने के संगीत के लिए उन्होंने किसी पारंपरिक वाद्य यंत्र का उपयोग करने के बजाय बियर की खाली बोतलों से धुन बनाई थी। मित्रों,
9: बिल्कुल श्रोताओं, और अब जो गाना सुनवाने जा रहे हैं वो युवाओं की धड़कन है, ऐसा गीत है, और उसमें ऐसी बेफिक्री है श्रोताओं, जो है प्यार का जुनून जो कभी भी पुराना नहीं होता। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं साल 1973 में एक फिल्म आई थी यादों की बारात, और इस फिल्म का एक एक गाना जो है वो सुपरहिट था। अभी जो हम आपको गाना सुनवाने जा रहे हैं, मजरू सुल्तानपुरी के लिखे खूबसूरत अल्फाज हैं, किशोर कुमार और आशा भोंसले की।

0: दोस्तों, आरडी बर्मन ने लगभग 300 फिल्मों में संगीत दिया, जिनमें 292 हिंदी फिल्में थी। इसके अलावा उन्होंने बंगाली, तमिल, तेलुगु और उड़िया फिल्मों के लिए भी संगीत दिया।
1: और रमिता, जब उनकी फिल्मों की बात ही हो रही है तो एक फिल्म मुझे याद आ रही है, 1977 की फिल्म यानी 1977 में आई थी हम किसी से कम
0: हाँ,
1: नहीं।
0: हाँ, बिल्कुल
1: उसका गाना तो याद है ना आपको?
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल, ये गाना है बचना है हसीनो। गाना आरडी बर्मन के संगीत, श्रोताओं और किशोर कुमार की आवाज के साथ एक सुपर हिट सॉन्ग है। जब भी इसे सुनते हैं तो ताजा ही लगता है।
0: बिल्कुल।
1: और इस गाने को आपको पता ही है, ऋषि कपूर पर पिक्चराइज किया गया। और ये एनर्जेटिक ट्रैक अपने खास ट्रम्पेट म्यूजिक और 70 के दशक की स्टाइल के लिए आज भी लोकप्रिय है। तो आइए आप और हम मिलकर सुनते हैं ये सुपरहिट सा सॉन्ग।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 102.1 FM और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप एक फनकार। और हमारी आज की फनकार है प्रसिद्ध संगीतकार आरडी बर्मन। आरडी बर्मन ने फिल्म तीसरी मंजिल के लिए जो मशहूर गीत आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, इसके लिए संगीत की धुनें बनाई, तो इसका एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है मित्रों। आरडी बर्मन ने इस गाने का वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड और रॉक एंड रोल संगीत तैयार किया जो उस समय के भारतीय संगीत से बिल्कुल अलग था। जब आशा भोंसले को यह धुन कंपोजिशन सुनाई गई और मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे बोल दिए गए तो उन्हें लगा कि वे इसे नहीं गा पाएंगी और उन्होंने आरडी बर्मन से इसे बदलने के लिए कहा। पंचम दा ने धुन बदलने से इनकार कर दिया और आशा जी को इसे एक चुनौती की तरह लेने को कहा। फिर आशा जी ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। पूरे 10 दिनों तक उन्होंने इसकी जमकर रिहर्सल की और आखिरकार मोहम्मद रफी के साथ मिलकर ऐसा जादू बिखेरा कि यह गीत हिंदी सिनेमा का सबसे बेहतरीन डांस नंबर बन गया। तो सुनते हैं वही गीत।

0: श्रोताओं, एक फनकार में हम बात कर रहे हैं आज आर डी बर्मन के बारे में। बिल्कुल, आर डी बर्मन के एक से बढ़कर एक गीत भी आपको सुनवा रहे हैं। और श्रोताओं, आपको बता दें कि आर डी बर्मन के जो पिताजी हैं एस डी बर्मन यानी सचिव देव बर्मन, उनको अपने साथ रखते थे। इस वजह से आर डी बर्मन को जो लोक गीत होते थे, जो वाद्य होते थे और जो आर्केस्ट्रा होती थी, उनकी समझ जो है वो बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। और जब एस डी बर्मन आराधना का संगीत तैयार कर रहे थे तो उस टाइम वो काफ़ी बीमार हो गए थे, तो आर डी बर्मन ने बड़ी कुशलता से उनका काम संभाला था और इस फिल्म की ज़्यादातर धुनें उन्होंने तैयार की थी। और बात करें, आर डी बर्मन को बड़ी सफलता मिली थी, वो मिली थी अमर प्रेम फिल्म से, और गाना था चिंगारी कोई भड़के और कुछ तो लोग कहेंगे। ये ऐसे गीत हैं जो उन्हें बेहतर और अलग बनाते हैं।
1: बिल्कुल श्रोताओं, इसी तरह एक फिल्म आई थी आंधी, जिसका गाना था तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। इस गीत को सुनकर कभी लगा नहीं कि ये दम मारो दम का संगीत देने वाले राहुल देव बर्मन का संगीतबद्ध है। और इस गाने में जो मुख्य वाद्य यंत्र इस्तेमाल किए गए हैं उनमें सितार और गिटार सबसे प्रमुख हैं।

बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं के शुरुआती और अंत के हिस्सों में बजने वाला मधुर सितार इस सदाबहार गीत की खास पहचान है, जिसे गीत के भाव के अनुसार बहुत ही खूबसूरती से बुना है। इसके अलावा संगीत में बांसुरी और पियानो का भी बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। मित्रों, तो सुनते हैं वही गीत।

0: 70 के दशक के आरंभ में आरडी बर्मन भारतीय फिल्म जगत के एक लोकप्रिय संगीतकार बन गए। उन्होंने लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार जैसे बड़े कलाकारों से अपने फिल्मों में गाने गवाए। 1977 में उन्होंने 6 फिल्मों में अपनी संगीत को दिया, जिसमें कटी पतंग काफी सफल रही। यहां से आरडी बर्मन संगीतकार के रूप में काफी सफल हुए। बाद में यादों की बारात, हीरा पन्ना, अनामिका आदि जैसे बड़े फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया।
1: बिल्कुल, और अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं 1940 लव स्टोरी फिल्म का गाना। ये फिल्म श्रोताओं साल 1994 में आई थी और इसमें संगीत का जादू बिखेरा आर डी बर्मन साहब ने और आवाज़ है कुमार सानू की।
0: इस फिल्म में बतौर संगीतकार यह उनकी अंतिम फिल्म रही। आर डी बर्मन ने अपने जीवन काल में भारतीय सिनेमा को हर तरह का संगीत दिया और ये सिद्ध होता है इस प्यारे से गीत को सुनकर।

0: श्रोताओं, आर डी बर्मन ने अपने जीवन काल में भारतीय सिनेमा को हर तरह का संगीत दिया। आज के युग के लोग भी उनके संगीत को पसंद करते हैं और आज भी फिल्म उद्योग में उनके संगीत का बखूबी इस्तेमाल किया जाता है।
1: बिल्कुल, ये जो गाना सुना वो जाते जाते हमें एक ऐसा संगीत दे गए जो आज भी उतना ही नया, ताज़ा और उतना ही रूहानी लगता है। श्रोताओं, पंचमदा भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी हर धड़कन, हर धुन और हर सुर के जरिए वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। इसी के साथ आज का जो एक फनकार कार्यक्रम है उससे दीजिए हमें इजाजत। मैं सोफिया खान
0: और मैं मीता मुल्तानी,
1: नमस्कार।

कार्यक्रम शुरू हो चुका है अंदाज़े बयां। जहां शब्द सिर्फ बोले नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं, जहां अल्फाजों की खुशबू दिलों तक पहुंचती है और शायरी की रोशनी जिंदगी के कई रंगों को उजागर करती है। मैं हूं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सोनिया। तो ले चलते हैं आपको एहसासों, गजलों, नगमों और खूबसूरत अल्फाजों की दुनिया में।

0: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
1: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
2: आज ही पधारे लाल जी नर्सरी, रानो जी का बाग, खोखरिया, बीरा मंडो।
1: लाल जी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
3: लाल जी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
4: FM 102.1 MHz पर ये FM सनसिटी चैनल है और प्रस्तुत है कार्यक्रम अंदाज़े बयां।

दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी पहचान है उसका बोलना या बात करना। शब्दों का चयन व्यक्ति की पहचान बनाता है। कभी शब्द किसी के दिल को जीत लेते हैं और कभी शब्द रिश्तों में दूरियां भी पैदा कर देते हैं। तभी तो कहते हैं, लफ्ज ही ऐसी चीज है जनाब, दिल में उतर जाए तो दुआ बन जाते हैं और दिल से उतर जाए तो सजा बन जाते हैं।

थ्री प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।

0: आज ये चेस व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल गीता भवन रोड जोधपुर।
1: पथरी प्रोस्टेट गुर्दा रोग मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने जोधपुर। मोबाइल 9829027065।
2: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंदाज़े बयां। बात करें जिंदगी की तो जिंदगी को परिभाषित करना मुहाल है। शायद इसीलिए शायर जिंदगी को जितने जावियों और सूरतों में देखता है उसको अपने तौर पर पेश करता है। जिंदगी के हुस्न की कहानी हो या उसकी बदसूरती का बयान करना, सबको उर्दू शायरी अपने दामन में समेट लेती है। और किसी ने कहा भी है कि जिंदगी की राहों में धूप भी मिलेगी, छांव भी, हर मोड़ पर इम्तिहान होंगे, हर मोड़ पर ठहराव भी, चलते रहो मुसाफिर, मंजिल जरूर मिलेगी, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद सुबह भी होगी।

साथ नहीं छोड़ती। और किसी ने कहा भी है, कुछ यादें खुशबू बनकर साथ रहती हैं, कुछ धड़कनों में हर पल आबाद रहती हैं। लोग तो वक्त के साथ बदल जाते हैं, मगर सच्ची यादें हमेशा दिल के पास रहती हैं।

कभी कभी जिंदगी सबसे खूबसूरत मुलाकातें यादों में बदल जाती है। कुछ यादें होठों पर मुस्कान ले आती है तो कुछ आंखों को नम कर जाती है। लेकिन एक बात तो सच है कि यादें कभी हमारे

0: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ
1: निसंतान दंपतियारे जीवन में खुशियारी उम्मीद विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर गीता भवन रोड जोधपुर

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: एफएम सेंसिटिव पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंदाज़े बयां और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सोनिया। जिंदगी यूं तो खुद भी एक सफर है और हम सब मुसाफिर। मंजिल पर पहुंचने की आरजू किस तरह उसे तमाम परेशानियों के बावजूद सरगर्म ए सफर रखती है और बाज औकात किस तरह मंजिलें भी साथ साथ चलने लगती है। जी हाँ, हम सभी सफर के मुसाफिर। कोई मंजिल की तलाश में है तो कोई रास्तों की खूबसूरती में खोया हुआ है। कभी धूप मिलती है, कभी छांव, कभी खुशियां साथ चलती है तो कभी यादों का कारवां।

0: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।
1: दोस्तों कहते हैं कि मुस्कान केवल होठों पर ही नहीं होती, कभी कभी आंखें भी मुस्कुरा उठती है। आंखों का मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इनमें छिपे भाव बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। किसी अपने की नजर की मिठास, पलकों की मुस्कान रिश्तों को और भी खास बना देती है। और एक शायर ने खूबसूरती से कहा है कि लब खामोश रहें तो भी पहचान लेती है आंखें, और यही आंखें अक्सर दिल की कहानी बयां कर देती है।

श्रोताओं, जब मौसम में हल्की हल्की हवाएं चलती है, बादल धीमे धीमे मुस्कुराते हैं और दिल किसी अपने की याद में खो जाता है, तब शुरू होता है प्यार का मौसम। यह वह मौसम जब हर धड़कन किसी की आहट सुनना चाहती है और नजर किसी अपने के इंतजार में राह तकती है। कभी कोई खत, कभी कोई संदेश, तो कभी सिर्फ एक आवाज, आ जाओ, दिल को सुकून दी जाती है। किसी अपने को बुलाने का एहसास भी कितना खूबसूरत होता है, जैसे सुनी राहों को मंजिल मिल जाए, जैसे बिखरे मौसम को कोई रंग मिल जाए। और कहते भी हैं कि आओ कि मौसम है मोहब्बत फिर से जवान हुआ, दिल का हर एक कोना आज मेहरबान हुआ, तुम्हारी आहटों का इंतजार है अब भी, तुम बिन ये सारा जहां कितना वीरान हुआ।

दोस्तों, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देने का समय आ गया है। उम्मीद है अल्फाजों की इस महक, शायरी की इस मिठास और एहसासों की इस यात्रा ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा। चलते चलते कुछ लाइंस आपके लिए। अल्फाज थम जाए तो एहसास बोलते हैं, खामोश लम्हों में भी कुछ राज बोलते हैं। यूं ही बने रहिए हमारे इस महफिल के हम सफ़र, क्योंकि दिल से निकले जज्बात ही अंदाज़े बयां बोलते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सोनिया। दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त। नमस्कार।

0: FM 102.1 MHz पर ये FM सनसिटी चैनल है। इस समय दिन के 12 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वहां भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच घनिष्ठ संबंध दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने में सहायक हैं। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया।

0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू किया है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले बृहस्पतिवार को पूरी कर ली गई। हरियाणा सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में 1 अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के ईंधन नहीं देने की नीति लागू करेगी। इसका उद्देश्य क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यह निर्णय लिया। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। डॉ मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल और आज याद कर रहे हैं गायक और संगीतकार राहुल देव बर्मन को।

0: नरम गरम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे राहुल देव बर्मन और सपन चक्रवर्ती की आवाज़ें गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिनमें आज याद कर रहे हैं हम संगीतकार और गायक राहुल देव बर्मन को।

0: राहुल देव बर्मन की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया गीत आप सुन रहे थे, जिसे लिखा गुलजार ने और ये गीत हमने आपको सुनवाया किताब फिल्म से। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

आशा भोसले और राहुल देव बर्मन की आवाजों में अपना देश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत, कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: मजरूह सुल्तानपुरी के बोल आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में अभिलाषा फिल्म के गीत में संगीत राहुल देव बर्मन का।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसम ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

गुलजार के बोल अंगूर फिल्म के इस गीत में आपने सुना। आशा भोसले की आवाज, राहुल देव बर्मन का संगीत। आपको याद दिला दें, शाम 4 बजे पिटारा में आप सुन सकते हैं बॉम्बे टॉकीज, जिसमें आज गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की पहली कड़ी आप सुनेंगे। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की है। और शाम 6:45 से संगीत सरिता में सुनिए श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार है वायलिन वादक SL कंडारा। 10वीं कड़ी सुनिएगा। इस कार्यक्रम का ये पुनः प्रसारण है 6:45 पर। इस कार्यक्रम का की नई कड़ियां आप सुनते हैं और इस वक्त कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों के महफिल विविध भारती पर।

अनामिका फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तर्ज राहुल देव वर्मन की। आपको याद दिला दें कि आज आप सुन सकते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं आपके खत और आपकी फरमाइशें शामिल होती हैं। मन चाहे गीत कार्यक्रम 3 बजे से आप सुन सकते हैं, और विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

किशोर कुमार की आवाज में अमर प्रेम फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत, कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं।

अजनबी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे तर्ज राहुल देव बर्मन की, आनंद बख्शी के बोल, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें। कार्यक्रम यादों के महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

आ गले लज्जा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, साहिल उद्यानवी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम सोशल मीडिया पेज पर अपने एक इबारत रोजाना पोस्ट करते हैं और उस इबारत में ही छुपे होते हैं आज के जो भी कार्यक्रम होता है उसमें किन शब्दों से गीत सुनाए जाएंगे। वो तो आज की जो इबारत है वो हम आपको बता दें। आज की इबारत है यार दोस्त संगी साथी कितने छूटे कितने बाकी पहिया जीवन का चलता जाता पीछे छूटा सारा नाता चले मुसाफिर अपने रास्ते कभी झूमते कभी तरसते यही जीवन की रीत है भैया कभी धूप तो कभी उछैया दुनिया की ये गोल कहानी हमें सुनाती दादी नानी। तो इस इबारत में जो शब्द छुपे हैं उनसे आपको पता करना है कि कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में सुनाए जाएंगे। हालांकि आपने बहुत सी बात तो इबारत के बारे में भी लिख भेजी है और बताया भी है कि क्या वाकई जीवन इस तरह का होता है जहां हमारे पीछे बहुत सी चीजें छूटती जाती हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। हमारी एक साथी कहती हैं कि ये पंक्तियां जीवन के उस निष्ठुर लेकिन खूबसूरत सच को उजागर करती हैं जहां समय एक निपुण कथावाचक की तरह हमारे रिश्तों की किताब के पन्ने पलटता रहता है। हम सभी इस अनंत यात्रा के ऐसे मुसाफिर हैं जिनके सूटकेस में पुरानी यादों की खनक और यादों में नए रास्तों की उम्मीदें होती हैं। सफर में लोगों का छूटना और नए चेहरों का जुड़ना इस गोल दुनिया का चक्र है जो हमें सिखाता है कि धूप की तपिश के बिना छांव के सुकून की कोई कीमत नहीं होती। दादी नानी की कहानियों से उपजा ये दर्शन असल में एक दिलासा है कि जब तक ये पहिया घूम रहा है हर उदासी के बाद एक नई मुस्कान का आना तय है।

वही हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज दोस्त और दोस्ती पर बातें करेंगे. कुछ बचपन के साथी जवानी में बिछड़ गए, कुछ जवानी के साथी हमसफर बन गए, और जैसे पति पत्नी कुछ दोस्त बचपन से पचपन तक और कुछ उसके बाद भी साथ चले. कुछ हमें और सारे जग को छोड़ गए और उनकी याद हमेशा के लिए रहेगी. उनके लिए दोस्त दोस्त ना रहा ऐसा नहीं कह सकते. विविध भारती ने कुछ दोस्त दिए, आज सुरीला सफर उनके साथ ही पूरा करेंगे, ऐसा हमारे साथी कह रहे हैं. और वाकई ऐसा होता है, स्कूल के बहुत से साथी छूट जाते हैं, अलग अलग शहरों में जब हम रहते हैं तो अलग अलग शहरों के साथ साथी छूट जाते हैं, कई बार वो हमारे साथ भी रहते हैं. तो किस तरह से आप अपने दोस्तों को अपने साथ बनाए रखते हैं और जीवन के इस चक्र को किस तरह से आप देखते हैं? क्या आपको लगता है वाकई जो चीजें छूट जाती हैं उन्हें याद करते ही रहना चाहिए या आगे बढ़ते रहना है आपका फलसफा क्या है? ये सारी बातें आप हम तक भेजिए. तब तक हम आपको कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं. कौन सी फिल्म का ये गीत है आपको बताना है और इस फिल्म में कौन होते हैं दो दोस्त ये भी बताइए.

नमक हराम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और इस फिल्म में दोस्त के रूप में नजर आते हैं अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज के कार्यक्रम के भारत चंद पंक्तियों में है, पंक्तियों से विदित है कि जीवन का सफर बिना विराम के निरंतर चलते जा रहा है। हमारे आत्मजन, स्वजन और शुभचिंतक भी इस सफर में शामिल हैं। भाग्य की नियति से सफर में अपने कुछ मिल रहे हैं और कुछ बिछड़ रहे हैं। वहीं एक और साथी कह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल बीते लम्हों की

यादें ताजा कर रहा है ये प्रोग्राम में। प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल के बाद कॉलेज के सभी संगी साथी आज याद आ गए। सर्विस के साथी भी याद हैं, पर प्राइमरी स्कूल के साथी आस पड़ोस के ज्यादातर थे, जिनके साथ स्कूल के समय के बाद घर पर और लाइट जाने पर रात तक साथ रहते थे, और गीत भी उन्होंने अपनी पसंद का एक बताया। देखते हैं आज के कार्यक्रम में वो गीत शामिल होता है या नहीं। वहीं हमारे कौर साथी कह रहे हैं कि हम सभी जानते हैं कि जीवन नश्वर है, लेकिन एक रिश्तों का जाल हमारे जन्म से बुन जाता है, जिसमें उलझे हुए हम उन रिश्तों की खट्टी मीठी यादें लिए दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि जीवन ही कुछ ऐसा है और इंसान भी कुछ ऐसा व्यक्ति है कि वो अपने साथ यादों को समेटे रखता है, अपने आसपास के लोगों से दोस्ती जरूर करता है। और हमारे एक साथी कहने कि छूटते हैं पीछे, छूटते शहर, बिखर जाते हैं अपने ही घर। यादों का कारमा छूटता है, साथी संगीत और अपनापन छूटता है, रिश्ते नाते और अपनों का साथ। धूप और छांव सा है जिंदगी का गांव, दूर क्षितिज में फिर से तलाशो राह, धूप की बाद ही मिलती है छांव की चाह। जीवन के इस अनवरत चक्र में हर पड़ाव हमें कुछ नया सिखाता है। और हमारी कौर साथी कहती है कि बचपन में दादी नानी जो कहानी सुनाती थी, उनमें छिपे रहते थे जीवन के मर्म, पर हमें तब अक्ल नहीं थी कि दादी नानी की उन गहरी बातों का अर्थ समझ सकें। जब स्थिरता मन को भाने लगती है तो कुछ संगी साथी बीच राह में साथ छोड़ जाते हैं, वे पल बड़े असहनीय होते हैं। जीवन की अपनी लय होती है, कभी शांत, कभी मध्यम, कभी तीव्र, यही संसार का नियम है। वाकई संसार का नियम तो यही है कि संसार और समय बदलता रहता है और हमारे सुख दुख भी बदलते रहते हैं, लेकिन हमारे जो यार दोस्त हमारे साथ होते हैं बचपन से होते हैं, या कभी कभी पीछे छूट जाते हैं और हम उन्हें बड़ी ही शिद्दत से खोजते हैं, किसी पुराने शहर में जाकर या फिर अपने सोशल मीडिया के जरिए या फिर उनका नंबर कहीं तलाशते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? क्या आपको इस तरह से मिला कोई आपका पुराना बिछड़ा हुआ साथी, संगी, दोस्त? हमें बताइए। तब तक हम सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि इस गीत में संगीत किसका है।

0: याराना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसमें संगीत राजेश रोशन का। ये हमारे सवाल का सही जवाब है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे तो स्कूल कॉलेज के लगभग सभी दोस्त सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वैसे दोस्तों का साथ बड़ा ही प्यारा रहता है। कल हमने भी अपने दोस्तों के साथ बड़ी मस्ती की, खूब सारे गीत गाए, बड़ा प्यारा साथ रहा हम सबका। हम बस एक दोस्त की बड़ी याद आई जो किसी कारण से हमारे साथ न चल सकी, उसे भी हमने वीडियो कॉल के साथ साथ रखा, तो दोस्ती इससे भी होती है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि इन दिनों दोस्ती निभाना बड़ा आसान है, और अगर आपके पुराने बिछड़े दोस्त आपको किसी तरह से मिल जाए सोशल मीडिया के जरिए या किसी दूसरे दोस्त के जरिए उनका नंबर मिल जाए, तो बड़ा आसान है उन्हें देखना वीडियो कॉल के जरिए या उनसे बात करना मोबाइल के जरिए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी रहा जब बड़े दूर दूर हो जाया करती थी दोस्त और सहेलियां, क्योंकि आमतौर पर सखियां तो अलग अलग जगह विवाह करके चली जाती थी और उनसे मिलना बड़ा मुश्किल होता था। तो कभी कभी रेलवे स्टेशन पर अचानक मुलाकात हो जाती थी, या कहीं कह सकते हैं कि अगर सबका मायका एक ही जगह हुआ तो वहां।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी और एफएम सन सिटी चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज़ पर। इस समय दिन के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी वाटिका।

0: वंदन अभिनंदन स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम नारी वाटिका में। और आज की नारी वाटिका का सफर आप तय करेंगी अपनी दो सखियों के साथ। मैं हूँ पूर्णिमा और मेरे साथ है
1: लता परिहार। और स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार।

0: सखियों, आप सुन रहे हैं नारी वाटिका कार्यक्रम, जो कि आपका बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम है और जहां हम रोज लेकर आते हैं जीवन से जुड़े ऐसे विषय जो हमने कुछ नया सोचने, समझने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में सीखने, आगे बढ़ने और सपनों को साकार करने की प्रक्रिया कभी नहीं रुकती। कभी कभी छोटे प्रयास हमें आत्मनिर्भर बनाते हैं तो कभी नई शुरुआत हमें नई मंजिलों की ओर लेकर जाती है, और कभी हमारे भीतर छिपी क्षमताएं हमें सफलता के नए आयाम दिखाती है ना पूर्णिमा?
1: हाँ, और आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे ऐसे ही कुछ प्रेरणादायक विषयों पर चर्चा करेंगे जो न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन बल्कि समाज और देश के विकास से भी जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हर सफर पर होगा बहुत बहुत सारा ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मक सोच के साथ हम चलेंगे इस पूरे प्रोग्राम में। और शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम के एक प्यारे से गीत के साथ।

0: पूर्णिमा, सचमुच प्यार जिंदगी को कितना बदल देता है, है ना? और जिंदगी में प्यार तभी बहुत अच्छा लगता है जब आप वाकई में अपने साथ, अपने समाज के साथ, घर परिवार के साथ आप जुड़े रहते हैं और आप में कुछ करने का जज्बा हो। और जब वही कुछ हम जब करते हैं और उससे हमें हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में एक जब नाम रोशन होता है, तो वो जो पूरे भारत का जो प्यार मिलता है ना, वो उसका कहना ही क्या होता है।
1: जब खुद की पहचान बनती है तो खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आता है, जिससे हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा पूर्णिमा। और जैसे कि भारत गाँव और छोटे उद्योगों का देश है हमारा, और घरेलू उद्योग ना केवल रोजगार के अवसर हमें प्रदान करते हैं बल्कि साथ ही साथ हमारी परंपराओं और स्थानीय कलाओं को भी जीवित रखते हैं। पूर्णिमा, आज पता है कई परिवार में घर बैठे ही कई लोग अपने हुनर से सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं। और सखियों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपने आपकी जो घर की रसोई है, बरामदा है या एक छोटी सी कार्यशाला एक बहुत बड़ी एक सक्सेसफुल इंडस्ट्री का रूप ले सकती है?
1: जी हाँ, आज के अगर हम बात करें ना, तो ये जो छोटे छोटे घरेलू जो उद्योग हैं, वो छोटे बड़े बिजनेस जो कि हम घर से शुरू करके न केवल अपनी आमदनी का साधन बना सकते हैं, बल्कि उसे एक समाज में एक रोजगार का एक नया आयाम भी दे सकते हैं। और ना लता, ये जो भारत के घरेलू उद्योग हैं, इनका इतिहास भी बहुत पुराना है। हम जब छोटे थे तो हमारी जो दादी नानी थी, उनके ज़माने में भी घरों में तरह तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उत्पाद हैं, वो बनाए जाते थे। और आज हम इन्हीं को बिजनेस के बारे में उनको डेवलप कर सकते हैं, और इसके बारे में हम अपने सखियों को बताएंगे और जानेंगे कि कौन कौन से उत्पाद हम घर पे बना सकते हैं।

0: क्योंकि ये जो घरेलू उत्पाद है ना वो बनाने में आज उन उत्पादों को अपने खुद के देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत पहचान मिल रही है
1: तभी तो हम कह सकते हैं मेड इन इंडिया होम मेड हाथ का बना है ना इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे पर सुनाते हैं सखियों को ये प्यारा सा गीत

सखियो, ऐसा हर किसी का सपना होता है कि वो अपने हुनर से अपनी पहचान बनाए, और जब वो पहचान बनाते हैं तो वो काफी, जब वो सफल होते हैं तो उनकी पहचान, उनकी पहचान उनका

0: हुनर बोलता है। तो ऐसी ही एक फोन आउट के माध्यम से हम जुड़ने जा रहे हैं द केक आर्टिस्ट भावना चंदवानी से। वो एक ऐसी महिला है जिन्होंने अपने हुनर से सिर्फ अपना शौक नहीं बल्कि अपनी एक नई पहचान बनाई, और उनसे बातचीत की है लता परिहार ने।
1: सखियों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपने अब तक के जीवन में जो बचपन से लेके आप बड़े होने तक कुछ चरित्र, कुछ कैरेक्टर ऐसे आपके जेहन में जरूर कहानियों के माध्यम से रहे होंगे, जैसे बार्बी डॉल, आपका मिकी माउस, आपका टॉम एंड जेरी, और कोई बहुत सुंदर सी, बहुत ही प्यारा सा कोई गुलदस्ता या आपकी पसंदीदा किताब, और आपने सोचा कि काश मैं उसे जीवित जीवंत रूप में महसूस कर सकूं या मैं उसे बना सकूं। तो हाँ सखियों, बिल्कुल आप बना भी सकती हैं, उसे महसूस भी कर सकती हैं, और सबसे बड़ी बात आप उसे खा भी सकती हैं। बहुत स्वाद लेकर, जो भी फ्लेवर में आपको पसंद है उस फ्लेवर में लेके आप खा सकती हैं। तो आज ऐसी ही बातों से और ऐसे ही चरित्र को कैसे आप बना सकते हैं, तो हमारे बीच में है केक आर्टिस्ट भावना चंदवानी, जो ऐसे ही आपके काल्पनिक जो भी आपके चरित्र हैं जिनको आपने कभी पसंद किया हो उनको केक के माध्यम से आप बना सकते हैं, खा सकते हैं, अपने दोस्तों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो सखियो, आज फोन आउट के माध्यम से हमारे बीच में है केक आर्टिस्ट भावना चंदवानी जी। भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नारीवाटिका कार्यक्रम में।
2: थैंक यू सो मच लता जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतना बड़ी इंट्रोडक्शन देने के लिए, और मैं सभी श्रोताओं को नमस्ते बोलना चाहूंगी।
1: जी जी भावना जी, आप संक्षिप्त में आप अपना परिचय हमारे सभी श्रोताओं के साथ, हमारी सखियों के साथ आप शेयर कर सकती हैं।
2: ठीक है मैम, मेरा नाम भावना चंदवानी है और मैं जोधपुर से ही हूँ, और मैं घर से ही मैं एक छोटा सा अपना केक स्टूडियो चला रही हूँ।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो भावना जी, ये काम आपने कब से स्टार्ट किया?
2: ये काम मैंने लॉकडाउन से शुरू किया। जैसे कि मेरी कुकिंग स्किल वैसे ही अच्छी थी मेरी मम्मी के कारण, तो और मैं बेकिंग भी अच्छी खासी कर लेती थी, तो उस टाइम सारे बेकरीज बंद थी, तो लोगों ने केक लेना शुरू किया। और उस दौरान जैसे ज्यादा काम कुछ भी नहीं चल रहा था, तो कई महिलाओं ने और कई लड़कियों ने मेरे से ये बेकिंग स्किल्स भी सीखी थी।
1: ओके,
2: तो इस तरह से मेरा काम लॉकडाउन में शुरू हुआ।
1: ओके, भावना जी, ये केक के फील्ड में आना और इस फील्ड में ही काम करना, इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन था या आपका ये पैशन कैसे बना?
2: इसके लिए अगर मैं मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन मानूं तो वो मेरी बड़ी बहन है मोनिका पारवानी
1: जी।
2: उन्होंने मुझे बेकिंग सिखाई थी
1: जी।
2: और मुझे इस काम के लिए आगे बढ़ने के लिए उन्होंने मुझे प्रेरित किया है। तो यस, मोनिका दीदी वो ही मेरी इंस्पिरेशन है।
1: ओके, तो इसके द्वारा आपने मतलब अब तक क्या क्या इस, क्योंकि देखो हर काम जब हम करते हैं तो इट्स नॉट दैट आपको वन डे सक्सेस मिल जाता है, तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आपने फेस किए होंगे। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी सखियों को अपने उन संघर्षों की भी एक थोड़ी से संक्षिप्त में बताएं ताकि वो इससे प्रेरित हो सके।
2: लता जी, चैलेंजेस तो खूब आए शुरुआती दौर में। जैसे कि मैं सब पहले खुद करती थी, जैसे बेकिंग करना, पैकेजिंग करना, ए टू जेड काम मैं खुद करती थी। फिर मुझे समझ में आया कि ये काम सब खुद से तो नहीं हो सकता
1: जी।
2: फिर मैंने थोड़ा सा टीम को बढ़ाया, जिनको मैंने सिखाया उन्हीं को मैंने अपने टीम में शामिल किया
1: जी।
2: और चैलेंज तो बहुत था क्योंकि घर को और बेकिंग को एक साथ हैंडल करना वो बहुत चैलेंज था, पर मेरे हस्बैंड ने और मेरी सासू माँ ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उनके बिना मैं ये इस मुकाम पे तो आज नहीं होती, अगर वो मेरे साथ नहीं होते तो।
1: बहुत सही कहा आपने भावना जी, क्योंकि कोई भी काम जब खासकर जब हम घर से शुरू करते हैं तो एक महिला के लिए घर के साथ साथ अपने काम को, अपने पैशन को पूरा करना अपने आप में बहुत बड़ा एक हिम्मत का काम होता है, और उसमें अगर परिवार वालों का साथ मिल जाए तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है।
2: हाँ, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है।
1: जी जी तो इसका मतलब हम क्या माने कि आपका परिवार आपकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है?
2: हाँ बिल्कुल, मेरे हस्बैंड, मेरा फैमिली, मेरा ससुराल वो मेरी बहुत बड़ा सपोर्ट है, उनके बिना ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती।

0: तो आप वाकई में उन बहुत सारी महिलाओं में से बहुत खुशकिस्मत हैं कि जिन्हें बहुत अच्छा ससुराल मिला और उन्होंने
1: जिन्होंने
0: आपके काम की काबिलियत को और आपके पैशन को समझा, और आज यही एक वजह है कि वो आपके काम की एक रीढ़ की हड्डी बने हैं, और जिस वजह से आज आपका नाम लगभग में मुझे लगता है कि काफी मीडिया में, काफी जगह लोगों के दिलों पर आप का और आपके केक का स्वाद जो है, मैं महसूस कर सकती हूँ कि वो लोगों के दिलों में है।
1: बिल्कुल
0: भावना जी, इस फील्ड में मतलब इस काम के द्वारा आपने मतलब क्या क्या इनोवेशंस किए, मतलब क्योंकि देखिए केक तो रूटीन में सब बनाते हैं, पर
1: मैंने
0: आपका
1: सिर्फ
0: स्पेशलाइजेशन क्या है?
1: जैसे मेरा अगर एक्सपर्टीज बोले तो मेरा केक्स में मेरी बहुत एक्सपर्टीज है, स्पेशली जैसे फर्स्ट बर्थडे होते हैं, वेडिंग केक्स होते हैं, एंगेजमेंट केक्स होते हैं, जैसे 5 से 6 टायर के केक भी हम बनाते हैं। पर ऐसा
0: अच्छा,
1: नहीं है कि 5 से 6 मंजिल के केक हम बनाते हैं तो हम हाफ के जी का केक नहीं बनाते, हम आधा किलो का भी केक लोगों को बना के देते हैं।
0: ओके, यानी जिसकी जैसी नीड रिक्वायरमेंट है।
1: हाँ बिल्कुल, जिसको जैसी जरूरत है हम वैसा उनको काम करके देते हैं।
0: आजकल भावना जी, कस्टमाइज केक का बहुत ज्यादा चलन है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: हाँ बिल्कुल, जैसे पहले अगर हम बेकरीज पे जाते थे तो बिल्कुल जो केक काउंटर में लगे हुए होते हैं वही लोग लेते थे, पर अभी
0: जी
1: लोगों को है कि मेरे को ये डिजाइन का केक चाहिए, मुझे ये फ्लेवर का केक चाहिए, तो उसके लिए होम बेकर इज द बेस्ट ऑप्शन। आपको जो फ्लेवर का केक चाहिए, जो डिजाइन का केक चाहिए, हम उनको वो बना के देते हैं। और उन लोगों को भी पता है कि इनके पास केक इतने नहीं रहते हैं रेडी, तो वो हम उनको उनके अकॉर्डिंग और बिल्कुल फ्रेश केक बनाना बना के देना चाहते हैं, ताकि हमारे कस्टमर भी बिल्कुल फ्रेश चीज कंज्यूम करें।
0: क्या बात है, मतलब घर का बना हुआ शुद्ध सा, मतलब हाइजीन को मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा
1: मेंटेन
0: आप,
1: करना, हाँ बिल्कुल, वो हमारी प्रायोरिटी होती है।
0: जी, अब तक का कोई एक ऐसा केक जिसमें आपको बहुत बनाने में चैलेंज आया हो?
1: ऐसे बहुत खूब केक हैं जो बनाते हुए हमको बहुत चैलेंजेस का फेस करना पड़ा, क्योंकि जैसे ऐसे केक हमको खुद भी वेन्यू पे लेके जाने पड़ते हैं, उधर उसको सेट भी करना पड़ता है, तो
0: अच्छा
1: उसके
0: अच्छा
1: लिए हम हाँ उसके लिए हमको बैकअप भी लेके चलना पड़ता है कि बाय चांस अगर प्लान ए काम नहीं करेगा तो प्लान बी भी करना पड़ेगा, तो
0: क्या
1: हमको
0: बात
1: हमारी
0: है,
1: टीम के साथ जाना। तो सबसे बड़ा केक अभी तक मैंने बनाया है वो है 25 किलो का, वो मैंने मेरी एक स्टूडेंट मुस्कान के लिए ही बनाया था उसकी शादी में, तो वो
0: 25 किलो
1: केक
0: का? अरे,
1: अब 25 किलो का केक बनाया था, तो वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। उसको बनाने में हमको 2.5 दिन लग गए थे, मैं और मेरी 4 स्टाफ ने, हमने 4 दिन में जाके उसको कंप्लीट किया। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने और मेरे 2 टीम मेंबर्स हमने खुद कार में जाके वो केक उधर असेंबल किया, तो दैट वॉज अ मेमोरेबल केक फॉर मी टिल टूडे।
0: क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा भावना जी, एक बताइए, काम के दौरान कई बार क्या होता है कि फैमिली को भी मैनेज करना पड़ता है, आपके कस्टमर्स को भी मैनेज करना पड़ता है, तो ये तालमेल आप कैसे बैठाती हैं?
1: जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये बहुत मुश्किल काम है, पर मैं शांत रह के अपने काम पे फोकस करती हूँ, टाइम मैनेजमेंट में बिलीव करती हूँ, और मैं टीम वर्क में भी पूरा विश्वास करती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फैमिली सपोर्ट के बिना ये कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो वो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है, मेरी स्ट्रेंथ वही है कि फैमिली भी सपोर्ट मुझे पूरा है, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट मुझे पूरा है, तो इसीलिए ये काम स्मूथली चल रहा है।
0: भावना जी,
2: जी नर्सरी, पौधों से हरियाली छाए और ये धरती भी मुस्कुराए, सभी प्रकार के फल फूल सजावट के पौधे और वर्मी कंपोस्ट खाद उचित मूल्य पर। विजिट करें लाल जी नर्सरी, राणो जी का बाग, खोखरिया बेरा, मंडोर, जोधपुर। फोन 9799995975।
1: बहुत ऐसे बच्चियों ने केक सीखा है जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है,
0: अच्छा,
1: तो उनको बेसिक पढ़ाई भी नहीं आती, पर स्टिल वो ये काम करके मेरे उन लोगों को मैंने मेरी टीम में ही इंक्लूड कर लिया है,
0: अरे
1: तो
0: वाह,
1: बिल्कुल उसमें ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको हाईली एजुकेशन की जरूरत है, नहीं इसमें इतना वो नहीं है। पर मेरी इच्छा ये थी कि वो जो बच्चियां हैं पर वो झाड़ू पोछे जैसा मतलब बिल्कुल बेसिक काम नहीं करके वो अपनी स्किल्स को पहचाने और उसको पॉलिश करके कुछ अच्छा करें, तो मेरा यही था कि इनको सिर्फ झाड़ू पोछे बिल्कुल छोटी मोटी हेल्प है वो नहीं करना है, उनको कुछ अच्छा सिखाना है, इतना स्कोप है। अब जैसे कुछ बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट्स बना के सेल कर रहे हैं, कुछ
0: क्या बात
1: बच्चे
0: है,
1: हैं वो सिर्फ और सिर्फ आइसक्रीम बना के सेल कर रहे हैं, उनके पास और चीजों का टाइम भी नहीं है, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैंने

0: जितनी गृहणियों को, कितनी बच्चियों को सपोर्ट करके और उनको मैंने स्वावलंबी बनाया।
1: बहुत खूब, वाकई में भावना जी, सही शिक्षा और सही शिक्षा पर सही गुरु मिल जाना, जो आपके अंदरूनी जो आपके स्किल्स है उसको निखार कर लाए और उसको पैरों पे खड़ा कर दे, इससे बढ़िया एक मतलब हम किसी को, वो कहते ना, हेल्प नहीं कर सकते। आपने उनको इस काबिल बना दिया कि वो स्वयं तो स्वावलंबी बनी है, साथ ही साथ रोजगार के माध्यम से वो अपने परिवार का भी भरण पोषण अच्छे से कर सकती हैं।
0: बिल्कुल
1: तो
0: लता जी,
1: मुझे ऐसा मैंने ऐसा आपसे एक बार पहले भी बात करी तो पता चला कि कोरोना के समय भी कुछ महिलाओं को आपने मतलब प्रशिक्षित किया था, उनको एजुकेट किया, और उन्होंने बाद में इस समय बहुत अपने परिवार को फाइनेंशियली उन्होंने बहुत मदद करी थी। तो
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो कोरोना के समय में भी अब तक आपने कितनी महिलाओं को फाइनेंशियली अपडेट कर दिया कि वो इंडिपेंडेंट हो गई, कि वो अपने परिवार का और अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकती हैं।
0: जैसे कि लता जी, अभी तक मैंने 3,000 से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षित किया है बेकिंग के लिए।
1: वाह।
0: उसमें से 400 से ज्यादा जोधपुर में ही लेडीज अपना काम कर रही हैं, अपना अपने अपने घरों से ये काम कर रही हैं। उनों के लिए उन्होंने कुछ भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, और घर से ही बिल्कुल छोटे से, अगर आपने अगर
1: सेटअप से
0: इन्वेस्ट किया, हाँ, छोटे से
1: जी
0: सेटअप से उन्होंने काम शुरू किया है। और
1: जी
0: अभी वो इतना अच्छा काम कर रही हैं कि वो आती भी हैं, मतलब जैसे पर्सनली थैंक यू बोलने भी आती हैं। तो वही एक रियल अचीवमेंट है कि जब मुझे इतना प्रेस करती हैं कि मैम आपके कारण ऐसा हो रहा है। और उन्होंने कुछ लेडीज तो जैसे कि टीचिंग भी कर रही थी, पर अब वो टीचिंग वगैरह छोड़ के अपने घर से ही काम कर रही हैं। तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि वो जब आके खुश हो जाती हैं और जब मैं उनके काम को देखती हूँ तो मुझे सच में रियल हैप्पीनेस लगता है कि ये तो बिल्कुल वंडर ही हो गया।
1: वो वाकई में वो बात आज मुझे याद आ रही है भावना जी, कि दुनिया में दो शख्स बहुत खुश होते हैं आपकी कामयाबी पे, पहले आपके माता पिता, दूसरा आपका गुरु जिसने
0: बिल्कुल
1: आपको सिखाया। वो ही दो दुनिया में ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ होते हैं और आपकी हर कामयाबी में उनको एक अलग ही खुशी मिलती है। वाकई में
0: बिल्कुल लता
1: बहुत
0: जी,
1: प्राउड टू ऑफ यू भावना जी की, वाकई में बहुत अच्छा कार्य आप समाज में कर रहे हैं। मतलब एक तरह से ये भी एक सामाजिक सेवा ही है, जो घर बैठ के भी आपने कई महिलाओं को रोजगार के लिए तैयार कर दिया। भावना
0: बिल्कुल
1: जी, एक छोटा सा बेसिक सवाल है कि कोई भी बेकरी को शुरू करना चाहता है तो उसको लगभग मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट के साथ वो शुरू कर सकता है, और बेसिक क्या इक्विपमेंट उसके पास होने चाहिए?
0: लता जी, उसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कोई एक बिल्कुल बेसिक सा काम अगर शुरू करना चाहता है तो 3 से 4 हजार के इन्वेस्टमेंट में वो काम शुरू कर सकता है। फिर उसी से वो धीरे धीरे काम को बढ़ाता है। मैं तो मेरे स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ, एकदम से ज्यादा खर्चा नहीं करना है। बिल्कुल एक बीटर मशीन चाहिए और थोड़ा सा बिल्कुल छोटा मोटा रॉ मटेरियल चाहिए, मैदा है, शक्कर है, बिल्कुल घर का सामान से ही हम हमारा काम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर इनिशियली लेवल की बात करें तो।
1: जी, तो एक इंसान मिनिमम 15 से 10 दिन में ये काम सीख सकता है?
0: बिल्कुल 10 से 15 दिन में हम उनको बेसिक नॉलेज दे देते हैं। और अगर कुछ बच्चों को बिल्कुल प्रोफेशनली सीखना है तो हम उनको 1 मंथ में इतना ट्रेंड कर देते हैं कि वो बिल्कुल अपना खुद का बेकरी वगैरह भी खोल सकते हैं।
1: अरे वाह। तो आपने अपना सेटअप लगाने की सोची है या आप अभी भी घर से ही कर रहे हैं, या ऐसा कुछ आपने?
0: नहीं, मैं मेरा काम अभी भी घर से ही कर रही हूँ। घर में ही एक छोटा सा स्टूडियो खोला है,
1: अरे
0: क्योंकि
1: वाह।
0: मैं लोगों को भी यही बोलूंगी कि अगर अपन कोई भी दुकान खोलते हैं, शॉप खोलते हैं, तो उसका रेंट लगता है। फिर उसके लिए मुझे समझ में आया कि मुझे इतना बड़ा सेटअप नहीं लगाना है, क्योंकि उसके लिए वापस मुझे दुकान में मुझे बिल देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे कोई मेल स्टाफ भी हायर करना पड़ेगा। तो मेरा स्टार्टिंग से बिल्कुल क्लियर गोल था कि मुझे ऐसा दुकान वुकान तो नहीं खोलना है।
1: अच्छा, ठीक है भावना जी, ये बताइए कि अब तक आपकी बेकरी में कुछ, क्योंकि केक सिर्फ केक के नाम से ही केक को इमेजिन करते हैं तो एक सिंपल सा चौकोर केक आपके दिमाग में आता है। आपने आपकी एक्सपर्टाइज किन किन केक्स में रही है, या बेकरी के कौन कौन से केक के अलावा आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं और वो लोगों को बहुत पसंद आए हैं?
0: बिल्कुल मैम, पहले

0: तो जो तुम्हें बिल्कुल बेसिक से केक, अगर जैसे हम पहले सुनते थे जब हम भी छोटे थे तो ब्लैक फॉरेस्ट केक, पाइनएप्पल केक, हम भी यही सुनते थे। पर अभी एक्चुअली जोधपुर में जैसे कि बिल्कुल बेसिक से केक चलते थे, फिर अभी हम होम बेकर्स ने क्या किया है, हमने जो लोग इमेजिन करते हैं उसको हम बिल्कुल वैसा ही बना के देते हैं।
1: क्या
0: जैसा
1: बात
0: आप इमेजिन करेंगे वैसा हम केक आपको बना के दे देंगे, यही हमारा विजन है। जैसे
1: है।
0: कि मैं बोल रही हूँ, जैसे कि 5 मंजिल का, 6 मंजिल का केक बनाते थे लोग, फिर हम कार शेप में केक बना के देते हैं। और हम सिर्फ और सिर्फ केक में एक्सपर्टीज नहीं रखते हैं, अभी हमने जैसे बहुत हेल्दी वे में भी हमने बेकिंग शुरू की है। जैसे
1: जी
0: कि आटे से ब्रेड बनाना, फिर हम रागी से, जवार से, बाजरा से, इनसे हम कुकीज और बिस्किट बनाना शुरू करा। वो मैंने मेरे बच्चों के लिए शुरू किया था कि मेरे बच्चों को, मेरे को कुछ भी अनहेल्दी नहीं खिलाना है। तो
1: क्या
0: मैंने को,
1: बात
0: फिर
1: है।
0: वो जब भी लोग आते हैं, जब टेस्ट करते हैं, तो वो बोलते हैं कि रागी और बाजरा से इतने टेस्टी केक बन सकते हैं। तो मैं बिल्कुल उनको बोलती हूँ हाँ बन सकते हैं। और फिर वो धीरे धीरे करके जब मैंने खुद के बच्चों के लिए ट्राई किया, फिर मैंने लोगों को भी खिलाया, और फिर अब मैं बच्चों दूसरे लोगों को भी मैं वही सिखा रही हूँ कि आप बिल्कुल, अगर आप अगर काम नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ हेल्दी बेकिंग करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं। और एटलीस्ट घर पे तो हेल्दी चीजें ही खानी है, तो उसके लिए मैं भी लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि आप सीखिए। जरूरी नहीं है कि सबको बिजनेस करना है, कि घर पे भी अगर अपन हेल्दी कुछ खाना चाहते हैं तो अगर खुद की स्किल से और खुद के हाथों से कुछ बनाते हैं तो उसके जैसा तो कुछ कोई बीट ही नहीं कर सकता है।
1: यानी अब गिल्ट फ्री होकर हम खा सकते हैं।
0: एग्जैक्टली लता जी, आप गिल्ट फ्री होके आप अपना जो भी खाना चाहें खा सकते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा ये सच में इसमें कोई शुगर नहीं है, कोई आटा नहीं है, तब मैं उनको बोलती हूँ आप खुद से आके सीखिए, तब आपको विश्वास आएगा कि इसमें हमने बिल्कुल शुगर नहीं डाली और बिल्कुल आटे का भी यूज नहीं किया है।
1: क्या बात है। यानी हमारे जितने सुनने वाले श्रोता हैं, हमारी जितनी भी सखियां हैं, कम से कम जो भी हेल्थ कॉन्शियस है, एटलीस्ट उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आप शुगर फ्री, आटा फ्री, मैदा फ्री भी बहुत अच्छे से आप केक बना के, आप मिलेट्स से केक बनाकर, आप बहुत अच्छे फाइबर युक्त पदार्थों से भी बहुत अच्छा केक बना सकते हो। और आपने एक बहुत अच्छी लाइन कही भावना जी कि जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस करें, आप अपने परिवार के सदस्यों को भी अच्छा हेल्दी खिलाने के लिए भी आप आपका कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आपके साथ ज्वाइन होकर उन चीजों को सीख सकते हैं। भावना जी,
0: बिल्कुल
1: चलते चलते एक सवाल और है कि जितना मैंने आपको स्टडी किया है, आपको मीडिया के थ्रू मैंने समझा है, मैंने नोटिस किया है कि अक्सर आप महिलाओं को ही बहुत ज्यादा प्रेरित करती हैं, या महिलाओं से, आपके यहाँ पे कोई मेल स्टाफ नजर नहीं आया मुझे,
0: जैसे
1: ऐसा
0: मैं,
1: क्यों?
0: जैसे लता जी आपने ये क्वेश्चन पूछा, मैं से कई लोगों ने भी ये क्वेश्चन पूछा था कि आपने कभी भी मेल स्टाफ को हायर क्यों नहीं किया, या कभी भी आप मेल ओरिएंटेड क्यों नहीं है। तो जब मुझे ये बोल जब भी मैं भी शुरुआत में मुझे भी लगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए, पर मैं बिल्कुल क्लियर थी जब मेरी स्किल्स मैं लेडीज को सिखा रही हूँ, और अगर मैं कोई मेल स्टाफ हायर कर रही हूँ तो फिर उसका तो कुछ यूज ही नहीं है। तो मेरा सबसे पहला टारगेट ही यही था कि मेरे को बिल्कुल क्लियर विजन था कि मुझे महिलाओं को ही आगे बढ़ाना है। अगर अगर कोई छोटा मोटा काम भी होता है, जैसे प्लम्बिंग भी होता है या कुछ भी छोटा मोटा काम होता है, अगर कोई मुझे पता चलता है कि ये कोई लेडी ये काम कर रही है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि आप आओगी ये काम करने, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई महिला आगे बढ़े। तो इसीलिए मैंने मेरे बिजनेस में किसी भी को मतलब इन्वॉल्व नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने महिलाओं को ही से उन्हीं के साथ मैंने काम करना शुरू किया है। तो लता जी आज मेरे पास 5 का स्टाफ है, एंड वो 5 का स्टाफ भी मुझे कम पड़ रहा है, इतना काम है। तो जो भी लोग काम सीख के मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम।
1: अच्छा, अगर कोई पुरुष वर्ग सीखना चाहे तो?
0: लता जी सीख तो सकता है, पर मैं उनको दूसरा सजेस्ट कर सकती हूँ, पर पर्सनली मैं कोई मेल को नहीं सिखाती हूँ।
1: अच्छा, आपने एक तरह से इसको एक अपना लाइफ का वैल्यूबल उसमें ऐड कर रखा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रोजगार दूं, उनको स्वावलंबी बनाऊं, ये
0: हाँ आप ये
1: आपका
0: कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि लता जी जब महिला कुछ करती है ना तो इतनी खुशी मिलती है ना। पुरुष वर्ग तो काम कर ही रहा है, पर मेरा फोकस महिलाओं पे है कि वो काम करके, काम सीख कर और खुद की लाइफ भी अच्छी बनाए, खुद के बच्चों के लिए भी कुछ करें। तो जब जब महिलाएं आती है बोलती है मैम आज मैंने ये मेरे बच्चे के लिए खरीदा जस्ट बिकॉज ऑफ यू, तो मुझे इतनी खुशी मिलती है। तो मैं चाहती हूँ कि महिला वर्ग के लिए भी आगे काम होना चाहिए। तो इसलिए
1: चलिए,
0: मेरा पूरा फोकस वही है कि मैं लेडीज को सिखाऊं और उन्हीं को मैं आगे मोटिवेट करूं और उन्हीं को प्रमोट करूं।
1: भावना जी, आप हमारे नारीवाटिका स्टूडियो में

0: फोन आउट के माध्यम से हमसे जुड़े और आपने बहुत अच्छी बातें हमसे शेयर करी। और एक घर से एक महिला छोटा सा सेटअप शुरू करके एक एंटरप्रेन्योर बन सकती है, उसका आप एक जीता जागता उदाहरण है। और चलते चलते बस मैं यही चाहूंगी कि क्या आप हमारी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं, हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहती हैं, ताकि वो भी मोटिवेटेड हो और खुद को पैरों पे खड़ा कर सके।
1: मैं महिलाओं को और जो भी श्रोता जो भी मेरे को सुन रहे हैं, मैं उनको यही बोलूंगी कि अगर आप में काम करने का जुनून है तो आप घर बैठ के भी काम कर सकती हैं। अगर आपको कोई कोई भी पर्सनल इश्यू है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, तो आप नॉट ओनली बेकिंग, आप और भी कुछ काम सीख के घर से बिल्कुल कर सकती हैं। बस थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट वो जरूरी है, वो मेरा बिल्कुल रहेगा कि अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट है, अगर आपके हस्बैंड का आपके पास सपोर्ट है, तो आप कुछ भी कर सकती हैं। बस खुद में एक विश्वास लेके आने की देर है कि हम कुछ कर सकते हैं लाइफ में, तो आप बिल्कुल कर सकती हैं। फैमिली के साथ, परिवार के साथ, बच्चों के साथ वो बिल्कुल अटकाव नहीं होते हैं हमारी लाइफ में, उल्टा वो हमको पुश करते हैं कि हमको कुछ करना है।
0: जी,
1: एंड थैंक यू सो मच लता जी मेरे को भी अपॉर्चुनिटी देने के लिए।
0: नहीं जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सखियों, अभी हम बात कर रहे हैं भावना जी से, और भावना जी, आपने हमारे सखियों के साथ बहुत ही प्रेरणादायक बातें साझा करी कि एक घर से आप अपने सपनों की उड़ान को कैसे पूरा कर सकते हैं, अपने कल्पना को किस मतलब कितना बड़ा आकाश दे सकते हैं, और ना केवल आप रोजगार उससे अपने लिए कर सकते, साथ ही खुद स्वावलंब होने के साथ साथ औरों को भी आप मदद कर सकते हैं, उनको अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी सखियों ने आपकी बातें जरूर गौर से सुनी होगी, और अगर किसी के मन में एक छोटा सा भी जज्बा है कि हाँ वो कुछ करना चाहती हैं, तो आज उन्हें आपकी बातों से जरूर प्रेरणा मिली होगी। और हमारे फोन आउट के माध्यम से आप हमसे जुड़ी, हमारे सखियों से आपने बातें साझा करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक
1: थैंक यू सो मच लता जी मुझे भी ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए।
0: यू।
2: सखी, अभी आपने एक फोन आउट वार्ता सुनी कि कैसे घर से एक केक का बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। बातचीत की थी द केक आर्टिस्ट भावना चंदवानी से, बातचीत की लता परिहार जी ने। तो चलिए अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: जी हाँ, सपने पूरे करने के लिए, ख्वाब पूरे करने के लिए बस मन में जज्बा होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही जज्बे की कहानी हम एक सुन चुके हैं, और एक को घरेलू उद्योग जो उन्होंने शुरू किया था घर से, और ऐसे कई सारे उद्योग हैं जो हम घर से शुरू कर सकते हैं। हस्तशिल्प उद्योग है, अगरबत्ती निर्माण है, मोमबत्ती को बनाना है, अचार पापड़ का उद्योग है, बेकरी है, हस्तशिल्प के जो आभूषण है जो अपन हाथ से ना छोटे छोटे आभूषण बनाते हैं,
1: आजकल बहुत चलन में है, आजकल बहुत चलन में है पूर्णिमा जी, और बहुत सुंदर सुंदर से आभूषण बनते हैं, और साथ में बुनाई कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन, और आजकल तो मसाले भी, मतलब जिसको कहते हैं ना रेडी टू मेक मसाले, आप पोहा रेडी टू मेक बना सकते हैं, आप सांभर मसाला रेडी टू एक बना सकते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे मसाले हैं जो आपके समय की तो बचत करते ही करते हैं, साथ ही आपके काम को भी बढ़ावा दे सकते हैं। और साथ में साबुन और कपड़ों का निर्माण तो आजकल तो बहुत ज्यादा हो रखा है।
0: हाँ, अगर हम बात करें राजस्थान की, तो यहाँ का बंदेज और ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो अपन घर से शुरू कर सकते हैं। कश्मीर में कालीन बड़े फेमस है, उत्तर प्रदेश की चिकनकारी और गुजरात की कढ़ाई भी बहुत फेमस है।
1: बिल्कुल सही कहा। और पूर्वोत्तर में जो बांस के उत्पाद है ना पूर्णिमा जी, वो उनकी परंपरा को तो दर्शाता है, साथ में उनके मतलब उनकी कला को दिखाता है, और घरेलू उद्योगों में उसका शानदार बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और इन उद्योगों से लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है, और साथ ही साथ खासकर जो महिलाएं जो घर का काम करने के बाद जो पूरा दिन जो फ्री रहती हैं, तो उनको एक तरह से रोजगार का भी साधन मिल जाता है। और अब तो बहुत बहुत छोटी छोटी कंपनियां ऐसी खुल गई है जो इनको आगे बढ़ावा देती है, बहुत सारे NGOs है जो इनको बहुत इनको सही दिशा देते हैं, मीडिया में भी बहुत सारे ऐसे माध्यम है में वो अपने उत्पादकों का प्रचार और प्रसार कर सकती है। तो अब वो एक सिर्फ पर्टिकुलर क्षेत्र से सीमित नहीं है, अब पूरा कहते हैं ना पूरा आसमान उनका है। हाँ। जितना चाहे वो अपने पंख फैला सकती हैं।
0: और ये जो घरेलू उद्योग है वो आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाता है, एक महिला को मजबूत बनाता है, जिससे देश मजबूत बनता है।

0: आपको आती है, शायद दूर दराज किसी को नहीं आती होगी। अब आज एक जैसे बहुत सारी महिलाओं ने जैसे बहुत सारी रेसिपीज डालनी शुरू करी है, अब रेसिपीज में भी एक्सपेरिमेंट होने लगे हैं। पहले तो एक सादा भोजन होता था, अब खास भोजन होने लगा,
1: फ्यूजन
0: भी होने लगे, अब आजकल जो मिलेट्स पे भी बहुत ज्यादा जोर देने लगे। यानी कुल मिला के अब हम लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत ज्यादा जागरूक होने लग गए। और इसी से संबंधित अगर आज कुछ खाद्य पदार्थ, और मोस्टली लोग चाहते हैं कि घर का बना हुआ कुछ मिल जाए, है ना।
1: अगर हम बाहर रहते तो हम सबसे पहले ये सोचते कि घर का खाना हमें कहाँ मिलेगा, घर जैसा खाना,
0: घर जैसा खाना, और घर जैसा खाना, घर जैसा स्वाद और घर से बने उत्पाद वाकई में आज देश विदेश में धूम मचा रहे हैं। और वो हर महिला को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करते हैं, उसको आत्मनिर्भर बनाते हैं, है ना। तो आत्मनिर्भर जब एक महिला आगे बढ़ती है ना पूर्णिमा, तो स्वयं अकेली नहीं बढ़ती, क्योंकि हर महिला चाहती है कि जो कुछ भी वो कमाती है या जो कुछ भी उसको उसके बदले में मिलता है तो वो अपने परिवार में उसको बांटती है। और जब परिवार आगे बढ़ता है तो समाज आगे बढ़ता है।
1: हाँ वो तो है। और अगर जब महिला आत्मनिर्भर बनती है तो सिर्फ वो शिक्षा ही नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारे माध्यम हैं जो जुड़े होते हैं उसके साथ। शिक्षा है, व्यापार, विज्ञान, बहुत सारी जो चीज़ें हैं उन सबका ज्ञान अगर हो या आप बढ़ना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारा स्कोप होता है, बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ आप खुद को निखार सकते हो और आगे बढ़ सकते हो।

पूर्णिमा जी, अक्सर आपसे सुना होगा कि एक लाइन हम सुनते आ रहे हैं अक्सर और पढ़ी भी है कि पढ़ी लिखी लड़की रोशनी है घर की, है ना। और वो सिर्फ एक घर को रोशन नहीं करती है, वो दो दो घरों को रोशन करती है, और दो घरों से रोशन से पूरी मतलब क्या ना समाज भी रोशन होता है। और खासकर अगर उस लड़की में हुनर है तो जरूर उसके हुनर के उनको पंखों को जरूर पंख मिलने चाहिए। और आजकल छोटी छोटी चीजें के बहुत सारे ऐप आने लग गए हैं, अगर आपको नहीं भी पढ़े लिखे हैं बहुत ज्यादा, मगर अगर आपको छोटा मोटा भी अगर आपको मीडिया चलाना आता है या कंटेंट अगर आप लिखती हैं, मतलब कहने के लिए पूर्णिमा ऐसा है ना कि अब जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ी बड़ी डिग्री

0: का तो बेटर। आत्मनिर्भरता जो लता है वो आत्मनिर्भरता अपने सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, आत्मनिर्भरता वो होता है कि अपने जो डिसीजंस है वो आप खुद लेना सीखे, चाहे वो आपकी हेल्थ के लिए हो, चाहे वो आपकी एजुकेशन के लिए हो, या आपके करियर के बारे में हो, या घर के किसी परिवार के सदस्य के बारे में हो। अगर जहाँ पे आप खुद डिसीजन लेने के लिए सक्षम है तो आप आत्मनिर्भर है, क्योंकि आप जब खुद आत्मनिर्भर होंगे तो आप दूसरों को भी सहारा दे सकते हैं, आप दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दे सकते हैं, और आपके बच्चे भी आपको जब आत्मनिर्भर देखेंगे तो वो भी आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं।
1: ये कहना करने से ही सिखाया जाता है
0: जी।
1: क्योंकि जब आपको फाइट करते हुए देखेंगे, आपके अपने संघर्ष की कहानी जब बच्चे देखेंगे, क्योंकि सक्सेस पूर्णिमा एक दिन में नहीं मिलती। और ये मैं मेरी सखियों को भी कहना चाहती हूँ, सखियों, कि हम बातें करते हैं बहुत सही है, सुननी भी अच्छी लगती है, मगर जब उसको हम क्रियान्वित करने लगते हैं तो एक चीज़ ज़रूर मन में ध्यान रखना कि करना करना करना, यानी ट्राई ट्राई ट्राई एंड वन डे यू विल डेफिनेटली सक्सीड। क्योंकि मेहनत जो है वो पूरा आपका कहते हैं इम्तिहान पूरा लेती है, आपको इमोशनली भी तोड़ेगी, आपको फाइनेंशियली भी डिस्टर्बेंस आएगा, मगर एक चीज अगर है कि जज्बा कि मुझे मेरे हुनर पर पूरा भरोसा है, तो वो व्यक्ति कभी नहीं ठहरता। और धीरे धीरे जब आपकी मेहनत रंग लाने लगती है, लोग आपको समझने लगते हैं, तो आपको मदद भी मिलती है।
0: और अगर बात करें मदद की, तो कई सारी जो महिलाएं हैं वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी आगे बढ़ रही हैं, कई बार कई जो है घरेलू उद्योग चला रही हैं, या ऑनलाइन व्यवसाय जो है वो कर रही हैं। पर और कई ऐसी महिलाएं भी हैं जो इन समूह के माध्यम से जो अपने हाथ के बने उत्पाद है उनको बेच रहे हैं,
1: बिल्कुल,
0: और अपने परिवार की आर्थिक रूप से हेल्प कर रहे हैं, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं। और जब आप अपने परिवार को सपोर्ट करते हो तो आपके अंदर एक अलग ही
1: कॉन्फिडेंस
0: और अलग ही कॉन्फिडेंस आता है।
1: सही कहा पूर्णिमा। और सरकार की भी अनेक योजनाएं हैं, जैसे महिला उद्यमिता कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह और कौशल विकास योजनाएं भी ऐसी जो अनेक योजना है जो महिला उद्यमिता के कार्यक्रम या स्वयं सहायता समूह और ये जो है जो महिलाओं को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। और मतलब वो ये वाली बात है कि महिलाओं की जो शक्ति है ना, उनकी मेहनत और वो जो कहते हैं ना आत्मविश्वास, ये समाज की सबसे बड़ी पूंजी है। और जब महिलाएं आत्मविश्वासी बनती है, आत्मनिर्भर बनती है, तो घर तो उठता ही है, देश भी उठता है, और समाज तो आगे बढ़ता ही बढ़ता है। तो ये पूर्णिमा वाकई में वो वाली बात है ना कि कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, जो बार बार हम एक ही चीज कहते हैं कि हारे नहीं, हिम्मत ना हारे, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत है। तो बस अपने मन को मजबूत करें और अपने हुनर को आगे बढ़ाते रहें।

0: सखियों, आज हमने जाना कि छोटे मोटे घरेलू उद्योग किस तरह बड़े बदलाव ला सकते हैं, महिलाओं की आत्मनिर्भरता समाज की प्रगति का आधार कैसे बन रही है, और आपको ये आज की उम्मीद करती हूँ पूर्णिमा कि हमारी सखियों को जरूर इसमें कुछ सीखने को तो जरूर मिला होगा।
1: हाँ, और आपने और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और सुनते रहिएगा अपना पसंदीदा प्रोग्राम नारी वाटिका। और आज की नारी वाटिका की टेक्निकल टीम से हम आपको रूबरू करवाते हैं। HPT पे थे विक्रम सिंह भाटी, CL सोनी,
0: कंट्रोल रूम पे थे नरेंद्र सिंह राठौर, और ये जो खूबसूरत से नगमे आपको आप तक पहुंचाए थे वो थी विजेता जी वैष्णव,
1: और प्रोग्राम प्रोड्यूसर है मनीष सोलंकी। इस उम्मीद के साथ हम दो आपकी रेडियो सखी, मैं पूर्णिमा, मेरे साथ
0: लता परिहार,
1: लेते हैं विदा फिर मिलने के वादे के साथ। तब तक स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे नारी वाटिका कार्यक्रम, यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है और FM सन सिटी। इस समय दिन के 2:15 हो रहे हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
3: मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है, दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की, और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध है।

0: जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
1: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फॉरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
4: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है, ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है, इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
5: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
5: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे, तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, इस सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी

0: के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
1: That is the only way that our MSME can go to the next level. And it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
2: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा, जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि एक मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले जीआई टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी।

0: दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ एक एक गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्थ फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: किशोर कुमार की आवाज में जहरीला इंसान फिल्म का गीत आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

यादों की बारात फिल्म का गीत आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तर्ज राहुल देव बर्मन की। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप

राहुल देव बर्मन की तर्ज आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में इस गीत को लिखा शैलेंद्र ने। फिल्म का नाम छोटे नवाब। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: बीमार हुई।
1: किशोर कुमार की आवाज में बुढ़ा मिल गया फिल्म का गीत आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नक्मे। सुनिए किशोर कुमार की आवाज में शौकीन फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है योगेश ने, संगीत राहुल देव बर्मन का।

0: इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: मन चाहे गीत,
2: मन चाहे गीत,
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मंच चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

अनचाहे गीत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। जैसा कि आप जान ही गए हैं, इस कार्यक्रम में जो चिट्ठियां भेजती हैं, पसंद भेजने की क्या तकनीक है और किस तरह से इसे भेजना है, क्या नियम है, और अब ये जान लेते हैं कि कार्यक्रम में पहला गीत किसकी पसंद से शामिल होने वाला है। तो पसंद है आप सभी की छत्तीसगढ़ डोंगर गांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, साथ ही सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। आप सभी की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं। अजनबी फिल्म से एक गीत सुनिए, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

विद्यार्थी पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और अगला गीत कौन सा है उससे पहले बता दें कि किसकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं गीत। पसंद आई है अम्बेडकर चौक खुरई से राम सखी परमानंद, सौरभ गौरव, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू डुंडुन और उनके परिवार की। और आप सभी ने पसंद किया है मुकेश की आवाज में हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। तो सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

मुकेश की आवाज में हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत आपने सुना आनंद बख्शी के बोल कल्याण जी आनंद जी का संकेत। कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला गीत है कन्यादान फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज में ही ये गीत है। नीरज के बोल शंकर जयकिशन का संगीत। इसकी फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ देवरी भाटा पारा से गन्नूलाल रजक के आर एस अश्विनी कुमार और गणेश राम ने। साथ ही पुणे से पंकज बाड़ोदे आर्या प्रियंका बीटी बाड़ोदे और चंद्रप्रभा बाड़ोदे ने भी कन्यादान के इस गीत को सुनना चाहा है। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं गीत।

तो कुछ इसी तरह से खत हम तक पहुंच रहे हैं, आप सभी के मनचाहे गीत कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और आपकी फरमाइशें पूरी हो रही हैं आपके नाम के साथ। तो हमारे साथियों ने अलग अलग तो खत भेजे हैं, अलग अलग जगहों से एक ही गीत की जब फरमाइश आती है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। हालांकि अगला जो गीत है वो अलग अलग फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और ये फरमाइश हमें भेजी है गुलाबरा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से भाई राजू निखाड़े, अनिता निखाड़े, ऋषभ और सुरेश निखाड़े ने, और साथ ही बड़ा बाजार देवास से जाकिर हुसैन नजमी, तस्लीम नजमी, मुर्तजा नजमी ने भी अलग अलग फिल्म का यही गीत सुनना चाहा है। तो चलिए आप सभी की पसंद पर लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए अलग अलग फिल्म से आनंद बख्शी के बोल से सजा ये गीत जिसे राहुल देव बर्मन ने संगीत से सजाया।

लता मंगेशकर की आवाज में अलग अलग फिल्म का ये गीत आपने सुना, राहुल देव बर्मन की तर्ज, आनंद बख्शी के बोल। कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला जो फरमाइशी गीत है वो भाभी फिल्म से है और इस गीत के लिए फरमाइश भेजी है आप सभी ने सांगवड़े कोल्हापुर महाराष्ट्र से जिनराव, पृथ्वीराज, ऋतुराज पाटिल, प्राची प्राजक्ता, प्रगति पाटिल, आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं भाभी फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा, चित्रगुप्त का संगीत।

पड़ाव पर हम आ चुके हैं। कार्यक्रम का अंतिम गीत किनकी पसंद पर हम सुनवाने वाले हैं आपको बता दें, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकी पवार, मोहम्मद हसनैन पवार, बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े, ग्राम छैगांव देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वाघे, वंदना वाघे, उपेंद्र वाघे, झवर वाघे, तनुश्री आरोही और कान्हा वाघे, आप सभी ने फरमाइश भेजी है वंदना फिल्म के गीत की। आप सभी की फरमाइश पर ये गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज, असद भोपाली के बोल, रवि का संगीत।

वंदना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, असद भोपाली के बोल, रवि का संगीत। इसके साथ ही आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसके साथ अपनी दोस्त नेहा शर्मा को भी दीजिए इजाजत। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। आज के इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं कटीला रास्ता, इस नाटक का पहला भाग। ये नित्यमूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत पाते का हिंदी रेडियो रूपांतर है। रूपांतर किया है ए शौर्य राजन ने। निर्देशक हैं वीपी दीक्षित बटुक।
1: लाल जी नर्सरी, पौधों से हरियाली छाए और ये धरती भी मुस्कुराए। सभी प्रकार के फल फूल सजावट के पौधे और वर्मी कंपोस्ट खाद उचित मूल्य पर। विजिट करें लाल जी नर्सरी, राणो जी का बाग, खोखरिया बेरा, मंडोर, जोधपुर। फोन 9799995975।
2: डॉक्टर भारती, MBBS।
3: फिर भी वो
2: जी, मैं आपके गांव की हम पेशा लेडी डॉक्टर हूँ।
3: भारती सुनो तो,
2: अब छिपाओ दोराव अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर साहब, आपकी प्रेयसी और भावी पत्नी डॉक्टर उमा देवी मेरी परम प्रिय सखी हैं। कम से कम इस बात को मत भूलिएगा।
3: ओ भारती, कृपा करके मेरी बात तो सुनो।
2: उसकी कोई जरूरत नहीं, सब जानती हूँ। मंगल ललूर गांव के बड़े रईस श्रीमान मरुद नायकम के इकलौते सुपुत्र हैं आप, और मद्रास शहर के बहुत बड़े व्यापारी की इकलौती सुपुत्री है डॉक्टर उमा देवी। दोनों का शुभ।
3: लेकिन भारती, इसमें तुम्हारी भी गलती है।
2: मेरी गलती? बातें तो बड़ी ऊंची की थी आपने, कहाँ गई वो सब बातें?
3: मैं भूला नहीं हूँ। ये सही है, हमने निश्चय किया था कि हम एक साथ पढ़ाई पूरी कर जीवन साथी बनकर गांव लौट आएंगे और जनता की सेवा करेंगे।
2: लेकिन हमारा वो निश्चय, वो संकल्प अब कोरा सपना हो गया है।
3: कोरा सपना नहीं हो गया भारती, समय तथा युग के अनुसार थोड़ा बदल गया है बस।
2: समय और जमाने के मुताबिक पैंतरे बदलना, रंग बदलना क्रिकेटों का काम है, पढ़े लिखे उपाधिधारी और विचारवान व्यक्तियों का नहीं है, समझे?
3: इसीलिए तो मैं विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने की कोशिश में।
2: हाँ हाँ, आप उसी कोशिश में हैं। मैं जानती हूँ आपकी कोशिशें। भावी ससुर साहब की सहायता से विदेश जाकर उच्चतम शिक्षा पाने वाले हैं आप, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए।
3: भारती, तुम मुझे अब भी समझने की कोशिश नहीं कर रही हो।
2: खूब समझ गई हूँ आपको डॉक्टर साहब। विदेश जाकर पढ़ना और बहुत बड़े रईस की इकलौती बेटी का चोलेरी डॉक्टर भी है पति बनना, ये दो बड़े लक्ष्य आपकी आंखों पर पट्टी बांध चुके हैं, की हुई प्रतिज्ञाओं को भुलवा चुके हैं।
3: भारती, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बना करती, जिंदगी बसर करने की बुनियाद है पैसा। प्रेम के साथ पैसा भी हमें चाहिए।
2: वाह, केवल प्रेम को लेकर जिंदगी नहीं बन सकती, खूब कहा आपने। दौलत की बुनियाद पर प्रेम का दुर्ग खड़ा करना चाह रहे हैं आप, कीजिए, शान से कीजिए।
3: भारती देखो, तुम्हारी पीड़ा समझ रहा हूँ मैं। हम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी इसी बात से तुम बहुत दुखी हो और मुझ पर अपना क्रोध उतार रही हो। देखो भारती, समझदारी इस बात में है कि हम कैसे अपनी जिंदगी बेहतर बना पाते हैं। जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में रहना और उसी के अनुसार सोचना कोई गलत काम नहीं है। अच्छा तो यह है कि हम बीती बात भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें और भविष्य पर दृष्टि रखें।
2: अतीत को भूल जाएं, वर्तमान के बारे में सोचें, ठीक ही है। होशियारी से जिंदगी गुजारने की सोचना तो जरूरी है, क्यों ना सोचा जाए।
3: मुझे खुशी है कि तुम समझने लगी हो अब।
2: जी हाँ, समझने लगी हूँ।
3: रियली?
2: हाँ, जिंदगी चाहे जैसे नहीं गुजारनी है, गुजारनी है अपनी इच्छा और अपने लक्ष्य के अनुसार। जीवन के इस सच्चे सिद्धांत को समझ गई हूँ मैं।
3: भारती,
2: सिर्फ भारती नहीं, I am डॉक्टर भारती। डॉक्टर अदनगिरी, आपके शानदार जीवन और उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। मुझे आज्ञा दीजिए, बाय बाय।
4: भारती, ये क्या बात है?
2: मेरी शादी में नहीं आ रही हो? तुम्हारा बाहर जाना इतना जरूरी है क्या? अब क्या करूं उमा, मेरी इच्छा तो यही है।

0: कि तुम्हारी शादी के मौके पर जरूर रहूं, लेकिन कर्तव्य को भी नहीं डाला जा सकता ना।
1: हाँ हाँ, बढ़िया ही कर्तव्य निभाने वाली। तुम्हारे गांव में ऐसा क्या कर्तव्य आ पड़ा जिसे निभाना जरूरी हो गया, बताओ तो जरा।
0: भविष्य में वो तुम्हारा भी गांव होगा उमा। ससुराल का गांव पीहर से कम नहीं है, और फिर तुम्हारे पतिदेव तो मेरे गांव के हैं।
1: तो तुम उन्हें जानती हो?
0: क्यों नहीं, भली प्रकार जानती हूँ। मैं उसी गांव की हूँ और मेरे मामा वहाँ रहते हैं। अच्छा ये बताओ, हनीमून के लिए कहाँ कहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया तुमने?
1: अब क्या बताऊँ भारती, पापा ने आगे की पढ़ाई के लिए सारा इंतजाम करा दिया है। उनके व्यापार उद्योग क्षेत्रों के मित्र तो सब जगह फैले हुए हैं ना।
0: तब तो विदेश में आगे की उच्चतम शिक्षा का इंतजाम करा दिया होगा। ठीक है, उसे ही एक तरह से हनीमून समझो।
1: अब शादी में सिर्फ 10 ही दिन तो रह गए हैं, तुम इस बीच बाहर जाने का इरादा छोड़ क्यों नहीं देती?
0: मेरी विवशता है उमा, हमारे गांव के डॉक्टर बहुत बूढ़े हो चुके हैं। उनका काम चलाने के लिए एक डॉक्टर की जरूरत है, उनका कार्यभार संभालने के लिए किसी ना किसी को तो जाना ही है। मैं ही वो काम संभालने जा रही हूँ।
1: तुम भी खूब हो भारती, शहर के डॉक्टर गांव में जाने से कतराते हैं, धंधा चले ना चले साइन बोर्ड लगाकर बैठ जाते हैं शहर में, और एक तुम हो गांव जाकर सेवा करने पर तुले हो।
0: इसीलिए तो जा रही हूँ, वरना आप लोग गांव चली जाओ कहकर भगा देंगे तो।
1: लेकिन फिर भी सिर्फ 10 दिनों की ही तो बात है।
0: आई एम सो सॉरी उमा।
1: ओफो भारती, तुम बड़ी हठी हो।
0: कुछ बातों में औरतों का हठीलापन अच्छा ही होता है और जरूरी भी है। अच्छा उमा, तुम्हारे सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ।
1: शुक्रिया।
0: मुझे आज्ञा दो।
1: तुम्हारे हट के आगे और चारा ही क्या है भारती।

0: आती उस हवाई जहाज को क्यों उतार के ले गई? खोई खोई सी क्यों खड़ी हो? अस्पताल नहीं जाओगी?
1: अभी जाती हूँ मामा, नर्स नागमणि के इंतजार में हूँ।
0: पूरा मत मानना भारती, तुम बड़ी डॉक्टर हो, तुम्हारे इंतजार में लोग रहे ये तो ठीक है, पर किसी और के इंतजार में तुम रहो ये जस्ता नहीं।
1: ये बात नहीं है मामा जी, मैं अपने काम की जरूरत के लिए इंतजार करती हूँ, किसी व्यक्ति के इंतजार में नहीं हूँ।
0: तुम ठीक अपने पिता की तरह हो, उन्हें राष्ट्र की स्वाधीनता, राष्ट्रीय संग्राम आदि के बारे में जितना लगाव था उतना ही लगाव तुम्हें अपने कर्तव्य के बारे में है। एक तरह का नशा ही चढ़ा हुआ था उन्हें, अब वैसा ही नशा तुम पर सवार है।
1: वो नशा नहीं था मामा जी, वो भक्ति थी। नशा तो जंगली नाले की तरह है, जो एक दिन उमड़ आता है तो दूसरे दिन उतर जाता है, पर मामा जी भक्ति ऐसी चीज नहीं है, वो तो सदा बहते रहने वाली धारा है।
0: मैं क्या जानूं बेटी, मैं ठहरा गंवार, खेत जोतकर रोजी चलाने वाला।
1: ऐसी बात नहीं है मामा जी, आपकी मेहनत और लगन की ही मेहरबानी है कि मुझ अनाथ लड़की को आपने पाल पोस कर बड़ा किया और पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया।
0: वो मेरा वचन पालन था जो मैंने अपनी बहन को दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में कूट पड़ते वक्त तुम्हारे पिता की उम्र 22 साल की थी, शादी के कुछ ही महीनों की बात है।
1: और माता जी?
0: उस समय यानी 30 साल पहले तुम्हारी माँ मेरे साथ रहती थी, तुम्हारे पिताजी जेल में थे।
1: फिर क्या हुआ?
0: देश के स्वतंत्र होने के बाद ही मैं घर में घुसूंगा, तब तक मेरे लिए घर गृहस्थी कुछ नहीं है, यही कहते थे तुम्हारे पिता।
1: और आजादी मिलने के बाद?
0: तुम्हें जन्म देने के बाद तुम्हारी माँ अपनी आजादी की खोज में चल बसी, शायद अधेड़ उम्र में प्रसव होने की वजह से यह हालत हुई होगी।
1: बेचारी दुखियारी माँ।
0: उसी व्यथा में तुम्हारे पिताजी भी घुल घुल कर मर गए, वे तुम्हारी माँ को बहुत प्यार करते थे।
1: स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में जो जमीन उन्हें भेंट की गई थी उसको लेने से तो पापा जी ने इनकार कर दिया था ना?
0: और क्या, टुकड़ा भर जमीन मिलेगी इस अरमान से थोड़े ही उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। खैर उस

0: को जाने दो। मैं तो दूसरी ही बात कहने आया था, भूल ही गया।
1: क्या बात है मामा जी?
0: हाँ, याद आ गई। इस बात का ख्याल रखना बेटी, यहाँ के सरपंच मरूद नायकम, बड़े मीरासदार रईस कुमार सामी जैसे लोगों का मन रखना भी जरूरी है। उनसे झंझट मोल लेना ठीक नहीं होगा। इन लोगों के सहयोग से ही ये आम अस्पताल बना है और इन्हीं के सहारे ये चल रहा है।
1: काफी देर हो गई है, नर्स नागमणि अब तक नहीं आई। मैं चली जाती हूँ मामा जी।
0: ठीक है, मेरी बात याद रखना, तुम आखिर एक लड़की हो, ये मत भूलना।
1: हाँ हाँ।

0: चार। डॉक्टर साहिबा, चार दिनों से बुखार लगातार चल रहा है, बहुत बहुत कमजोर हो गया हूँ। जरा कह दीजिए बिना पानी मिलाए अच्छी दवा देने।
1: मिक्सचर वाली दवा तो पानी के बिना नहीं बन सकेगी। टिकिया लेंगे आप? ऐसा ही लिख कर दे देती हूँ, दुकान से खरीद लीजिएगा।
0: डॉक्टर जी पैसा नहीं है। डॉक्टर जी
1: कोई बात नहीं, ये लीजिए पैसे।
2: डॉक्टर साहब, उस आदमी को दवा मत दीजिए, वो हमारे रईस जादे कुमार स्वामी जी के दुश्मन का आदमी है।
1: तुम आ गई नागमणि, इतनी देर कैसे हुई? इस आदमी को दवा देने से रोक क्यों रही हो?
2: एक ही करके पूछी ना।
1: कहो तो।
2: वो अपने पंचायत प्रेसिडेंट है, उनके घर जाना पड़ा, उनको बुखार है।
1: ठीक है, फिर
2: आपको तुरंत ले आने को कहा।
1: क्यों, वो यहाँ नहीं आ सकते?
2: इस गांव का यही दस्तूर है, आप नहीं जानती बड़े लोग अस्पताल में कैसे आएंगे।
1: अफसोस, बुखार को इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि वो बड़े और छोटे लोगों को पहचान सके।
2: आप नई आई हैं, इसीलिए यहाँ के रीति रिवाज नहीं जानती, वरना ऐसा नहीं कहती।
1: मुझे अपने इस अस्पताल से ही मतलब है, मैं और कुछ नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती हूँ।
0: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मैं चलूं?
1: हाँ जा सकते हो भाई, पर देखो वो टिकियां जरूर खरीद लेना, रोज सुबह और शाम को खाना भोजन के बाद।
0: आप जुग जुग जिए डॉक्टर साहब, जुग जुग जिए।
2: डॉक्टर साहब, वो आदमी हमारे रईस साहब के दुश्मन का नौकर है, इसीलिए।
1: मरीज का ना कोई दुश्मन होता है ना दोस्त, डॉक्टर के लिए भी यही बात है।
2: ओफो, आप अभी छोटी उम्र की हैं, समझती नहीं है, मैं अनुभवी औरत कह रही हूँ, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। अब तक कई डॉक्टर आ चुके हैं, जा भी चुके हैं।
1: नागमणि, तुम एक नर्स हो, तुम्हारा काम दूसरों को धमकाना नहीं है, समझ रही हो?
2: लगता है तब तो आप प्रेसिडेंट के घर नहीं जा रही हैं।
1: प्रेसिडेंट हो या उससे भी बढ़ चढ़कर कोई और, अस्पताल उनके यहाँ नहीं जाएगा। अगर वो चाहे तो किसी बड़े डॉक्टर को घर बुला लाएं, ऐसी औकात है उनकी।
2: याद रखिए, ये अस्पताल उन्हीं की मदद से चल रहा है।
1: नागमणि,
2: जाकर यही कह दूं उनसे कि डॉक्टर साहब का कहना है आप किसी बड़े डॉक्टर को बुला लाएं, अस्पताल आपके घर नहीं आएगा।
3: वेदाचलम, लगता है भारती को गांव का कायदा समझ में नहीं आया है, नई उमंग है ना। मैंने सुना है नर्स नागमणि को नौकरी से हटाने की बात कर रही है, किस भुलावे में है ये?
4: नायकम जी, मैं समझा देता हूँ उसे, इस बार माफ कर दीजिएगा, आखिर तो आपकी दया मया से बना हुआ अस्पताल है ये।
3: नर्स हो या डॉक्टर, उसे नौकरी में रखना हमारी मर्जी पर है, समझे? नागमणि की कितने ही सालों पुरानी सर्विस है, उसे भारती बर्खास्त कराएगी, ये मजाल है उसकी।
4: नायकम जी, ये अपने बाप पर गई है, उसी की तरह ये भी थोड़ी तेज तबीयत की है।
3: तब इसकी भी उसके ही जैसी हालत होगी, मेरे ही अस्पताल में काम कर रही है और मेरे ही घर आकर इलाज नहीं करेगी। ये सब नहीं चलेगा यहाँ।
1: चिंता ना कीजिए, मैंने अपना इस्तीफा लिखकर दे दिया है।
4: भारती, तुम?
3: अच्छा तो ये बात है,
4: पर इस्तीफा क्यों दे रही हो बेटी?
1: क्योंकि इसी तरह मैं अपने अंतःकरण के अनुसार काम कर सकती हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ।
4: पर तुम्हें ये भी तो सोचना चाहिए था कि ये गांव के बड़े आदमी हैं।
1: मामा जी, मैं छोटी हूँ ना, बहुत छोटी हूँ, इसीलिए बड़े आदमियों के साथ सुलह कर चलना मुझे नहीं भाता, तभी तो इस्तीफा देकर बाहर आ गई हूँ।

0: सुना आपने?
1: इसके लिए मुझे खेद है साहब, मैं इस लड़की को समझा दूंगा।
0: ठीक है, देख लेंगे इसे भी। इस वक्त हम चले जाते हैं।
1: भारती, भारती तुमने नागमणि के मामले में ज्यादती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें।
2: चुपचाप अन्याय को देखते रहना मेरे बूते की बात नहीं है मामा जी।
1: बिटिया, मैं बूढ़ा हो चला, मरीज भी हूँ। इस दशा में गांव वालों से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं। ओफ ओ, पता नहीं ये क्या कर बैठे।
2: दुष्टों धूर्तों के पल्ले ना पड़ूं, अपनी रक्षा कर सकूं, इतना होश मुझे है। आप चिंता छोड़िए मामा जी।
1: तुम भी अजीब लड़की हो। ओह, अरे सीना दर्द कर रहा है।
2: क्या हुआ मामा जी? मामा जी क्या हुआ? सीने में दर्द? अभी आती हूँ, थोड़ा अपने को संभालिए। अभी आई।
1: पानी, थोड़ा पानी, पानी। पसीना छूट रहा है।
2: ले जाइए, ये लीजिए पानी। भगवान, दिल के दौरे के कारण इनकी हालत है। मामा जी एक इंजेक्शन लगा देती हूँ, आप आराम से सो सकेंगे।

0: डॉक्टर भारती।
1: अरे उमा तुम अचानक यहाँ कैसे टपक पड़ी?
0: देख लो
1: क्या ससुराल की भूमि के दर्शन करने चली आई हो।
0: अरे भाई पहले आसमान से नीचे तो उतरो,
1: गाड़ी को तुम आसमान कहते हो।
0: ये लो उतर आई तुम्हारी धरा पर।
1: अरे ए उमा भाई ये अट्टहास कैसा?
0: अरे भाई पागलों की तरह हंसी चली जा रही हो, आखिर बात क्या है?
1: तुम्हारा रूप देखकर पागल हुई हूँ। क्या बढ़िया वेश बना रखा है तुमने, एक मामूली वॉयल की साड़ी, हाथ में ये छोटा सा बक्स, सीधा कंघी किया हुआ सिर। वाह ठेठ देहाती दाईमा लगती हो।
0: ठीक ही तो है, लेडी डॉक्टर आखिर क्या है, दाईमा का ही तो दूसरा रूप है।
1: तुम अपनी बात कभी काटने भी देती हो? बात बात पर काटने दौड़ पड़ने की तुम्हारी आदत गई नहीं आखिर?
0: मजाक मजाक छोड़ो उमा। अच्छा पहले ये बताओ तुम कैसे इधर आई?
2: जानम्मा जी ऐसा करो तुम ये बक्स लेकर घर चली जाओ। हाँ मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी।
0: जी बहुत अच्छा।
3: अच्छा पहले ये बताओ कि ये जानम्मा कौन है, तुम्हारी नई नर्स साहिबा?
2: हाँ उमा मैंने अस्पताल से इस्तीफा देकर अपनी अलग डिस्पेंसरी खोल ली है।
1: वो सब तो मैं पहले ही सुन चुकी हूँ।
2: ये जानम्मा उसी डिस्पेंसरी की नई आया है और इसी के साथ नया कंपाउंडर भी रखा है, अल्लाह बख्श।
3: अच्छा अच्छा
2: फिर दोनों ही जान लड़ाकर काम करते हैं। ये नए लोग पुराने लोगों से ज्यादा वफादार हैं। अस्पताल के मरीजों की सारी भीड़ को ये दोनों ही संभालते हैं।
3: तुम्हारे मामा जी का क्या हाल है, तुम्हारी नई डिस्पेंसरी से बड़े खुश होंगे वो?
2: खुश तो हैं उमा, पर बेचारे हृदय रोग से पीड़ित हैं, दिन पर दिन निर्जीव से होते जा रहे हैं। और फिर दूसरे मरीजों के साथ उन्हें भी संभालना होता है, और यहाँ की कमी कमजोरियों को तो तुम जानती हो।
3: भारती तुम सचमुच बड़ी ग्रेट हो, वरना इस मनहूस देहात में बिना किसी सुविधा सहूलियत के कैसे रह पाती? इतना बड़ा काम संभालना तुम्हारा ही हौसला है।
2: इसे मनहूस देहात मत कहो उमा।
3: तो
2: ये मेरी जन्मभूमि है, मैं इसकी कर्जदार हूँ, इस भूमि की सेवा से मुझे हौसला मिला है।
3: बस तुम जैसे तीन चार पागल जने और मिल जाए।
2: अच्छा ये सब रहने दो, ये बताओ तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे पति महोदय क्या कर रहे हैं?
3: मैं आराम से वक्त काट रही हूँ।
2: अरे उमा ये क्या कह रही हो, विदेश जाकर पढ़ाई हो? और
3: मैं कहाँ पढ़ी थी, उन्होंने ही पढ़ा था, प्रशिक्षण पाया था, मैं सिर्फ साथ देने गई थी, डिग्री ले आई बस।
2: डिग्री ले आई हूँ, ऐसी डींग मारने भर से कोई फायदा नहीं है।
3: क्या बताऊं भारती, मेरे ससुराल वालों को भी मेरी पढ़ाई व नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं है।
2: उमा पहले तुम्हारा तो अपना एक इरादा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। अगर तुम्हें पैसा कमाने से कोई मतलब नहीं है तो सेवा भाव से ही तुम्हें इसमें लग जाना चाहिए था।
3: लेकिन मेरे पति भी ये चाहते हो तब तो?
2: ये बात है, डॉक्टर रतनगिरी की ये मान सकता?

0: सचमुच वो बधाई के पात्र हैं। अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारे पतिदेव डॉक्टर रतनगिरी आजकल क्या कर रहे हैं?
1: अरे तुम्हें नहीं मालूम, वो बहुत मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट हो गए हैं। मद्रास में बहुत बड़ा नर्सिंग होम बनवा लिया है, खूब प्रैक्टिस चल रही है।
0: तुम्हारी बात में एक छोटा सा सुधार है।
1: वो क्या?
0: बनवा नहीं लिया है, तुम्हारे पिताजी ने बना कर दिया है।
1: तुम आकर देखोगी तो दंग रह जाओगी, कितनी नई नई मशीनें औजार साधन सामग्रियां हैं, इतना सजाया दजाया गया है कि देखकर तबीयत खुश हो जाती है।
0: क्यों ना हो, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट है ना,
1: अक्सर विदेश घुमाते हैं, हृदय रोग चिकित्सा संबंधी विश्व विशेषज्ञों की परिषदों सभाओं व बैठकों में भाषण देने जाते हैं, बड़ा नाम है उनका।
0: हाँ हाँ जाना ही चाहिए, तुम साथ नहीं जाती? अच्छा क्या आजकल भी गए हुए हैं? तुम नहीं गई?
1: नहीं, मैं जाने की स्थिति में नहीं हूँ।
0: अरे कॉन्ग्रेचुलेशन उमा, मेरी प्यारी उमा माँ बनने वाली है।
1: चुप रहना, कोई सुन लेगा तो मजाक उड़ाएगा। घर में चलो ना, नाश्ता करके जाना।
0: नहीं उमा प्लीज, देखो पहली बात तो यह है कि मैं डिलीवरी केस अटेंड करके आई हूँ, अब सब लोग छुआछूत मानेंगे, अंदर नहीं आने देंगे। और दूसरी बात, तुम्हारे पतिदेव के आने के बाद ही आऊंगी, नव दंपति को एक साथ देखना ही अच्छा है।
1: श्योर, जरूर आना, मेरी शादी में तो बहाना बनाकर चली गई थी।
0: अरे अब क्या बहाना बनाना है, जरूर आऊंगी उमा, जरूर आऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ।
1: ओके बाय बाय।

0: बाप रे बाप, बारिश तेज होती जा रही है। डिस्पेंसरी के बंद होने के बाद इसको भी बंद हो जाना चाहिए।
1: क्यों कंपाउंडर साहब, अब तक घर नहीं गया?
0: कैसे जाएं डॉक्टर साहब। आप रोज बरोज रहम धर्म की कमाई ज्यादा हासिल कर लेती हैं, लिहाजा बरसात भी ज्यादा होती है।
1: आप भी खूब है, आपको हर बात में मजाक सूझता है।
2: अरे वो तो कोई लड़की दौड़ी आ रही है।
3: हाँ, अरे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ी है।
1: बारिश में भीगती हुई दौड़ी चली आ रही है, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी हो गई?
3: अरे अरे, ये तो हमारी ग्राम सेविका शकुंतला है।
1: शकुंतला, क्या बात है बताओ।
4: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मुझे बचाइए, मेरा जीवन बर्बाद करके।
3: अरे अरे, ये तो बेहोश हो गई। हाय, इसकी तो साड़ी भी फटी हुई है, लगता है किसी ने इसके साथ ज्यादती की है। अब
1: पहले इस लड़की को अस्पताल के भीतर ले चलो, जल्दी करो।
3: चलो चलो
1: कंपाउंडर, वो बस ले आ जल्दी से।
5: बेटी, इस लड़की को पनाह देने से तुम खामखा झंझट मोल लोगी।
1: मामा जी, मैं इसको सिर्फ पनाह ही नहीं दे रही हूँ, इसे बर्बाद करने वाले को सजा भी दिलाकर छोड़ूंगी।
5: भगवान के लिए चुप रहो, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है।
1: मुझे किसी का डर नहीं है।
5: बेटी, कभी कभी सच्चाई को झूठ के सामने चुप हो जाना पड़ता है।
1: ऐसी बात नहीं है मामा जी, सच्चाई की जबान साफ सुथरी और नेक होती है। वह दूसरी है कि वो देर में खुलती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि झूठ के आगे सच्चाई गूंगी हो गई है।
5: लगता है इसके साथ
1: बड़ी भयावह स्थिति हुई है। ये बेचारी पड़ोस के गांव से लौट रही थी, बीच रास्ते में तीन चार गुंडों ने इसे घेर लिया और उठा कर ले गए।
5: आगे मत कहो, प्राणों में एक आग सी लग जाती है, दिल दहल उठता है।
1: मामा जी, आपने दवा खाई थी, कल से आपका दिल दर्द कर रहा था ना, अब कैसे आप?
5: अब ठीक हूँ बिटिया, मैं काफी सावधानी बरतता हूँ।
1: मामा जी, अन्याय को आखिर मात खानी ही पड़ेगी।
5: भारती, तुम लड़की हो फिर अकेली भी हो।
1: मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा साथ देने वाला बड़ा शक्तिशाली है, वो है भगवान, और फिर मेरी चेतना भी मेरे साथ है, आप भी तो हैं। इतना ही नहीं मामा जी, गांव के गरीब लोग भी मेरे साथ हैं।
5: सुनने में तो सब अच्छा है, पर हकीकत यह है कि पूंजी और प्रभाव के धनी लोगों के सामने हम तिनके के बराबर हैं। मैं कहता हूँ ये तुम्हारे बस की बात नहीं है।
1: क्यों नहीं है? डॉक्टर की हैसियत से मैं गवाह हूँ, मैंने उसका इलाज किया है।
5: ये न भूलो कि तुम मर्द नहीं हो।
1: काश मैं मर्द होती।
6: डॉक्टर अम्मा!
1: कोई दरवाजा खटखटा रहा है,
6: डॉक्टर अम्मा!
1: देखती हूँ कौन है।
5: रात के 10 बज चुके हैं।
6: डॉक्टर अम्मा!
1: अरे नानी, तुम क्या बात है, इतनी बेचैन क्यों हो?

0: मुझे माफ कर दीजिए, अभी मेरे साथ चलिए, मेरी छोटी बहन की जान बचाइए डॉक्टर अम्मा, आपको बहुत पुण्य होगा, दया कीजिए।
1: तुम्हारी बहन को अचानक क्या हो गया है?
0: आपके पैरों पड़ती हूँ, बाहर बैलगाड़ी तैयार खड़ी है, मेरी बहन प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, आप चलकर नहीं देखेंगे तो वो बचेगी नहीं, बहुत नाजुक हालत है, जल्दी चलिए माई जी।
1: लगता है बहुत सीरियस केस है। मामा जी मैं भी आती हूँ, एक सीरियस केस है।
2: जानम्मा अल्लाह बख्श को भी साथ लेती जाना।
0: उनकी जरूरत नहीं है, मैं खुद नर्स हूँ, मैं संभाल लूंगी, आइए डॉक्टर अम्मा।
1: जल्दी चलो, आइए चलो।

0: नागमणि, ये हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने तो कहा था कि घर नजदीकी है।
1: चुप रहो, बकझक करने की कोई जरूरत नहीं है।
0: क्या कहा?
1: मुझे डराती हो?
0: तब तो तुमने झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया है। नागमणि, ऐसा क्यों किया तुमने?
1: जल्दी ही सब मालूम हो जाएगा।
0: छी, हंसती है, मक्का कहीं की। ए, गाड़ी रोको। अरे रोकता है कि नहीं रोकता?
2: नागमणि, धमकाती है, जानती है हम कौन है?
1: बेचारी डर जाएगी। आप इस तरह मत हंसिए, बता दीजिए कौन है।
2: अरे हम हैं, हम इस गांव के बड़े रईस कुमार सानी।
0: अच्छा, वो बहुत बड़े रईस दादे आप ही हैं?
2: क्या कहा?
0: यही कि गांव की बेसहारा लड़कियों को बर्बाद करने वाले सूरमा आप ही हैं। एक को पकड़ने के लिए आपने गुंडों को भेजा, अब मुझे पकड़ने इस औरत जात को भेजा है। शर्म नहीं आई आपको?
2: डॉक्टर ने ज्यादा उछल कूद मत कर, हम गांव के बाहर आ गए हैं। ये देख, सामने नाला बह रहा है।
0: ये धमकी सब किस लिए दे रहे हैं आप?
2: तू पुलिस केस कराने वाली है ना, उससे बाज आ जा बस।
0: शकुंतला पर किए जुल्म की बात कर रहे हैं आप?
2: हाँ वही। और अगर तू बाज नहीं आएगी ना, तो समझ ले उस लड़की जैसी हालत तेरी भी होगी।
0: इससे पहले ही मेरे हाथ करारा जवाब दे देंगे।
2: अरे इस नाले में बहा दी जाएगी।
0: नाले के पास ही अगर मेरे रक्षक छिपे हुए हो तो? अरे कोई है?
3: अरे भागिए भागिए मालिक, ऐसा ना हो कहीं मेरे के तेरे।
0: कायर कहेंगे, छूट मूट का शोर मचाते ही भाग गए, अपनी गाड़ी तक ले जाने का होश नहीं रहा।
4: अभी आपने सुना नाटक कंटीला रास्ता का पहला भाग। ये नित्यामूर्ति के मूल तमिल नाटक शोध नैत्य पाते का हिंदी रूपांतर था। रूपांतरकार ए शौर्य राजन और इसके निर्देशक थे वीपी दीक्षित बटुक। यह हमारे केंद्रीय नाट्य एकांश दिल्ली की प्रस्तुति थी। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुनेंगे कल इसी कार्यक्रम में दिन में 3:30 बजे। अब नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
5: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
6: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
5: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
8: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
7: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।

पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: lights, sound, camera, action.
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं

0: Guns, lights, sound, camera, action.
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं, फिल्मी दुनिया के जाने माने गीतकार। जी हाँ, आप हैं सुधाकर शर्मा, और जिन्होंने 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 5,000 गाने अब तक लिखे हैं, और भी न जाने कितना काम इस फिल्मी दुनिया में उन्होंने किया है। तो आज उन्हीं से जानेंगे उनकी दुनिया का सफर। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
3: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
2: तो सबसे पहले हम तो यही जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं।
3: मंदाकिनी जी, हुआ ये कि हर आदमी अपने बचपन से प्रेरित होता है किसी भी काम के लिए। तो मैं गांव में रहता था, पलवल के पास मेरा गांव है। वहां हमारे एक चाचा थे, वो हमेशा ट्रांजिस्टर बगल में लटका के रहते थे। बिना ट्रांजिस्टर उनको आप देख ही नहीं सकते कभी। तो वहां गाने बजते थे, जब आता था अनाउंसमेंट कि आप शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गीत सुनिए, तो मुझे वो साउंड जो है ना, ऐसा लगता था कि काश मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊं कि मेरा भी ऐसे नाम आए कि अब आप शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ गीत सुनिए। तो ये प्रेरणा स्रोत बना मेरा आपका ये माध्यम, और मैं वहां से सफर तय करने के मतलब तैयारी में मुंबई तक आया।
2: ये 1973 में, 1973
3: में
2: हरियाणा से मुंबई आ गए?
3: नहीं, मैं हरियाणा से दिल्ली में था।
2: हाँ।
3: दिल्ली से मुंबई आया।
2: अच्छा।
3: मेरे पिताजी दिल्ली में टीचर थे, तो मैं दिल्ली में ही रहता था, और वहां से मैं यहाँ आया। और यहाँ आने की भी एक अलग कहानी है। मैं कोई सोच समझ के नहीं आया, मतलब मुझे आना था ऐसा मेरे मन में था, लेकिन कब जाऊंगा और कैसे जाऊंगा इसकी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उतने पैसे मेरे पास नहीं थे और आने का कोई सोर्स भी नहीं था। मेरे एक दोस्त हैं विजय त्यागी
2: जी,
3: वो धर्म जी के फैन थे। तो उसने बोला यार मुझे तो धर्मेंद्र बनना है, तो उसने बॉडी वॉडी भी अच्छी बनाई थी। उसका आने का प्रोग्राम बना और मेरे को बोले कि चल तू भी चल, और मैं उनके साथ आ गया, और यहाँ बम्बई में बम्बई का होके रह गया। मैं पहली बार जब यहाँ आया देहरादून ट्रेन से उतरा, देहरादून एक्सप्रेस दादर, तो मेरे साथ मतलब पहली घटना ऐसी हुई कि हम तीन थे, एक जो तीसरा था वो हमारा गाइड था।
2: अच्छा, तीन दोस्त आए थे?
3: तीन दोस्त आए थे, मेरे दोस्त का वो दोस्त था।
2: अच्छा।
3: तो उसने बोला कि मैं जहाँ रहता हूँ वो बहुत बड़ी जगह है, और उस जगह पे ये नहीं जा सकता।
2: कौन? आप?
3: सुधाकर।
2: अच्छा।
3: बोला ये तो शक्ल से चोर लगता है, तो वहाँ कुछ हो गया तो।
2: अरे।
3: तो मैं दादर स्टेशन प्लेटफार्म पे रात को सोया, ये लोग दोनों चले गए।
2: अच्छा।
3: मैंने कहा भाई आप तो जाइए, फिर मैं रुकता हूँ। तो ये एक कार्यक्रम इस तरीके से बम्बई में मेरी पहली रात ओपनिंग हुई। दादर एक नंबर प्लेटफार्म के बेंच पे सोया, कभी कभी उस जगह पे जाके मैं खड़ा होता हूँ अभी।
2: उस पल को महसूस करते हो जब आपको ऐसा किसी ने कहा था?
3: याद आता है वो
2: जी। तो जब आपने कहा कि आप दिल्ली से यहाँ आए, तो क्या आप मुंबई गीतकार बनने ही आए थे या कुछ और विचार लेकर भी आए?
3: नहीं, मैं सिर्फ गीतकार बनने ही आया था, और मैं उस वक्त जो है ना बहुत बड़ा फैन था शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी साहब का और शंकर जयकिशन का।
2: अच्छा।
3: लेकिन मैं यहाँ जब आया तो मैं इन लोगों से कैसे मिलूं, क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। और कुछ दिनों बाद मेरे वो दोनों दोस्त भी चले गए, मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं यहीं कुछ ना कुछ करूंगा। इससे पहले रूटीन ये चल रहा था कि ये लोग घूमते थे, मेरे को ले लेते थे दिन में, और रात को वहां खाना खिला के छोड़ देते।

0: पूरा खर्चा वही लोग करते थे। लेकिन फिर जब ये जाने लगे तो मैं रुक गया और मैंने सोचा कि अभी मुझे कुछ करना है। ये 4-5 महीने के बाद मैंने एक जगह नौकरी की ग्रैंड रोड पे, और वहां उस नौकरी के मेरा ये था कि कुछ 4-5 बाल्टी पानी नीचे से सेकंड फ्लोर पे उनको पहुंचानी होती थी भर के, और उसके बदले में वो टेरिस पे मुझे सोने की जगह देते थे।
1: कोई पैसा नहीं देते थे?
0: नहीं, पैसा नहीं देते थे। फिर कुछ दिनों बाद वो कुछ और, भाई ये चाय ले आओ, फलाना डालो, ये लेटर डालो, और कुछ पैसे भी देने लगे। तो वहां काफी मेरा कुछ 1-1.5 साल लगा इस तरह से, मुझे फिल्म लाइन का कोई रास्ता ही नहीं मिला।
1: अच्छा, मतलब 1-1.5 साल लगभग आप यही काम करते
0: थे? यही काम करते,
1: ये संघर्ष जो
0: करता। अब इसको आप संघर्ष कहें या कुछ भी कहें, उस मंजिल तक ही नहीं मैं मुड़ा जहाँ के लिए आया था।
1: हाँ।
0: अब वो ही रोज उसमें चलता रहा, तो वहां पे मुझे 2-2.5 रुपए रोज के मिलते थे। तो वहां पे एक मुस्लिम होटल था जहाँ बड़ी रोटी मिलती थी, दाल फ्री होती थी।
1: अच्छा।
0: तो एक टाइम हम आराम से खा लेते थे, कोई टेंशन
1: इतना
0: नहीं था।
1: पैसा मिल जाता
0: इतना
1: था?
0: इतना पैसा मिल जाता था।
1: हुँ.
0: तो वहां उस कंपनी में एक अकाउंटेंट थे, उन्होंने एक दिन कहा कि यार तुम क्या बनने आए हो? मैंने कहा यार बनने तो बहुत कुछ आया लेकिन कुछ होगा ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ तो काम ही कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक जगह ले जाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। और मैं उनके साथ गया और वो मुझे शंकर जी के म्यूजिक रूम में लेके गए।
1: अच्छा।
0: और तब तक जय भाई तो नहीं रहे थे, शंकर जी थे। और वहां जब मेरा उनसे परिचय हुआ, मैं बता नहीं सकता उस पल की खुशी कि शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, वही शंकर जयकिशन का रूम, वही शंकर जी, वही उनके स्टूडियो। तो मेरे लिए तो ऐसा था मैं जन्नत में आ गया।
1: जी, सपने देखने जैसा।
0: सपने देखने जैसा। और यहां से इस पल से मेरे सपने साकार होने शुरू हुए फिल्म लाइन के।
1: तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक गीत सुन लेते हैं पहले।
0: मैं मेरे उस्ताद जी का एक गाना सुनना चाहता हूँ।
1: बताइए।
0: और वो गाना है बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूबा।

0: माता पिता से बात होती रही क्या? उन्होंने पूछा? और वो जो दोस्त आपको छोड़कर फिर चले गए, आप कह रहे हैं मुंबई, क्या उनसे भी कभी सामना हुआ?
1: हाँ वो हुआ, सब कुछ हुआ। वो भी मेरी खैर खबर लेते रहते थे।
0: हाँ।
1: और माता पिता तो लेंगे ही लेंगे, तो मैंने उनको एक अपने माता पिता को एक थोड़ा सा झूठ बोला था कि मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, नौकरी मिल गई है, मैं यहीं रहूंगा और मुझे यहीं कुछ करना है। और उनको ये अंदेशा तो था कि फिल्म लाइन में कुछ करेगा। मेरे पिताजी ने एक ही बात करी कि भाई अगर तुम कुछ ऐसा करना चाहते हो कि जो बम्बई में ही हो सकता है तो ठीक है आप करो, और जो भी आप कमा रहे हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप परेशान मत होना। जबकि कमाई वमाई कुछ थी नहीं, लेकिन एक एड्रेस था मेरे पास कि वहां से हम लोग बात कर सकते थे।
0: कुछ आपको उम्मीद भी बंधी कि मैं मुझे कुछ करना है तो करना ही है।
1: जी जी जी।
0: तो जैसा कि आपने कहा कि वो आपको शंकर जयकिशन के स्टूडियो में ले गए, जहाँ शंकर जी मिले, उसके बाद फिर क्या आपको पहला गीत मिल गया या
1: नहीं,
0: आप
1: नहीं,
0: शंकर
1: नहीं।
0: जी के सानिध्य में रहे? कैसे?
1: बस
0: क्या?
1: उनके सानिध्य में मैं उनके रूम में काम करता रहा, झाड़ू कटका पोछा जो भी मेरे को मिला मैं काम करता रहा।
0: अच्छा।
1: तो मुझे काम तो नहीं मिला, लेकिन क्या है कि वो शंकर जी के यहाँ एक बड़ा अच्छा सिस्टम था कि वहां पे सब खाने पीने की बड़ी मौज थी। आपको जो खाना है कैंटीन में खाओ, खाली सिग्नेचर कर दो, तो कोई परेशानी नहीं थी और सोने की कोई परेशानी नहीं थी। तो मैं जो है वहां पे काफी समय तक रहा, और एक दिन शंकर जी ने मुझसे पूछा कि भाई यहाँ हर आदमी एक सपना लेके आता है, तो तेरा क्या सपना है? तो मैंने कहा मैं गीतकार बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है सुनाओ कुछ। अब वो इतनी बड़ी शख्सियत, उनके सामने मेरे से कुछ सुनाया ना गया। मैं बोला क्या सुनाऊं, एक होता है ना अभी अचानक उन्होंने बोल दिया।
0: तो क्या तब तक आपने कुछ गीत लिख लिए थे, कुछ कविताएं?
1: लगभग 250-250 गीत मैंने लिखे थे।
0: अच्छा।
1: गीत तो रोज लिखता था, लेकिन अब शंकर जी जैसी पर्सनैलिटी सामने हो तो सिट्टी भिट्टी गुम सुनाए क्या।
0: बिल्कुल।
1: वो भी समझ गए और उन्होंने हसरत जयपुरी साहब से मुझे पहली बार मिलाया।
0: अच्छा।
1: और कहा कि हसरत मियां ये लड़का सोचता बहुत अच्छा है, इसको लिखना सिखाओ।
0: अच्छा।
1: ये उनके वर्ड थे।
0: तो ये किस वर्ष की बात होगी लगभग?
1: ये तो मतलब मेरा होते होते लगभग 78 की बात है। मतलब काफी समय हो गया। इन बिटवीन मैं यहाँ आता था बम्बई, सबके घर देखता था, सब चारों तरफ ये बंगला दिलीप कुमार का है, ये फलाने का, ये सब देखते थे। उन बंगलों को देख देख के ही खुशी होती थी, उनसे मिल तो नहीं पाते थे लेकिन बस घर देख लेते थे तो उसमें खुश हो जाते,
0: ऊर्जा आ जाती थी।
1: हाँ,
0: मोटिवेशन
1: लगता
0: मिलता था,
1: मोटिवेशन होता
0: कि कभी
1: था
0: हमारा भी ऐसा
1: कि
0: घर
1: कभी
0: होगा।
1: हमारा भी होगा। दिलीप साहब के घर के सामने ना, जैसे आज अमित जी के घर के सामने भीड़ लगती है, उन दिनों दिलीप साहब के घर के सामने भीड़ लगती थी। कुछ लोग आते थे हमेशा, वहां का एक अलग ही चलन था। वहां एक चाय वाला आता था, सबको चाय पिला के चला जाता था और पैसे नहीं लेता था।
0: अच्छा।
1: अब वो पैसे
0: कौन
1: क्यों
0: देता
1: कौन
0: था?
1: देता था वो, या वो क्यों नहीं लेता था, ये मुझे नहीं पता।
0: मतलब दीवानगी होगी दिलीप कुमार साहब के प्रति, ना? इस
1: हो
0: दीवानगी
1: सकता
0: में भी लोग कितना काम कर जाते
1: करते
0: हैं।
1: हैं। तो दिलीप साहब आते थे बालकोनी में, हाथ हिलाते थे, बस इतना ही था। लेकिन मैं अक्सर जो है ना, हम लोग वो चाय पीने के लालच में ज्यादा जाते थे क्योंकि
0: जी
1: भूख प्यास भी होती है ना आदमी को।
0: जी जी
1: तो वो दौर पाली हिल का मुझे याद है अभी तक, कैसे वहां पे जाते थे।
0: जी।
1: जब हसरत साहब ने मुझे कहा कि मैं कैलाश बिल्डिंग में रहता हूँ खार, आप वहां आइए, तो मैंने वहां उनके पास जाना शुरू किया। और पहले पहले तो क्या ऐसी बातें होती रही उनसे बातचीत में, वो मुझसे बात करते रहे, पूछते रहे सब कुछ। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हजरत साहब एक फरिश्ता बन के मेरी जिंदगी में आए।
0: जी।
1: उन्होंने वाकई में मुझे लिखना सिखाया। मुझे लगा कि जो मैंने लिखा वो सब बकवास है, और अभी भी मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाता हूँ जितना अच्छा हसरत साहब लिखते थे।
0: जी, खैर ये तो
1: कहीं ना कहीं मुझे एक रहता है, और शायद यही मलाल मुझे जिंदा रखे हुए है, शायद कभी कुछ ऐसा लिख पाऊं
0: जो हसरत साहब जैसा होगा,
1: उनके जैसा हो सकता है
0: जी,
1: लेकिन उनसे बढ़िया नहीं हो सकता।
0: ये एक बहुत अच्छी

0: ख्वाहिश होती है किसी कलाकार की कि मैं उन जैसा बन जाऊं, क्योंकि आपने उनको अपना उस्ताद माना हजरत
1: जी,
0: साहब
1: जी,
0: को।
1: जी, जी,
0: बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कड़वी सच्चाइयों को सुनकर है ना सुधाकर जी। तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक गीत सुन लेते हैं पहले।
1: जी गीत मैं आपको ऐसा सुनाना चाहता हूं कि जिस गीत की बहुत अहमियत है मेरी जिंदगी में, और वो गीत है परदेसी बाबू का।
0: जी
1: क्या है।

0: सुधाकर जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना। आप ही का लिखा वही गीत था?
1: जी, मेरा ही लिखा हुआ।
0: अब अभी मैं ये आपसे तो नहीं पूछना चाह रही हूँ कि ये गीत आपने कैसे लिखा, लेकिन
1: नहीं नहीं आप जरूर पूछिए। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ ये गीत मुझे मिला कैसे।
0: अच्छा, ये बताना चाहते हैं?
1: जी जी, बताइए। क्योंकि ये मेरे कैरियर का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा गीत था। इससे पहले लगभग मेरे 240-245 गाने रिकॉर्ड हुए जो बड़े बड़े सिंगरों ने गाए और बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ किए, लेकिन कोई गाना मेरा बाहर नहीं आया।
0: अरे, इतने सारे गाने करने के बाद भी?
1: हाँ, और नहीं आया। तो मुझे ये मिला ऐसे कि मुझे आनंदराज आनंद जी मेरे मित्र थे और उनके साथ मेरा काफी आना जाना था, तो मैं हमेशा उनको बोलता था यार मेरे से भी कुछ लिखवा लो। ये गीत मिलने से पहले मैं स्टैब्लिश डायरेक्टर हो चुका था
0: फिल्मों की
1: लेकिन वो चली नहीं, मैं भी चला नहीं।
0: हाँ।
1: तो लेकिन ये गीत जब उन्होंने मुझे

0: ये बुलाया तो मेरे पास उस वक्त टू व्हीलर था और बारिश हो रही थी, और उस बारिश में ये था कि 50 रुपए मैंने अपनी मिसेज को कहा कि पड़ोस से कहीं से लाओ, वो लेके आई, पेट्रोल डाला और मैं सहारा स्टूडियो आया। और सहारा स्टूडियो में आया तो वहां पे मुझे ये गीत लिखने के लिए मिला। उनके डायरेक्टर, उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई और मैंने ये गीत लिखा, और ये गीत लिखा, और ये गीत मुझे लगा कि जैसे और गीत नहीं आए ये भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को कुछ वो नहीं था। तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिले इस गीत के, पहली बार इतने पैसे मिले
1: तो
0: मुझे।
1: हम ये माने कि जो पहला गीत सामने आया दुनिया के वो ये था,
0: नहीं,
1: वो कोई
0: वो
1: और
0: कोई और था।
1: था। जी, बड़ा उलझा हुआ मामला है फिर
0: जी जी जी
1: तो।
0: जी
1: तो बात चल रही थी कि आप हसरत साहब से मिले, आप
0: जी
1: शैलेंद्र जी से भी मिले, शंकर जयकिशन से मिले, तो हमारे मन में ये बात आ रही है कि उनके साथ, क्योंकि आप 1973 में आ गए थे और आपने कहा कि लगभग 1978 के आसपास ये सब मुलाकातें शुरू हो गई थी,
0: जी जी
1: तो ये सफर कैसा रहा, किस तरह से आपने फिर गीत लिखना शुरू किया, या इन लोगों के साथ आपने वक्त को कैसे बिताया? इतना आसान
0: देखिए,
1: तो नहीं होता इतने बड़े
0: बहुत
1: लोगों के साथ।
0: बहुत मुश्किल होता है। इस सफर में मेरा अफसोस सिर्फ इतना ही रहा कि मैं शैलेंद्र जी से मिल नहीं पाया, वो उससे पहले उन डेथ हो गई थी उनकी। लेकिन मैं चूंकि उनका फैन था, हसरत साहब में ही मुझे शैलेंद्र जी भी मिल गए और हसरत जयपुरी भी मिल
1: मिल
0: गए,
1: गए।
0: वो मुझे मिल गए। और उस उन्हीं दौरान मेरी जो मुलाकात हुई वो पंडित नरेंद्र शर्मा जी से हुई, और पंडित नरेंद्र शर्मा जी और शैलेंद्र जी एक ही गली के राइटर थे। वो मतलब उनकी थॉट, उनका सोचना, तो उनसे मेरी काफी मतलब मुलाकातें रही। और हसरत साहब के यहाँ जब मैं जाता था तो हम गीतों को जो डिस्कस करते थे, उनके सिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि वो कभी भी मेरे लिखे हुए गीत को रिजेक्ट नहीं करते थे। वो कहते थे ये लाइन तुमने लिखी है ना, इसमें तुम क्या कहना चाहते हो, तो मैं बोलता था मैं ये कहना, तो उसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे कर लो, इस लाइन को यहां से निकाल दो, इसकी जगह ये ले आओ, मतलब मेरे ही गीत को वो सुधारते थे। वो कभी उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि ये क्या लिखा है, तो ऐसा मतलब उन्होंने कभी नहीं किया, वो हमेशा मुझे सिखाते थे, मैं करता था। और ये सफर एक ऐसा था कि मुझे एक दिन, मैं रात को पाली हिल पे घूम रहा था, और हसरत साहब के यहाँ आने के बाद जो है ना, मेरे को ये था कि सोने का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब आना जाना मेरा लगा हुआ था, लेकिन ये मैंने एक झोपड़ा ले लिया था खेरवाड़ी में, और मेरी तब तक शादी भी हो गई थी, तो हम लोग मियाँ बीबी रहते ही थे वहां पे। तो वहां मेरी मुलाकात बहुत ही मशहूर कॉमेडियन मारुति साहब से हुई। तो मारुति साहब जो ना, वो रात का समय था और अपने बरांडे में टहल रहे थे, तो मैंने उनको पहली बार टहलते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे बुला लिया और मैंने उनसे बातचीत की, और उन्होंने भी वही क्वेश्चन पूछा, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, ये सब। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कोई गीत सुनाओ, तो मैंने उनको सुना दिया, तो बोले कि तुम कल आओ। तो मैं नेक्स्ट डे पहुंचा, तो उन्होंने कहा बेटा ये गीत वीत तो ठीक है, तुम टेक्निकल कुछ काम करो। मैंने कहा जी वो क्या होता है, बोले कल आओ हम तुमको बताएंगे। और वो मतलब मेरे को अपने साथ उन्होंने रखना शुरू कर दिया, और उनके साथ रहने से क्या है, मेरे को थोड़ा सा इंडस्ट्री का देखने को मौका मिला, और उनके ही द्वारा मुझे किशोर कुमार साहब मिले।
1: अरे वाह।
0: मारुति साहब मुझे वहां लेके गए और वहां उन्होंने मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया जी, और मैं किशोरदा के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर लग गया।
1: क्या बात है, तब तो किशोरदा तो गाने गा ही रहे थे, बहुत
0: वो
1: शानदार और
0: तो
1: लेजेंड से थे
0: उनका
1: वो
0: तो
1: तो।
0: क्या कहना
1: बहुत सुंदर। आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी।
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: तो मंदाग्नि जी, एक गाना जोड़ी नंबर 1 का टाइटल ट्रैक मुझे सुनाइए
1: चलिए सुनते हैं आपकी
0: जी।
1: पसंद का ये गीत।

0: तो मतलब इतना संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद कुछ राहत की सांस आपको तब मिली जब आप किशोरदा से जुड़े?
1: किशोरदा के जुड़ने के बाद मुझे लगा कि अब तो मेरा कुछ न कुछ हो ही जाएगा।
0: हाँ, क्योंकि एक लंबा जुड़ाव रहा था किशोर कुमार के साथ आपका।
1: जी जी।
0: तो उनके साथ काम करने का अनुभव क्या रहा और किस तरह से फिर आपको सफलता मिलनी क्या शुरू हुई इस दौरान?
1: जी जी, मैं किशोरदा के साथ काम करने का मतलब ये हुआ कि मैं उस काम को काम नहीं कहता, एक ऐसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिला मुझे जहाँ सीखना ही सीखना था। वो आपके ऊपर है कि आप क्या सीखना चाहते हो, क्योंकि वो हर विधा में पारंगत थे। लिखना उन्होंने भी सिखाया, उन्होंने डायरेक्शन सिखाई, एडिटिंग सिखाई, उन्होंने कैसे किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए वो सब मैंने वहीं से सीखा।
0: वाला थे किशोर
1: बहुत बहुत और मैं उनको हमेशा साहब बोलता था, आज भी बोलता हूँ। उस घर के बहुत बड़े एहसान है मेरे ऊपर। वहां जाने के बाद ही मुझे लगा कि अब मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा और उसी घर से मुझे पहली डायरेक्शन की पिक्चर भी मिली। वो भी शायद इसी कारण मिली कि मैं उनका असिस्टेंट था तो प्रोड्यूसर ने फेथ किया कि मैं कुछ कर सकता हूँ और पहली फिल्म की डायरेक्शन मुझे वहीं से मिली।
0: जी, तो वो कौन सी फिल्म थी?
1: वो फिल्म थी गोरी।
0: गोरी,
1: और मेरे ये उसी दोस्त ने बनाई थी जो मुझे बंबई लेके आया था।
0: अच्छा।
1: विजय त्यागी। उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए थे तो एक दिन बोले चल यार कोई और नहीं तो मैं फिल्म बनाता हूँ, और मुझे उन्होंने डायरेक्टर लिया। और इसमें किशोरदा ने भी गाना गाया और इस पिक्चर को करने के लिए मैं शंकर जी के पास गया और मैंने उनसे कहा कि शंकर जी मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें म्यूजिक दें। तो उन्होंने कुछ इतना पहचाना नहीं क्योंकि फासला काफी हो चुका था। तो मैंने उनको याद दिलाया कि मैं कौन हूँ। तो बोले अच्छा, जो कल तक हमारे यहाँ नौकरी करता था आज हमको नौकरी पे रखने आया है।
0: अरे।
1: मैंने कहा जी नहीं, मैं कल भी नौकर था आज भी नौकर हूँ, मैं कल भी आपको मालिक समझता था आज भी है, बस ये फिल्म आप करेंगे तो मेरा थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि

0: कितने पैसे लाए हो? अभी हमारी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे ये पूछें कि लोगे कितना, कैसे करोगे, ये सब बातें तो हुई नहीं. उन्होंने पूछ लिया कितने लाए हो, तो हमने उनको कहा कि 21,000 हैं शगुन के, कहीं उनको ऐसा ना लगे कि टोटल इतने ही हैं. तो हम डरे हुए बहुत थे, तो हमने कहा 1 रुपया और रखो इस पे. तो 1 रुपया रखा, उन दिनों कागज का चलता था. उन्होंने 21 छोड़ के 1 रुपया उठा के हमारी पिक्चर का, इसी में पूरी पिक्चर करूंगा.
1: अरे क्या बात है.
0: और उसी में उन्होंने की.
1: ये होते हैं महान संगीतकार, और उन्होंने समझा आपकी परिस्थिति को
0: जी.
1: और बहुत बड़ी बात. तो उसके बाद उस फिल्म में भी आपको कोई गाना था या केवल डायरेक्शन ही?
0: नहीं
1: था?
0: मेरे गाने थे उसमें. मेरा पहला गाना उस फिल्म में मन्ना डे ने गाया था.
1: अच्छा.
0: हाँ, मन्ना डे साहब ने वो गाना गाया था. और गाना था दुल्हन सेज है फूलों की, दहेज गमों के खार, दूल्हे का दहेज है जीवन में दुल्हन का सच्चा प्यार.
1: क्या बात है. यहाँ जब बात चल रही है गीत की, तो कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
0: देखिए, आप मेरा एक गीत सुना दीजिए, फिर उस गीत की कहानी मैं आपको बताऊंगा.
1: अच्छा, कौन सा?
0: मेरा वो गीत जिसने मुझे सुधाकर शर्मा बनाया. और पहला गाना जो रिलीज हुआ वो था ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की.
1: क्या बात है. ये गीत तो हर एक के दिलो दिमाग में है. और
0: जी जी.
1: अगर कहीं शादी ब्याह के या किसी फंक्शन में हम जाते हैं तो इस गीत पर तो बहुत सारे डांस क्रिएट किए जाते हैं.
0: इस गीत ने मेरी जिंदगी बना दी.
1: अच्छा?
0: मतलब ये गीत पहला गीत था जो मेरा रिलीज हुआ.
1: हाँ.
0: और उसके बाद जो है ना, लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया. एक्चुअल में हुआ ये कि हिमेश रेशमिया साहब जो आज के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इनके पिताजी मेरे दोस्त थे, विपिन भाई रेशमिया.
1: अच्छा.
0: और एक फिल्म में वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, मैं डायरेक्टर था. तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार अभी हिमेश जी सीरियल बना रहे हैं तो आप इनके साथ लग जाइए. मेरे पास उन दिनों कुछ काम वाम था नहीं, क्योंकि उससे पहले मैं डायरेक्टर ये वो सब बन के सब फ्लॉप हो चुका था. एकदम बेकार. मतलब उस लायक था कि अब मैं काम मांगने भी कहां जाऊं, क्योंकि लोग, मैं डायरेक्टर बन गया, 2-3 पिक्चरें मैंने कर ली लेकिन चला नहीं. तो अब शर्मिंदगी भी थी कि मैं काम कहां जाऊं. तो मैं हिमेश जी के साथ जो ना, उनके जितने सीरियल थे उनके सबके टाइटल मैंने ही लिखे.
1: अच्छा.
0: हाँ, ओके. लगभग उन्होंने 40-45 कुछ ऐसे सीरियल उनके थे, लेकिन सबके मैं गाने मैंने लिखे. और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे ढंग से अपने साथ ज्वाइंट किया. हमारा उम्र में बहुत फर्क था
1: जी.
0: तो एक दिन हिमेश जी बोले कि सर वो क्या है. मैंने कहा भाई तुम मुझे सर बोलो, मैं तुमको सर बोलूं, बस इसी में कहानी खत्म हो जाएगी. तो ये सलमान भाई ने ये गाना हिमेश जी को दिया लिखने के लिए. प्यार किया तो डरना क्या का टाइटल सॉन्ग था.
1: जी, जी.
0: और हिमेश जी ने ये गाना मुझे
1: दिया.
0: हाँ. और उन्होंने कहा कि सर ये पिक्चर अगर हमको मिली है, अगर ये गाना आप लिखोगे तो गाना सुपर डुपर हिट होगा और ऐसा होगा वैसा होगा.
1: तो हिमेश जी की ये पहली फिल्म थी?
0: पहली फिल्म थी. उनकी ये पहली फिल्म थी. तो मैंने कहा भाई लिख देंगे, लेकिन एक सवाल है हिमेश इसमें कि प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि जितनी उन्होंने अच्छी लिखी होंगी वो तो सब आ गई, तो हम लोग फंस जाएंगे यार. बोले नहीं नहीं सर, लेकिन वो तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि टाइटल ही वो है. तो ऐसा, मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं. तो उस गाने को हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली.
1: ठीक है.
0: और कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे.
1: हाँ.
0: इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे. सेकंड लाइन आप लिखो ही मत, बस इसको हुक लाइन रखेंगे.
1: अच्छा.
0: तो फिर मैंने लिखा तेरे प्यार में डूब गए हम खुद को ही, वो जैसा.
1: हाँ.
0: वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम
1: तेरे
0: की.
1: नाम की.
0: और वो ऐसे नाम की चुनरिया ओढ़ी के उसके बाद फिर ये गाना गुलशन जी ने सुना. तो उन्होंने कहा कि एक गाना इस टीम का और ले लो. फिर हमको वो एक गाना मिला और वो गाना था तुम पे हमें अटके आ रहा दिल भी मारे झटके.
1: क्योंकि तुम वो हटके.
0: हटके. तो ये दो गाने मेरे पहले रिलीज हुए और बहुत मजा आया. मैं और हिमेश बहुत नर्वस थे कि पता नहीं गानों का क्या होगा. तो लिबर्टी में हम लोग पिक्चर देखने गए थे. तो हम लोग पिक्चर में इतना इंटरेस्ट नहीं था, हमको इंटरेस्ट था कि अपना गाना कब शुरू होता है. और जैसे ही अपना गाना शुरू हुआ और लोगों ने, मैंने पैसे बरसते हुए पहली बार देखे.
1: अच्छा.
0: अपने गाने पे.
1: क्या बात है.
0: दोनों बहुत खुश हुए और हमें लगा कि अब हमारी लाइफ बन गई. और वाकई में उस गाने ने हमारी लाइफ बन गई.

0: वैसे तो इस फिल्म के संगीतकार साजिद वाजिद साहब थे,
1: इसमें जतिन ललित जी भी थे, साजिद वाजिद भी थे और हिमेश रेशमिया भी थे, दो गाने हिमेश जी
0: और गीतकार भी, अन्य गीतकार भी थे
1: इसमें, समीर साहब भी थे, एक और गीतकार थे और
0: एक आपका
1: मैं भी था। और मुझे लगा कि इतने सब बड़े बड़ों में देखो क्या होगा, लेकिन
0: ये गाना तो मतलब आज भी सबकी जुबान पर है और सुनते ही एक अलग किस्म की थ्रिलिंग हो जाती है। इतना खूबसूरत तरीके से आपने लिखा है और हिमेश जी ने उसको संगीत में
1: बहुत सुंदर है।
0: इसमें पिक्चराइजेशन भी बहुत सुंदर है।
1: सबसे बड़ा क्रेडिट इसमें मैं हिमेश जी को ही दूंगा, क्योंकि उन्होंने वो जो प्यार किया तो डरना क्या की ट्यून बना के जो मुझे बचाया सेकेंड लाइन लिखने से, ये बस ऊपर वाले ने उनके दिमाग में डाली, बहुत बारीक काम किया। और हिमेश जी जितना भी काम करते हैं वो बहुत बारीकी में करते हैं और बहुत धैर्य से करते हैं।
0: मुझे एक बात बताइए सुधाकर जी, आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी, आपने कहा कि इस गीत में मैंने एक पैंतरा डाला था, मैंने हिमेश जी से कहा था कि इसमें एक पैंतरेबाजी करनी पड़ेगी,
1: जी जी।
0: तो ये पैंतरा क्या था और किस तरह से आपने इसको निभाया, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे।
1: पैंतरा क्या है कि एक्चुअल में हसरत साहब बोलते थे कि जब कभी ऐसी जगह पे फंस जाओ तो उसमें पैंतरेबाजी से काम लेना चाहिए। वो पैंतरा क्या होता है कि मतलब अब जैसे कि प्यार किया तो डरना क्या कि सेकंड लाइन मैंने नहीं लिखी, तो पैंतरा ये था कि गाने को ऐसी जगह से शुरू करो कि लोगों को ये पता ही नहीं लगे कि कहना क्या चाहते हैं। अब हम कह रहे हैं तेरे प्यार में डूब गए हैं, हम खुद को ही भूल गए हैं, दुनिया चाहे जो, यहां से शुरू हो रहे तो उनको क्या मालूम ये क्या कहना।

0: वाले हैं, और ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, जब प्यार किया तो डरना क्या, हिमेश भाई ने इसकी ट्यून बनाई। और जब प्यार किया तो डरना क्या, ओढ़ली डरना क्या के बाद लोग खटके, तो हमने दूसरा ही रंग दे दिया, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, ये ओढ़ली पैंतरा था।
1: बहुत सुंदर, मतलब एक बहुत बारीक काम था ये, जिसे हरि को समझना आसान नहीं था। तो जब ये गीत आपने रिकॉर्ड किया, आपने अलका याग्निक और कुमार सानू को इस गीत में गवाया, तो क्या कोई दिक्कतें आपको पेश आई, और किस तरह से गाना, क्योंकि गाना मिल तो गया लेकिन रिकॉर्ड किस स्थिति में हुआ उसकी भी कहानी होती है।
0: हाँ, ये दिक्कत तो इसमें बहुत बड़ी आई, और दिक्कत सबसे बड़ी ये आई कि हिमेश जी ये चाहते थे कि ये गाना अलका याग्निक और कुमार सानू गाएं, तो चूंकि उनका ये पहला गाना था और उनका ये था कि अगर ये दोनों गाएंगे तो सुपर हिट होगा, तो दादा को लाने में मैंने कहा ठीक है मैं लेके आता हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता था, हम लोग काम कर रहे थे, तो मैं गया तो दादा को तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, मैंने दादा को बोला दादा एक फिल्म मिली है और उसमें आपको ये गाना गाना है, तो दादा बड़ा वाकई में वो टाइगर ही है, वो जो है बस वही है
1: जी,
0: वो कभी कुछ बनावटी बातें नहीं करते हैं, उसमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये कुछ नाराज हैं, वो नाराज वाराज भी कुछ नहीं होते, उनको खुद ही नहीं मालूम कि वो क्या उनको बोलना चाहिए और क्या बोल गए। बड़े भोले और बड़े डैशिंग आदमी है, तो मेरे को बोले हाँ ठीक है गा दूंगा। कौन है म्यूजिक डायरेक्टर? तो मैंने कहा आपने एक दो गाने सीरियल में गाए हैं उसके, हिमेश भाई का म्यूजिक है। हाँ अच्छा वो करता है, वो करूंगा। प्रॉब्लम आई अलका याग्निक की।
1: अच्छा,
0: उनका अप्रोच नहीं हो पा रहा था। मैं जब भी उनकी बिल्डिंग पे जाता था तो वो ऊपर फोन करके पूछते थे तो वहां से मना हो जाता था, कई कारण रहे होंगे जो भी, तो मैं बड़ा परेशान हुआ, तो मैंने कहा हिमेश भाई बाकी तो सब हो रहा है मगर उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो वो मुलाकात यूं हुई कि मैंने सेम बिल्डिंग में कविता कृष्णमूर्ति रहती थी, तो मैं नेक्स्ट डे गया, मैंने कहा मुझे कविता जी के घर जाना है, तो उन्होंने कविता जी के घर फोन लगाया और उन्होंने कहा भेज दो, और मैं कविता जी के घर नहीं जाके अलका जी के घर चला गया।
1: अरे यहाँ पर आपने भी पैतरा खेला।
0: पैतरा हो गया।
1: जी,
0: और फिर अलका जी से मेरी बात हुई, अलका जी को मैंने कहा कि ऐसे ऐसे गाना आपको गाना है, मुझे जानती थी, तो उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, मैंने उन हिमेश जी का परिचय दिया, ये सब हुआ, तो बोले कि ठीक है लेकिन अभी तो क्या है मैं थोड़ी बिजी हूं ये वो, मैंने कहा गाना आपको गाना है और ये गाना कल ही गाना पड़ेगा आपको, वरना ये पिक्चर हमको नहीं मिलेगी और बहुत दिनों से मेरे पास काम वाम नहीं है, तो अभी मिला है, तो बोले नहीं कल तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, मैं चुप हो गया, बोले कल नदीम श्रवण की रिकॉर्डिंग है, मैंने कहा ठीक है, तो मैं क्या गया वहां से निकला, और मैं निकलने से पहले वो गाना उनको कैसेट में लेके गया था, उनको सुनाया, गाना बहुत पसंद आया, तो मुझे लगा गाने के लिए तो रेडी हो गई है, अब ये कल नहीं गा पाएंगी क्योंकि उनका गाना है। तो मैं सनी में पहुंचा, और सनी में मैं गया तो उधर वो सिटिंग रूम में नदीम और श्रवण जी दोनों बैठे थे, तो मैं बार बार ऐसे उनको झांक के ऐसे हो जाता था, अभी मैं अंदर भी कैसे जाऊं। थोड़ी देर में श्रवण भाई बाहर आए, तो मैंने श्रवण भाई को बोला कि श्रवण भाई एक मेरी छोटी सी मदद कर दो यार, मैं बहुत परेशान हूं, तो उन्होंने तुरंत जेब में हाथ डाल के पर्स निकाला।
1: अरे
0: बहुत बढ़िया इंसान थे। मैंने कहा भाई ये वाली मदद नहीं।
1: अच्छा,
0: हाँ क्या हुआ? मैंने कहा ये वाली मदद नहीं, मदद ये चाहिए कि हमको एक पिक्चर मिली है और उस पिक्चर में एक गाना है, वो गाना हम अलका जी से गवाना चाहते हैं, तो अगर वो कल गाएंगी तो पिक्चर हमको मिलेगी, अदरवाइज वो नहीं मिलेगी। हाँ तो फिर क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, मैं अलका जी से बात हुई, वो आपका गाना गा रही है इसलिए हमारा गाना नहीं गा पाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने मेरे सामने ही अलका जी को कहा फोन करके कि ये सुधाकर जो है ये मेरा खास है, और कोई बात नहीं आप मेरा गाना 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद कभी भी गा दो, पहले इनका गा दो।
1: क्या बात है,
0: ये दिक्कत थी। लेकिन जब ये गाना एम्पायर में रिकॉर्ड हुआ और वो पल आया कि इन दोनों शहनशाहों ने गाया, और एक इसमें एक बात आ गई, मैं ये भूल गया कि मुझे ठीक से किसी ने बताया नहीं था कि इसमें काजोल हीरोइन है, तो मैंने हिमेश भाई को पूछा यार हिमेश भाई इसमें

0: हीरोइन कौन है? तो उसने कहा सर काजोल। मैंने कहा यार गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हमने कहा यार काजोल के लिए तो इसमें कोई लाइन ही नहीं है। क्या मतलब? तो मैंने कहा वो अब मैं क्या बताऊं आपको सर, ये एक बार कुमार शानू को बुलाना पड़ेगा। बोले लेकिन हुआ क्या है? हमने कहा वो एक लाइन में काजोल के लिए लिखना चाहता हूँ, खासकर काजोल की आंखें जो है ना वो बड़ी कमाल हैं, और वो जो बातें करती है, जो जितनी बातें करती है सिर्फ उसकी आंखें बोलती हैं, बाकी सब तो ठीक है। और वो बात मैं कह नहीं पाया लेकिन मैं कह दूंगा। तो बोला ठीक है बुलाओ, फिर आप ही बुलाओ। तो मैंने शानुदा को फोन किया। शानुदा शायद बर्थडे मना रहे थे, अपना था या किसी और का मुझे याद नहीं। मैंने कहा शानुदा, इधर भी एक पैंतरा चला। मैंने कहा शानुदा एक्चुअल में जो लाइन गाने में प्रोड्यूसर ने पसंद की थी वो मैं आपको लिखवाना भूल गया, और जो रिजेक्ट थी वो आपने गा दी, और ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आप प्लीज आके वो लाइन सही कर दीजिए। अरे यार मैं बर्थडे में हूं, सब चमकी उमकी पड़ी है कोर्ट पे, मेरा ये हाल है। मैंने कहा दादा गाना तभी लगेगा जब वो लाइन होगी। दादा आए,
1: अच्छा, दो लाइन के लिए दिया है।
0: एक ही लाइन थी,
1: अच्छा
0: दो तो मैंने बोली, लाइन तो एक ही थी।
1: जी।
0: और वो आए, और आते ही थोड़े से जरा प्यार में नाराजगी होती ना, हाँ यार तो बोल बोल कौन सी लाइन है, क्या है ये? हमने कहा सर ये मेरी लाइन है वो, तौबा तौबा ये आंखें करती हैं सौ सौ बातें।
1: अच्छा जी।
0: तो वो मेरे को तो हंसने लगा, बोला तेरा नाटक है, तूने अभी सोचा होगा ये। मैं कुछ बोला ही नहीं, और उन्होंने वो लाइन गाई, और वो गाने में सबसे अच्छी लाइन।
1: बहुत सुंदर थी, और काजोल की आंखें जब एकदम
0: जी
1: हाईलाइट होती हैं उस
0: जी
1: गाने में, और सलमान गाते हैं उनके लिए, बहुत
0: बहुत
1: प्यारा
0: अच्छी
1: लगता है, बहुत सुंदर।

0: मतलब कहने का ये हुआ सुधाकर जी कि एक गीत को बनवाने में इतनी मशक्कत आपको करनी पड़ी, कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ा, तो जो आज नए गीतकार आने वाले उनको भी ये सबक मिलता है कि इतना आसान नहीं है कुछ नहीं करना है ना, कि हमने लिख लिया और हम गीतकार कहला गए, उसके पीछे कितनी संघर्ष की कहानी है।
1: संघर्ष की कहानी मतलब यह होता है कि अगर चूंकि मैं डायरेक्टर रह चुका था, मैं ये सब कर चुका था, मैं लाइन में मतलब नया नहीं था ना, तो मुझे वो मालूम था कि जो ये म्यूजिक डायरेक्टर जो चाह रहे हैं अगर ये फुलफिल होगा तो गाना और खिल के आएगा, और वो चूंकि नए थे तो मैं वो सब कर सकता था। तो कभी भी कोई भी गाना सिर्फ कागज पे हिट नहीं होता है,
0: बिल्कुल,
1: उसके बहुत सी उसमें जो चीजें हमको डालनी होती हैं वो हम डालते हैं।
0: बिल्कुल, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप गीत लिखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके लिए गीत लिख रहे हैं, सिचुएशन क्या है।
1: हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस फिल्म का हीरो कौन है,
0: हाँ,
1: हीरोइन कौन है, ये गाना क्यों गाया जा रहा है, ये गाना गाते वक्त जो है ना इनकी सिचुएशन क्या है, और इस फिल्म का जो डायरेक्टर है उसका मिजाज क्या है, वो किस तरह के गाने पसंद करता है, तब हम उस रंग में जा सकते हैं।
0: मतलब आपके लिए किसी किरदार और सिचुएशन को जानना बहुत जरूरी
1: बहुत
0: है, तब जाके शब्दों का चयन आप करेंगे। आपने एक उदाहरण दिया था कि गणेशा पर जो आपने
1: जी जी
0: बनाई है, तो
1: जी
0: वो बच्चा कॉन्वेंट स्कूल का है,
1: कॉन्वेंट स्कूल का है, इसलिए मैंने उसमें कर दिया कि ओ माय फ्रेंड गणेशा। अगर वो लड़का कॉन्वेंट में नहीं होता तो वो गणेशा को फ्रेंड नहीं कह सकता, और वो फ्रेंड जो ना इतना हिट हुआ कि उसकी तीनों चारों सीरीज मैंने ही लिखी।
0: बिल्कुल,
1: तो ये क्या होता है कि हम किरदार क्या है हमारा, वो क्या कह रहा है, कितनी बात कर रहा है, तो उससे हमें क्लू मिलता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं।
0: जी,
1: अभी जैसे प्यार किया तो डरना क्या मई, जब दूसरा गाना हमको मिला तो अब वो गाना लिखना था हमको कि उसमें गाना डालना है और उसमें भैया भी

0: होना चाहिए। तो मैं और हिमेश भाई दिए थे कि यार गाना तो ठीक है, भैया क्या करेगा इसमें। तो मेरे को उन्होंने कहानी बताई कि भाई ऐसा है, अरबाज भाई वो रोल कर रहे हैं, तो वो उनकी भाई कुछ कहानी है, वो बहन को ऐसा चाहते हैं, ये प्यार करता। तो हमने कहा ठीक है। तो वो गाना हुआ तुम पे हमें अटके आ रहा दिल भी मारे झटके। तो अब झट ये तो गाना हो गया, अब भैया की एंट्री कैसे होगी।
1: हाँ
0: तो मेरे को एक जहन में बात आई कि देखिए जब कोई लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, भले वो सच्चे मन से प्यार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, भाई को अगर पहली बार पता लगेगा तो, और उसे उसे लगेगा कि ये मेरी बहन की तरफ बढ़ रहा है, तो वो खटकेगा जरूर,
1: जी
0: भले बाद में उसको पता
1: जी
0: लगे कि ये मेरी
1: सच्चाई
0: बहन की
1: यही है।
0: सच्चाई है,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन पहला उसका जो
1: रिएक्शन आएगा।
0: रिएक्शन आएगा। तो मेरी वो लाइन आ गई, बच के रहना प्यार में तुमको पड़ जाए ना फटके, और भैया को तू खटके।
1: हाँ अच्छा
0: और ये गाना कंप्लीट
1: जी
0: हुआ,
1: जी जी
0: ये दो गाने मेरे सुपर डुपर हिट
1: जी
0: हुए।
1: जी

0: हटके।
1: आपने ये बताया कि किसी भी गीत को लिखते समय क्या बारीक दृष्टि होनी चाहिए गीतकार की, एक संगीतकार की, तब जाकर किसी की एंट्री आना कोई इतना आसान नहीं है कि किसी भी गीत में कोई भैया आया या दादी आई या ताऊ वो क्यों आए,
2: क्यों आए
1: और गीतकार ने उनके लिए क्या लिखा।
2: देखिए ये फिल्म हमराज का गाना है, साढ़े नाल आएगी ते लाइव बन जाएगी। इसकी भी कहानी बड़ी कठिन कहानी है।
1: अच्छा,
2: क्या है कि मैं इतना बड़ा राइटर नहीं हूँ जितने बड़े हमारे बुजुर्ग होते थे, और उनके सामने शायद कोई बोलता भी नहीं था, उनका लिखने का भी इतना परफेक्शन भी था जो शायद मुझ में नहीं है। मैं लेकिन एक बात की जरूर कोशिश करता हूँ कि मेरा डायरेक्टर, मेरा म्यूजिक डायरेक्टर जो मुझसे चाहता है मैं उसको फुलफिल कर देता हूँ।
1: जी, ये सबसे बड़ी
2: अपनी बात को रखते हुए
1: जी,
2: मैं
1: जी।
2: ऐसा नहीं कहता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उतनी बड़ी

0: पदवी मेरे पास नहीं मिली, और नहीं मिली तो अच्छा है क्योंकि मुझे भी अलग अलग काम करने का मजा है. कोई आदमी बोलता है मुझे ऐसा चाहिए तो मैं कोशिश करता हूँ वैसा ही दूं. तो ये जब गाना ओके हो गया, सब कुछ हो गया, अब उसके बाद बात आई कि मेरे को डायरेक्टर ने सजेशन दिया कि इसमें जब सब नाच रहे तो दादी भी नाचेगी
1: अच्छा
0: और दादी गाएगी भी.
1: अच्छा
0: तो मेरे को थोड़ा सा फिर झटका लगा,
1: हाँ
0: क्योंकि झटका इसलिए मुझे लगता था कि ये सारी बातें मुझे कन्वे होती थी. अभी हिमेश भाई ने ट्यून बना दी, सब कुछ हो गया, अभी अगर उनको भी बोला तो वो भी मुझे ही बोलेंगे. और मुझे ये हमेशा रहता था कि हिमेश भाई की बात अगर जो उन्होंने सोचा है अगर मैं वो नहीं दे पाया तो हिमेश भाई निकाल देंगे या प्रोड्यूसर निकाल देगा.
1: सही बात
0: मुझे एक डर हमेशा रहता था, आज भी रहता है, कि अगर मैं अच्छा काम नहीं कर पाया. अच्छे से दो मुरादें हैं, एक अच्छा काम वो जो आपको पसंद है, एक अच्छा काम वो जो दुनिया को पसंद है. तो मैं दोनों के कॉम्बिनेशन में रहता हूं कि
1: बिल्कुल
0: मुझे भी लगे और दुनिया को भी लगे.
1: जी जी
0: तो मैंने कहा ठीक है दादी गाएगी, लेकिन एक सिंगर और बुला लीजिए फिर. तो जसपिंदर नरूला जी को मैंने फोन किया
1: क्या बात है
0: और उनको बुलाया. गाना वाना लिखा हुआ नहीं था तब तक,
1: अच्छा
0: पहले सिंगर तो मिले. तो जब हो गया तो मैंने गाना लिखा. उसमें अब मैंने सोचा कि दादी जो गा रही है तो दादी क्या गाएगी. अभी ये तो लव सॉन्ग चल रहे हैं, हीरोइन हीरो की तारीफ कर रही है, हीरो हीरोइन की कर रहा है, ये कर रहा है, सब दोस्त नाच रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, दादी अचानक बेचारी क्या गाएगी. तो बहुत सोचने के बाद ना मुझे एक याद आया कि जब गांव में कोई फंक्शन होता है ये सब ऐसा होता ना, तो बुढ़ी बुढ़ी भी नाचना शुरू कर देती हैं. और वो कभी कभी तो ऐसा नाचती हैं कि जवान उसको देखना शुरू कर देते हैं, नाचना बंद कर देती हैं.
1: जी
0: उनका अपना एक स्टाइल होता है. तो मैंने पूछा उनको कि भाई इसके दादाजी भी हैं क्या फिल्म में. और बाद में ऐसा नहीं दादा भी कुछ जवाब देगा, बोले नहीं दादा नहीं दादी.
1: जी
0: तो अब वो जो बॉबी देओल साहब गाना गा रहे हैं गा रहे हैं गा रहे हैं, और दादी की एंट्री मैंने कराई कि वारी वारी जाऊं पुत्र तेरी इस जवानी पे, और तेरे दादा याद आए तेरी इस कहानी पे.
1: जी
0: यहां तक तो दादी गाती है, अब लड़का क्या जवाब दे. दादी कोई रोमांटिक जवाब तो नहीं दे सकता है. तो कहता है कि दादी इस बात में दम है, पोता ना तेरा कम है, वादा है तू अगले साल पड़ पोता खिलाएगी.
1: क्या बात है
0: और ये 10 मिनट की कहानी है, मतलब आपको अभी लिखना है, गाना चल रहा है, गाना गाया जाएगा. तो वो आपका माइंड जो है ना वो कभी भी हाइपर टेंशन में नहीं आना चाहिए. कोशिश करो कि अगर कुछ लोग बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, और हम वैसा काम करने की कोशिश करें.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: तो ये गाना मतलब इतना बड़ा सेलिब्रेशन और दादी की एंट्री होना, ऐसे बहुत से काम जो है ना मेरी लाइफ में हुए हैं और मैं उनमें से पार भी हुआ हूँ.
1: जी
0: गीत सुनाइए.
1: मैं आपसे यही कहने वाली थी. चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म.

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: आकाशवाणी जोधपुर का ये एफएम सेंसिटिव चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजे हैं अब से।

दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवानी में। ठीक 5 बजे हम आपसे मिलते हैं इसी जगह पर, और वीकेंड का भी मूड ऑन हो चुका है हमारा तो एटलीस्ट, पर अगर आपका नहीं हुआ है ना तो टेंशन

0: ऑन हो चुका है हमारा तो एटलीस्ट, पर अगर आपका नहीं हुआ है ना तो टेंशन मत लीजिए, अगले एक घंटे में हम लेकर आए हैं जबरदस्त म्यूजिक, मस्ती और यंग जनरेशन से जुड़े इंटरेस्टिंग डिस्कशंस।
1: तो मैं हूँ आपके साथ आपका रेडियो होस्ट और दोस्त यश थानवी, और मेरे साथ हैं
0: मैं अदिति मौर्या।
1: तो श्रोताओं, आज कई सारी बातें करेंगे आपके साथ, जिनमें आपके साथ साझा करेंगे कई सारे नए ज्ञानवर्धक बातों के बारे में, साथ ही साथ कई सारे म्यूजिकल ट्रैक आप और हम एक साथ में एंजॉय करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं आज की शाम का ये पहला गीत।

0: तो श्रोताओं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कैसे जो है तकनीक धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, और आजकल के हर युवा साथी जो हैं वो वर्चुअल रियलिटी यानी कि वीआर से काफ़ी वाकिफ़ हैं। और हर किसी को पता है कि बहुत से आजकल बच्चे हो या यूथ हो, गेम जो है वो वीआर के ऊपर खेलना पसंद करते हैं, जिसमें कि उनको एक ऐसी दुनिया कंप्यूटर से जनित मिलती है जिसमें कि वो एक्सपीरियंस कर पाते हैं। उनको हकीकत में लगता है कि वो गेम के अंदर खुद उतर चुके हैं और खुद या तो गाड़ी है या जो भी जिस तरह का गेम है वो खुद वो चला रहे हैं, और जो भी एडवेंचर होता है वो खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यानी कि एक ऐसी 3D और एक ऐसी आर्टिफिशियल कृत्रिम दुनिया जिसके अंदर कि आप चले जाते हैं जब आप उस वर्चुअल रियलिटी के अंदर कोई भी कार्य करते हैं। तो ऐसा ही एक नया कदम एजुकेशन के अंदर हम उठा सकते हैं, जिसके कि थ्रू बच्चे जो हैं वो कई सारी पढ़ाई की बातें या फिर एजुकेशन की जो चीज़ें हैं वो उसके थ्रू सीख सकते हैं।
1: बिल्कुल यश। और अगर हम देखें इसको एजुकेशन में यूज़ करना वीआर को, तो सोचिए अगर ज्योग्राफी की क्लास में हम खुद मैप में देखने से बेटर उस जगह पे पहुंच जाए, या कोई भी
0: बिल्कुल
1: हिस्ट्री का कोई
0: बिल्कुल,
1: सीक्वेंस है तो हम उसमें खुद प्रेजेंट होकर
0: जैसे
1: जी
0: अगर
1: पाए वो
0: हल्दी घाटी
1: पल।
0: का युद्ध है तो उसमें खुद बच्चा उसमें बैठ के और देख रहा है कि कैसे चल रहा
1: हाँ, तो
0: है।
1: उस बच्चे को वो ज़्यादा याद रहेगा और उसके काम फ्यूचर में काम जरूर आएगा फिर वो नॉलेज। तो ये क्या है ना, वीआर हमको एक्सपीरियंस करना और फील करवाने का काम करती है, तो ये काफ़ी
0: बिल्कुल
1: बेटर है। क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं अगर, तो वो ऑपरेशन थिएटर्स का जो सर्जिकल जो होता है उनका, वो यूज़ कर सकते हैं इस वीआर को। और अगर हम देखें इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, तो वो भी काफ़ी एडवांस जो मशीनरी
0: मैकेनिकल
1: होती है तो वो भी इससे उसका नॉलेज बढ़ सकता है।
0: और एक लाइव एक्सपीरियंस उनको मिल सकता है
1: हाँ
0: हर चीज़
1: बिल्कुल।
0: के बारे में। और जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि कुछ भी पढ़ने से या फिर सुनने से हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसको हमारा माइंड ज़्यादा कैप्चर करता है, उसका एक्सपीरियंस हमको लाइफ टाइम याद रहता है।
1: और ये
0: तो
1: बिना
0: हाँ
1: डेंजर के हम कुछ भी एक्सपीरियंस कर पाते हैं।
0: बिल्कुल, और अगर बच्चों को ये दिखाएंगे और इस तरह से सिखाएंगे तो शायद गेम्स से हटकर वो इस चीज़ों को ज़्यादा पसंद करने लगे और शायद उनकी फील्ड जो है वो अलग ही तौर पे जो है उनको लेके जाएं। जैसे कि एजुकेशन के अंदर बच्चों को जो हिस्ट्री पसंद नहीं आती है, कई बच्चों को कि हिस्ट्री बोरिंग लगती है या फिर नहीं पढ़ पाते हैं, उनको वही हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगने लगे कि किस तरह से पहले के ज़माने में क्या होता था और कैसे कैसी सभ्यताएं जो थी जिसके कारण कि हम आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं, उन सभ्यताओं को भी वो जान पाएंगे।
1: बिल्कुल। और फ्यूचर में शायद क्लासरूम्स सिर्फ ब्लैक बोर्ड और बुक तक सीमित ना रहें, और शायद
0: बिल्कुल
1: वीआर भी इंक्लूड कर लें, जिससे हम ऑनलाइन हो पढ़ाई या ऑफलाइन हो, वर्चुअल रियलिटी के थ्रू जब होगी ना, तो क्यूरियोसिटी जो है बच्चों की वो ज़्यादा बढ़ेगी।
0: बिल्कुल, और बच्चे चाहेंगे पढ़ना और कुछ नया सीखना, और जो लाइफ टाइम वो इमेज उनके माइंड में क्रिएट होगी वो उनको हमेशा याद रहेगी।
1: क्या पता फिर उनका फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री हो जाए फिर।
0: बिल्कुल
1: इसी बात पे अब सुनते हैं ये अगला गीत।

0: दोस्तों, जैसा कि ये गाना था, ये जो इंसान है वो तो नहीं कह पाया अपनी दिल की बातें। तो इससे मैं एक सोच रही हूँ कि हम रिजेक्शन को कैसे फेस करते हैं, ये चीज़ वो गाना ये बताना चाह रहा है। तो हम क्या है ना, अक्सर ऐसे सिचुएशंस में जहाँ हमको रिजेक्शन मिलती है, वहाँ हम डील करना, उससे कैसे डील करते हैं वो हम भूल जाते हैं, और हम शायद उससे गलत कदम उठा लेते हैं या जो वो चीज़ कर लेते हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए थी, और उससे जो है हमारा जो मोटिवेशन है वो भी डाउन हो जाता है। तो ऐसे में जो यूथ है, जब रिजेक्शन से गुजरता है, चाहे कॉलेज एडमिशन हो, जॉब इंटरव्यू हो, कंपटीशन हो, या फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप, नो सुनना कभी आसान नहीं होता। पर सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है इसमें, मुझ में ही कमी होगी कोई। लेकिन क्या हर रिजेक्शन का मतलब यही होता है? ज़रूरी नहीं। कभी कभी ना रिजेक्शन का रीज़न टाइमिंग होता है, कभी कंपटीशन, और कभी सिर्फ सिचुएशन। हर नो आपकी टैलेंट या वैल्यू का सर्टिफिकेट नहीं होता दोस्तों।
1: बिल्कुल अदिति, बिल्कुल सही बताया आपने कि हर रिजेक्शन ये साबित नहीं करता है कि आप कुछ उसके लिए लायक नहीं है या फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कई सारे युवा साथी ये सोचते हैं कि आज कोई इंटरव्यू में आप रिजेक्ट हो गए तो उसके बाद में आपकी कोई नौकरी ही नहीं लगेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि आप ये सोच के चलिए कि इस इंटरव्यू में आप रिजेक्ट हो गए तो उसके

0: क्या कारण है कि आप रिजेक्ट हुए हैं, और अगर आपको लगता है कि आपने एकदम अपना 100% उसमें दिया है, तो आप उसमें और भी सुधार कीजिए और फिर अगली बार फिर से कोशिश कीजिए, क्योंकि हर बार ये बात सही नहीं है कि केवल और केवल रिजेक्ट करने वाला ही व्यक्ति सही है। कई बार ऐसा होता है कि जो इसको रिजेक्ट किया गया है वो गलती से हुआ है, क्योंकि ऐसे कई सारे सितारे हैं जिनको कई बार कई जगहों से रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन आज वो एक इस दुनिया के चमकते सितारे हैं। क्योंकि हम ऐसे कई सारे सितारों के बारे में जानते हैं जिनकी आवाज़ के कारण उनको कहीं ना कहीं से रिजेक्ट कर दिया गया कि आपकी आवाज़ सही नहीं है या अच्छी नहीं है, लेकिन वही सितारे जो हैं आज अपनी आवाज़ के कारण हर किसी के दिल में राज करते हैं। और ऐसे कई युवा साथी हैं जो खुद ये एक्सपीरियंस करेंगे कि उनको कई बार कभी 10th में या तो आपके नंबर कम आ गए हों, या फिर सप्लीमेंट्री आ गई हो, या फिर आप कोई एग्ज़ाम में फेल हो गए हों, लेकिन आप आज की तारीख में किस मुकाम पर हैं वो आप स्वयं जानते हैं, और इसके बारे में आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कई सारे IAS ऑफिसर्स हो या फिर कई सारे ऑफिसर्स हो, वो भी जब भी सुनाते हैं अपनी कहानी, तो उन में से कम 90% लोगों के जो है वो पिछले पास्ट के अंदर ऐसे कई सारे दौर आते हैं जिसमें उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन आज वो एक कामयाब व्यक्ति हैं।
1: बिल्कुल। और यश, मैं ये कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि है ना, हम सोशल मीडिया पर हर किसी की सक्सेस स्टोरीज देखते हैं,
0: बिल्कुल,
1: और कोई भी ये शेयर नहीं करता कि उनने कितने रिजेक्शन फेस करे हैं या उनको कितनी नाकामयाबी मिली है। तो ये चीज़ हमको यूथ से कहनी ज़रूरी है कि जो यूथ सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है तो उस पर डिपेंडेंट ना हो, जो उसमें दिखा रहे हैं हैप्पी लाइफ स्टाइल हर किसी की, वो
0: बिल्कुल
1: ज़रूरी
0: बिल्कुल
1: नहीं कि वो सच हो, और सच है तो पीछे का जो नेगेटिव्स हैं वो हर किसी ने नहीं दिखाए।
0: बिल्कुल, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया की लाइफ में हर किसी युवा साथी को ऐसा लगता है कि वो इतना कामयाब है, उसके पास इतनी गाड़ियां, लेकिन उसके पीछे की हकीकत आपको नहीं पता। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि आप जैसे भी हैं आप सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, ये हमेशा मान कर चलें, क्योंकि अगर आप स्वयं को हमेशा सर्वश्रेष्ठ मानेंगे तो दुनिया आपको भी सर्वश्रेष्ठ मानना शुरू कर देंगी।
1: बिल्कुल। और रिजेक्शन जो है ना, उसको एक्सेप्ट करना और उस हारने से जीत मतलब सीखना और
0: बिल्कुल
1: उसको जीत में बदलना, यही होता
0: बिल्कुल।
1: है रिजेक्शन
0: और
1: का
0: अगर
1: असली मंत्र।
0: आप रिजेक्शन को नहीं संभाल पा रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर आपको रोना भी आ रहा है तो आप रो दीजिए और अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ में उसको साझा कर दीजिए, खास करके अपने बड़े बुजुर्गों के साथ में, क्योंकि उनकी आंखों में जो आपकी कद्र है वो आपको क्या समझते हैं तब आपको पता चलेगा, और आपको ये नॉलेज मिलेगा कि वो रिजेक्शन तो बहुत ही मामूली था, आप किन के लिए क्या मायने रखते हैं वो बहुत
1: बिल्कुल।
0: बड़ी बात है। तो इसलिए आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में उस बात को साझा करिए, और अगर थोड़े से आंसू आ भी रहे तो निकाल लीजिए, क्योंकि आगे भविष्य में आप एक बहुत ही बड़े आदमी बनने वाले हैं या एक बहुत बड़े सितारा बनने वाले हैं।
1: बिल्कुल। इसी इंस्पायरिंग थॉट के साथ चलिए सुनते हैं ये एक बेहतरीन गाना।

0: तो श्रोताओं, जैसा कि आजकल हर एक युवा साथी जो है वो प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार होता जा रहा है, क्योंकि हम हर बार देखते हैं या फिर घर में भी हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं कि जब भी हमारे माता पिता कोई भी हमको काम करने को कहते हैं, हम कहते हैं थोड़ी देर में कर लूँगा, या अभी नहीं थोड़ी देर बाद में कर लूँगा, या फिर मम्मी अभी नहीं थोड़ा
1: ये
0: देर रुक
1: तो
0: जाओ,
1: काफी
0: बस
1: रिलेटेबल
0: 10 मिनट रुक जाओ. 10 मिनट का कब वो 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटे हो
1: है।
0: जाते हैं.
1: बिल्कुल
0: या फिर हमारी, जैसे कि बहुत से बच्चों की अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही है, तो जो होमवर्क जो हॉलीडे के लिए डाला जाता है स्कूल्स में, वो बच्चे
1: वो
0: सोचते
1: तो
0: हैं कि
1: बच्चों को
0: आज नहीं कल कर लेंगे आज, और कब वो 1 महीना पूरा हो जाता है और तब उनको दिमाग में आता है कि होमवर्क करना है.
1: बिल्कुल, अब तुमने याद दिला दिया उनको।
0: हाँ, तो ये प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ को टालम टोल करना, या फिर आप उस काम को अभी नहीं करके थोड़ी देर बाद कर लूंगा, थोड़ी देर बाद कर लूंगा, और उसको टालते जाना काम को.
1: बिल्कुल, और इस प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे ना सिर्फ लेजीनेस ही एक रीजन नहीं है, और कभी कभी ना हम जो भी टास्क हमको करना है उसको हम इतना बड़ा बना देते हैं या डिफिकल्ट समझ लेते हैं ना, तो कभी परफेक्शन का प्रेशर होता है कि वो हर चीज़ परफेक्शन से हो या
0: बिल्कुल
1: परफेक्ट टाइम पे ही हम शुरू करेंगे
0: बिल्कुल
1: कि वो उस दिन करने दो मेरे को, मैं तब कर लूंगा काम। ये चीज़ थोड़ी सी गलत हो जाती है क्योंकि वो टाइम कभी आता ही नहीं है, उससे
0: और
1: उसकी वजह से हम और डील करते रहते हैं और लास्ट में यही कहते हैं काश उस दिन कर लिया होता।
0: बिल्कुल. और अदिति, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि हम जो उस वक्त मोमेंट में एंजॉय कर रहे होते हैं, जिस वक्त उसको टालते हैं, उस वक्त भी हमारे माइंड में बैक ये चल रहा होता है कि ये काम मुझे करना है,
1: हाँ
0: तो उस मोमेंट को भी एंजॉय नहीं कर पाते और वो काम भी हम डिले कर देते हैं.
1: ये
0: तो इसमें जो कबीरदास जी ने उस वक्त दोहा कहा था कि काल करे सो आज कर,
1: आज
0: आज
1: कर
0: करे सो अब, पल में पड़े होएगी बहुरी
1: होगी कल
0: करे को
1: को
0: कब.
1: कब।
0: यानी कि अगर कोई काम आपको करना है कल, तो उसको आज ही कर लो, और आज करना है तो अभी ही कर लो, क्योंकि अगला पल क्या होगा वो आपको पता नहीं है. इसको आप इमोशनली भी सोच सकते हो, कोई एजुकेशन के तौर पे भी सोच सकते हो, या फिर अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई भी काम करना है तो उसको आपको हाथों हाथ कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले पल में क्या से क्या बदल जाए कोई उसका

0: भरोसा नहीं
1: है। तो दोस्तों प्रोक्रेस्टिनेशन को डील करने से एक फायदा भी है कि आपका काम जल्दी हो जाएगा, तो इसको डील कैसे करना है, इसको कैसे टैकल करना है, तो वो बताती हूँ मैं कि आपका जो भी काम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में आपको बांटना है, और ऐसे सोच लीजिए हर 10 मिनट में आपको वो काम से ब्रेक भी लेना है ताकि आप फोकस्ड रहें। तो डिस्ट्रैक्शंस जो हैं आप उसको दूर रखिए इस टाइम में पूरे, और अपनी प्रोग्रेस जो है जितना आपने काम करा है उसको सेलिब्रेट भी करते रहिए। अगर आप रिवॉर्ड देते रहेंगे खुद को तो आपको काम करने का मन भी करेगा।
0: बिल्कुल, और सबसे आसान तरीका ये है कि ये सोच लीजिए दिमाग में कि बाद में भी मुझे ही करना है और अभी भी मुझे ही करना है, तो उसी वक्त कर लीजिए ताकि जो एंजॉय आप अभी करना चाहते हैं वो बाद में आप उसको काम को करके कीजिए, ताकि आपके दिमाग में उसका स्ट्रेस ना रहे कि उस काम को करना है।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में अरे वाह
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए RBI कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: दोस्तों स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युववाणी में मैं हूँ आपके साथ अदिति माड़ी और मेरे साथ हैं
4: यश थानवी
3: तो दोस्तों आज के जमाने में ना मैं देख रही हूँ कि हर दूसरा स्टूडेंट या यंग प्रोफेशनल किसी ना किसी साइड हसल से जुड़ा है यानी कि कुछ ना कुछ काम कर रहा है लेकिन आखिर ये गिग इकोनॉमी है क्या सिंपल शब्दों में अगर हम देखें कि गिग इकोनॉमी का मतलब है शॉर्ट टर्म या फ्लेक्सिबल वर्क करना यानी परमानेंट 9 to 5 जॉब के बजाय प्रोजेक्ट बेस्ड या टास्क बेस्ड काम करना जैसे फ्रीलांसिंग डिजाइनिंग कंटेंट क्रिएशन ऑनलाइन ट्यूटरिंग कैब ड्राइविंग फूड डिलीवरी फोटोग्राफी या वीडियो एडिटिंग और भी बहुत कुछ है इसमें
4: बिल्कुल और दोस्तों क्योंकि आजकल कई सारे स्टूडेंट्स जो है वो बाहर रहते हैं और उनको फाइनेंशियल कंडीशंस के कारण वो अपने खर्चे नहीं उठा पाते हैं या फिर रूम रेंट्स हो गया या फिर खाने पीने के जो खर्चे होते हैं उन सभी को संभाल करने के लिए वो स्टूडेंट्स या युवा साथी जो है वो साइड में ऐसे कुछ भी कार्य करते हैं जिससे कि उनकी आमदनी भी हो जाए और उनका जो दैनिक दिनचर्या है वो आराम से निकल पाए इसलिए वो कई सारे जैसे कि कोई ट्यूशन पढ़ाना या फिर जैसे कि अदिति ने बताया कि फ्रीलांसिंग करना फोटोग्राफी करना वीडियोग्राफी करना या फिर कई सारे ऐसे कार्य हैं जिनको वो साइड में एक साइड बिजनेस के तौर पे करते हैं जिसको हम गिग इकोनॉमी कहते हैं
3: इससे स्किल्स भी बढ़ते हैं और जो मतलब जो कर रहा है और उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और अगर वो कोई स्टूडेंट नॉर्मल है कोई बाहर नहीं रह रहा है तो उसकी पॉकेट मनी इंक्रीज
4: बिल्कुल बिल्कुल कुछ लोग पॉकेट मनी इंक्रीज करने के लिए कुछ लोग फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए और कई सारे युवा साथी ऐसे भी हैं जो केवल और केवल अपनी हॉबी और पैशन को फॉलो करने के लिए भी गिग इकोनॉमी का साथ देते हैं और इसका उपयोग करते हैं
3: बिल्कुल पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं तो इसका भी पहला और अच्छा मतलब अच्छा और बुरा क्या पहलू है वो हम आपको बताएंगे लेकिन इस सॉन्ग के बाद

0: मिले, लेकिन हम जानना चाहेंगे इसके दो पहलू क्या है। तो इसका जो क्या है नेगेटिव साइड, ये है कि कभी कभी एक्स्ट्रा इनकम के चक्कर में स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई, हेल्थ और सोशल लाइफ को इग्नोर कर देते हैं। दिन में कॉलेज, रात को प्रोजेक्ट्स और वीकेंड पर काम, और धीरे धीरे हो जाता है शुरू बर्नआउट। और बर्नआउट सिर्फ थकान नहीं होती दोस्तों, जब आप मेंटली एग्जॉस्टेड फील करें, हर वक्त स्ट्रेस रहें, और या जो काम कर रहे हैं उसका एंजॉयमेंट खत्म हो जाए, तो समझ लीजिए कि बॉडी और माइंड दोनों रेस्ट मांग रहे हैं।
1: बिल्कुल सही कहा दीदी कि युवा साथी जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ में वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए या फिर फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए जो कार्य करते हैं उसमें उनकी जो खुद की पढ़ाई है या फिर उनकी जो खुद की लाइफ है वो ख़राब होती जाती है। लेकिन साथ ही साथ ऐसे कई सारे गिग वर्कर्स भी हैं जो केवल और केवल इसी गिग इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि कई सारे फूड प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके फूड डिलीवरी बॉयज़ हैं या फिर साथ ही साथ कैब ड्राइवर्स हैं, जो लोग इसी के ऊपर उनकी पूरी मासिक आय जो है वो निर्भर करती है और उनकी जो पूरी जीवन है वो इसी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हम उनका ध्यान नहीं रख पाते हैं क्योंकि ऐसा हम कई बार देखते हैं कि कई बार डिलीवरी बॉयज़ या डिलीवरी पार्टनर्स जो हमारे यहाँ पे आते हैं वो देरी से आते हैं तो हम उनके ऊपर चिल्ला देते हैं या फिर ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं या फिर आजकल कई सारे ऐसे माध्यम होते हैं जिनसे हम उनकी शिकायत कर देते हैं ऑनलाइन अगर वो 5 मिनट भी देरी से आ जाएँ। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि इस तपती हुई गर्मी में वो किस तरह से अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं और किस तरह से वो बारिश हो या गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, हर किसी कंडीशन के अंदर वो जो है हमारे घर तक वो चीज़ पहुंचाते हैं और हम जो है एक मिनट नहीं लगाते। अगर वो 1 मिनट भी देरी से आ गए हैं तो हम ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं या फिर उनकी शिकायत कर देते हैं या फिर उन्हीं को कुछ भी बोल देते हैं। बजाय इसके हम ये कर सकते हैं कि हम उनको कुछ टिप दें या फिर साथ ही साथ उनके लिए इतना भी कर सकते हैं कि उनको पानी का पूछें या फिर उनको पूछें कि आपको कुछ खाने वगैरह की नीड है या फिर कुछ भूख लगी है तो उनको कुछ ऐसा दें, या फिर कुछ ना करें तो खास करके उनके साथ दें और उनकी समझें। अगर वो कोई तकलीफ बताते हैं और एक रीजनेबल रीजन देते हैं तो उसको समझते हुए उनके साथ में कोई भी गलत व्यवहार ना करें।
0: बिल्कुल, है ना, हम ये नहीं देखते, नजरअंदाज कर देते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं बिल्कुल अपने ईमानदारी से कर रहे हैं काम, तो उनका काम जो है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ भी करते हैं वो, लेकिन कई बार हम उन्हें रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन नहीं देते बल्कि बातें कुछ बातें सुना देते हैं उनको। पर उल्टा हमें ये क्या करना चाहिए, उनको स्माइल देके अच्छे से बात करनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, और अगर उन्होंने कुछ आपको दिया है, डिलीवर करा है, तो थैंक यू बोलिए, और थोड़ा सा पेशेंस भी रखना है कि इसमें ज्यादा जरूरत है हमको, और क्योंकि 10 मिनट डिलीवरी ऐप ये सब ऐसे ट्रैफिक जाम में पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि उनसे उनकी लाइफ खतरे में हो सकती है, क्या पता आपके 10 मिनट के चक्कर में वो कहीं और ऐसे कट लेके आए, उनको हार्म हो जाए।
1: बिल्कुल, और अदिति खास करके जैसे कि हम देखते हैं कि फूड डिलीवरी जो बॉयज होते हैं उनको तो हम बेवजह ही कई बार जो है कुछ भी बोलते थे, क्योंकि अगर 2-5 मिनट अगर वो लेट भी हो जाते हैं तो उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन केवल और केवल जो समय बताया गया उस समय पर वो नहीं आ पाए उसी कारण से हम जो है कई बार हम ऐसी गलती कर देते हैं। लेकिन वो हमें नहीं करना चाहिए, हमें भी उनकी परेशानियाँ और उनकी जो निजी लाइफ है उसको समझना चाहिए कि वो किस तरह से हमारे तक ये प्रोडक्ट पहुँचाते हैं।
0: बिल्कुल, तो स्टूडेंट्स के लिए यही मैसेज है कि साइड हसल करना गलत नहीं है, बल्कि नए स्किल सीखना और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ, स्टडीज और पर्सनल लाइफ के साथ बैलेंस बनाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और जॉब सिक्योरिटी और वो सब भी जरूरी है।
1: बिल्कुल, और साथ ही साथ जो आम लोग भी हम लोग हैं उनके लिए सीख भी है कि जो भी आते हैं ऐसे गिग वर्कर्स उनका ध्यान रखें और बेवजह अगर कोई रीजन इतना बड़ा ना हो तो ऐसी कोई उनके साथ में दुर्व्यवहार ना करें।
0: इसी खूबसूरत सोच के साथ चलिए सुनते हैं ये अगला गाना।

दोस्तों, जैसा कि इस गाने से पहले हमने बात करी थी कि गिग इकोनॉमी जो है वो हम साइड हसल कर रहे हैं. कोई भी अगर कॉलेज स्टूडेंट है वो साथ में काम भी कर रहा है ताकि उसको पॉकेट मनी या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ।

0: सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोताओं, कई युवा साथी जो हैं वो अपनी वोकेबलरी को यानी कि हर जगह जब वो स्पीच देने जाते हैं या फिर कहीं भी कोई मीटिंग में बैठे होते हैं या फिर दोस्तों के साथ में भी या फिर कॉलेज में या स्कूल में जब आप बात करते हैं तो बहुत मायने रखती है कि आप किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपके शब्द ही हैं जो हर किसी के जहन में रह जाते हैं। और हर कोई, अगर आपको किसी को भी अट्रैक्ट करना है या किसी को भी प्रभावित करना है तो केवल शब्दों के माध्यम से ही आप किसी को जो है वो अट्रैक्ट या प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप भी अपनी वोकेबलरी को अंग्रेजी में सुधारना चाहते हैं तो हम लोग कई बार आपको कई नए सारे शब्द बताते हैं जिसको आप अपनी भाषा शैली में इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे अपनी अंग्रेजी भाषा को और ज़्यादा सुधार सकते हैं।
2: तो दोस्तों, आज का जो हम वर्ड ऑफ द डे लेने वाले हैं वो है पार्डन माय फ्रेंच। इसका कुछ भी फ्रेंच से लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आप गलती से बोल देते हैं ना कभी कुछ जो नहीं बोलना चाहिए, तो उसके लिए मजाक मजाक में माफ़ी मांगना, ये है इस idiom का मतलब पार्डन माय फ्रेंच। तो कुछ भी इनफॉर्मल जगहों पर आप यूज़ कर सकते हैं इसको, और कहीं भी आप कवर अप करना चाहते हैं अपनी बात को तो पार्डन माय फ्रेंच बोलकर आप उसको बात को दबा सकते हैं। तो दोस्तों, इसको यूज़ करिए, इसको एंजॉय करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और अपनी जो वोकैबुलरी है वो आप बढ़ाइए।

0: तो श्रोताओं, आज आपके साथ में कई सारी ज्ञान की बातें की, साथ ही साथ कई सारी नॉलेजेबल और कई सारी हंसी मजाक की भी बातें की, जैसे कि कई सारे जैसे कि वर्चुअल रियलिटी को हम कैसे अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन जो है हमको नहीं करना चाहिए, उससे कैसे हम बाहर निकल सकते हैं, या फिर कैसे गिग वर्कर्स का जो है हमको सम्मान करना चाहिए, जैसे कि कई सारी बातें हमने की। लेकिन अब जो है घड़ी इशारा हमको कर रही है कि आप सभी से विदाई लेने का समय जो है अब आ चुका है। मैं था आपके साथ में आपका रेडियो होस्ट और दोस्त यश थानवे, मेरे साथ थी
1: दोस्तों, मैं थी अदिति मौर्या। आज के प्रोग्राम की प्रस्तुति थी राजेश लामरोड द्वारा और संयोजन था मनीष सोलंकी का। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, स्ट्रेस कम लीजिए, मुस्कुराते रहिए और आकाशवाणी के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।

0: FM 102.1 MHz पर आकाशवाणी जोधपुर का ये FM सेंसिटिव चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि

आदिवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोर ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में

0: सरकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी अभी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। इनमें पीएमईजीपी 2.0 पोर्टल, समाधान 2.0 पोर्टल, पीएमएस पोर्टल, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट 2.0 पोर्टल, एमएसएमई टेस्टिंग पोर्टल और एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 6.0 शामिल हैं। केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 89,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू और फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण ने पहला स्थान हासिल किया। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नामकरण किया गया है। देविका सिहाग, किताम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जोधपुर का ये एफएम सेंसिटिव चैनल है और शाम के 6:05 हुए हैं। इंतजार है आपको गुड इवनिंग जोधपुर का।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: दोस्तों, जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लें।

0: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ,
1: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारें लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया बिरामंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
3: दोस्तों कहते हैं जिस इंसान से गलती नहीं हुई या नहीं की तो मान के चलो कि उसने जिंदगी में नया करने की कभी कोशिश ही नहीं की।

दोस्तों, अब आपको गीत सुनवाते हैं दुल्हन बनू मैं तेरी। यह फिल्म का नाम लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की है आवाजें। गीत के बोल लिखे हैं रविंद्र रावल ने।

दोस्तों, अगर इंसान पहाड़ों पे नहीं घूमता, नंगे पैर साहिल पे नहीं चलता, शायरी नहीं पढ़ता या पुरसुकून माहौल में चाय नहीं पीता, बारिश में नहीं भीगता, किताबें नहीं पढ़ता या चाहत के लिए लगाव नहीं रखता, तो फिर मानो उसे मौत का डर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिन लोगों की ख्वाहिशें नहीं होती है, वो मरे हुए के समान होते हैं। इंसान को ख्वाहिशें रखनी चाहिए और उनको बनाने के लिए जिंदगी में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए।

0: देव दर्शन धूप।
1: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
2: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
1: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
3: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
1: संगीतकार रवि,
3: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने के यहाँ हम लोरियाँ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
2: आप खाए थाली में, हमने कूदे प्याली में।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
4: प्रस्तुत है विशेष जयमाला।

0: फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है संगीतकार और गायक राहुल देव बर्मन ने। ये रिकॉर्डिंग हम आपके लिए लेकर आए हैं विविध भारती के संग्रहालय से।
1: फौजी भाइयों को नमस्कार। आज मैं जयमाला शुरू करता हूँ आप सबके लिए। मैं जिनके आशीर्वाद से आज आप तक पहुँचा हूँ, मेरे पिताजी कुमार सचिन देव बर्मन। ये गीत जो सिर्फ आप ही के लिए है और उन्हीं की आवाज में। फिल्म का नाम है प्रेम पुजारी। सुनिए।

एक गाना अब मैं आपको ऐसा सुनाता हूँ जो मैं दो दफा गा चुका हूँ, शायद आप चौंक गए होंगे। पहली बार बंगाली में, स्वप्नो अमार हारिए गेछे, और दूसरी बार हिंदी में आशा जी के साथ।

अब मैं आप लोगों को एक ऐसी गीत सुनाना चाहता हूँ जो मेरा नहीं है। आप सोच रहे होंगे किनका गाना बजाएंगे हम। ये गाना देखिए क्या है, मेरे साथ जितने लोग काम करते हैं उन साथियों में से दो साथी के नाम है वासुदेव चक्रवर्ती और मनोहरी सिंह। ये दोनों मिलके उतना ही लगन से काम करें मेरे साथ जितना मैं मेरे पिताजी कुमार सचिन देव बर्मन के साथ काम करता था। उन्हीं के एक गाना आपको सुनाना चाहता हूँ।

0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विशेष जयमाला, जिसे आज प्रस्तुत किया है संगीतकार और गायक राहुल देव बर्मन ने।
1: कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मैं सिर्फ पाश्चात्य संगीत को ज्यादा अपनाता हूँ, लेकिन जब भी मौका मिला मैंने शास्त्रीय संगीत को भी अपनाया।

अब मैं आप लोगों को गीत सुनाना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है शोले। इसमें दो आदमी ने गाया हुआ है जिनका नाम हम लोग किशोरदा बोलते हैं और मन्नादा बोलते हैं। इन दोनों में तसल्लुन हो रहा था कि दोनों कैसे एक दूसरे से बेटर गाएं। इसके बारे में एक ही बात बोल सकता हूँ कि दोस्त सिर्फ दोस्त होता है, बाकी सब कुछ आनंद बख्शी का, धुन मेरी।

0: विशेष जयमाला कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों

0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विशेष जयमाला, जिसे आज प्रस्तुत किया है संगीतकार और गायक राहुल देव बर्मन ने।
1: अब आपको और एक फिल्म की गीत सुनाता हूँ। फिल्म का नाम है धर्म करम। इस गीत को 3 महान कलाकारों ने गाया है। आवाजें आपकी जानी पहचानी और लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने।

फौजी भाइयों, और ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, और एक गाने के लिए वक्त रहा है। अब जो गीत मैं सुनाऊंगा ये गीत फिल्म शोले का है।

ये था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम फौजी साथियों की सेवा में, जिसे प्रस्तुत किया संगीतकार और गायक राहुल देव बर्मन ने।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। आप हैं विविध भारती के संग।

जिज्ञासा जिज्ञासा ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग, ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जर्मनी फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीम बन भी गई और उसके बाद वो दूसरे नंबर पर भी सरक गई। ऐसा होता है खेल का जादू। और आज जब हम ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक ब्राजील वर्ल्ड कप फुटबॉल के इतिहास की सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीम है। आगे क्या होता है ये तो वर्ल्ड कप के खत्म होने पर ही पता चलेगा, पर फिलहाल आपको ये बताएं कि कुरासाओ नाम के देश पर 7-1 से जीत करने के बाद जर्मनी के कुल वर्ल्ड कप फुटबॉल में 239 गोल हो गए थे जबकि ब्राजील के थे 238 गोल। 14 जून 2026 को ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में कुरासाओ को 7-1 से हरा कर जर्मनी बन गई फीफा वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीम और उसके वर्ल्ड कप में कुल गोल हो गए 239 जबकि ब्राजील 238 गोलों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गया। लेकिन इसके बाद ब्राजील की भी बारी आई। वैसे आपको बता दें कि मैच से पहले जर्मनी ब्राजील से 6 गोल से पीछे था लेकिन कुरासाओ के इस मैच में 7 गोल जर्मनी ने दागे और ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया जबकि समझा ये जा रहा था कि थोड़ा वक्त लगने वाला है जर्मनी को। इस मुकाबले में हेवर्ड्स ने 2 गोल किए जबकि पूरी जर्मन टीम ने शानदार आक्रामक प्रदर्शन दिखाया। जर्मनी 113 मैचों में 239 गोल के साथ टॉप पर पहुंच गई। जर्मनी ने

पांच बार ब्राजील को पीछे छोड़ा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ब्राजील ने फिर से अपना जादू दिखाया और फीफा वर्ल्ड कप में वो 241 गोल के साथ सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीम बन गई है। अब आपको बता दें कि ब्राजील 241 गोल के साथ पहले नंबर पर है, जर्मनी 239 गोल के साथ दूसरे नंबर पर है और अर्जेंटीना 138 गोल के साथ तीसरे नंबर पर है। 21 जून की सुबह जब मॉन्टेरी स्टेडियम में जापान और ट्यूनिशिया के बीच शुरुआती सीटी बजी तो वर्ल्ड कप के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। ये फीफा वर्ल्ड कप की स्थापना के लगभग एक सदी बाद खेले जाने वाला 1000वां मैच था, यानी फीफा वर्ल्ड कप ने अपने इतिहास का 1000वां मैच पूरा कर लिया है। दुनिया के सबसे बड़े खेल के आयोजन की 96 साल की यात्रा और 1000वां मैच। आपको बता दें 1930 में उरुग्वे से शुरू हुआ था फुटबॉल का ये वर्ल्ड कप एक बहुत ही साधारण से स्टेडियम से, और आज 2026 में उत्तर अमेरिका के सबसे ज्यादा मॉडर्न लकदक स्टेडियमों में मैच खेले जा रहे हैं। और फीफा का जो इतिहास है वो रोमांच से भरा है। विश्व कप में खिलाड़ियों की दर्जनों पीढ़ियों की भागीदारी, क्लासिक मैच, लगातार पीछा करने वाले विवाद, अनगिनत ऐसे क्षण जिन्हें वीडियो पर दोबारा देखा जाता है। पहला विश्व कप 1930 में उरुग्वे में जब हुआ तो 13 टीमों ने हिस्सा लिया था। खास बात यह थी कि टूर्नामेंट के इतिहास के पहले दो मैच 13 जुलाई को एक साथ हुए थे, जिसमें अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से और फ्रांस का मुकाबला मेक्सिको से हुआ था। 100वां मैच 1954 में स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ था, जबकि तीसरे स्थान के प्लेऑफ में ऑस्ट्रिया ने उरुग्वे को 3-1 से हराया था। 12 साल बाद 200वां मैच सबसे यादगार फाइनल बन गया था। सन 1966, जगह वेम्बले इंग्लैंड। इंग्लैंड ने अतिरिक्त समय के बाद पश्चिमी जर्मनी को 4-2 से हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था। अब बारी फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास के 400वें मैच की। 1986 में डियोगो मैराडोना ने 400वें मैच में अर्जेंटीना की विजयी शुरुआत की थी। 1986 का मेक्सिको विश्व कप सबसे यादगार विश्व कप में से एक बन गया था, जिसमें हैंड ऑफ गॉड नाम का एक ऐतिहासिक गोल, अगर आपने वो नहीं देखा है तो यूट्यूब पर सर्च करके जरूर देखिए, हैंड ऑफ गॉड गोल। और इंग्लैंड के खिलाफ उनकी शानदार एकल दौड़ भी इसी वर्ल्ड कप में हुई थी। अगर ये भी आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए कि किस तरह से मैदान के आर पार भागते हुए मैराडोना गोल करते हैं। और फिर 1994 में मैराडोना 500वें मैच में खेले और एक दुखद अध्याय जुड़ गया, क्योंकि अर्जेंटीना के इस बेमिसाल खिलाड़ी का डोपिंग टेस्ट हुआ, वो नाकाम हुआ और उन्हें टूर्नामेंट में खेलने से मना कर दिया गया। 2026 का वर्ल्ड कप अभी आधा ही हुआ है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में गोल की दो हैट्रिक हो चुकी हैं। लियोनेल मेसी ने अर्जेंटीना की अल्जीरिया पर 3-0 की जीत में हैट्रिक बनाई और जोनाथन डेविड ने कनाडा की कतर पर 6-0 से शानदार जीत में हैट्रिक बनाई। एक वर्ल्ड कप, अब तक दो हैट्रिक जब हम ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इतिहास में कुल मिलाकर फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में 56 हैट्रिक बनाई गई हैं, जिनमें से हर एक हैट्रिक की अपनी एक कहानी है। अगर इन सब के बारे में बात करने लगे तो एक पूरी सीरीज ही शुरू करनी पड़ेगी। जून 1954, मैच के शुरू होने के 24 मिनट बाद स्ट्राइकर एरिक प्रोब्स्ट ने चौथे 21वें और 24वें मिनट में हैट्रिक बनाया। ऑस्ट्रियाई टीम को ग्रुप चरण में चेकोस्लोवाकिया पर 5-0 से शिकस्त देने में मदद की। इससे पहले अर्नस्ट स्टोजास्पल ने तीसरे मिनट में ऑस्ट्रिया को बढ़त दिलाई थी। एरिक प्रोब्स्ट की यह हैट्रिक वर्ल्ड कप इतिहास की सबसे तेज हैट्रिक बनी हुई है, 24, 21 और चौथे मिनट में गोल किए थे। हालांकि तीनों गोलों के बीच के समय को ध्यान रखें तो यह सबसे तेज हैट्रिक नहीं है। यह रिकॉर्ड हंगरी के खिलाड़ी लाज्लो किस के नाम है, जिन्होंने 1982 के वर्ल्ड कप में एल साल्वाडोर के खिलाफ सिर्फ 7:42 में खटाखट 3 गोल दाग दिए थे। और अब सबसे छोटे और सबसे बड़े खिलाड़ियों के रिकॉर्ड आपको बताते हैं। आज तक पहले वर्ल्ड कप में हैट्रिक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। 24 जून 1958 को जब ब्राजील ने पहले सेमीफाइनल में फ्रांस को 5-2 से हराया था, तब उनकी उम्र थी सिर्फ 17 साल 244 दिन। पहले 18 साल की आयु

से पहले हैट्रिक बनाने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं आज तक। पहले के विपरीत लियोनेल मेसी वर्ल्ड कप में हैट्रिक बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। 2026 यानी इसी साल वर्ल्ड कप के उद्घाटन मैच में मेसी ने तीनों गोल करके अर्जेंटीना को अल्जीरिया पर 3-0 से जीत दिलाने में मदद की थी। इस समय उनकी उम्र थी 38 साल और 357 दिन। विश्व कप में सबसे ज्यादा हैट्रिक बनाने वाले खिलाड़ियों की बात अब कर ली जाए। आज तक विश्व कप में एक से अधिक हैट्रिक बनाने वाले केवल 3 खिलाड़ी हैं। ये हैं फ्रांस के जस्ट फोंटेन, 1958 में पश्चिमी जर्मनी के खिलाफ 4 गोल, पराग्वे के खिलाफ हैट्रिक। हंगरी के सैंडोर कॉक्सिक्स, 1954 दक्षिणी कोरिया के खिलाफ 9-0 की जीत में पहली हैट्रिक और जर्मनी के खिलाफ 8-3 की जीत में 4 गोल। और जर्मनी के गर्ड मुलर, 1970 बल्गारिया और पेरू के खिलाफ हैट्रिक। कितनी रोमांचक है रिकॉर्ड की ये बातें। अगर हम दो अलग अलग विश्व कप की बात करें तो गैब्रियल बैटिस्टा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक से ज्यादा हैट्रिक बनाई हैं। अर्जेंटीना के इस स्ट्राइकर ने 1994 वर्ल्ड कप में ग्रीस के खिलाफ 3 गोल किए और फिर 4 साल बाद 1998 में फ्रांस में हुए टूर्नामेंट में जमैका के खिलाफ एक और हैट्रिक बनाई। और अब फाइनल में हैट्रिक की बात। 1996 में इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप की मेजबानी की और जॉफ हर्स्ट फाइनल में हैट्रिक बनाने वाले वर्ल्ड कप इतिहास के पहले खिलाड़ी बने। वेम्बले स्टेडियम में उनकी हैट्रिक ने इंग्लैंड को पश्चिमी जर्मनी के खिलाफ 4-2 से जीत दिलाने में मदद की थी। 2022 में चमत्कार फिर से दोहराया गया। फाइनल में किलियन एम्बापे ने फ्रांसीसी टीम के लिए 3 गोल किए, हालांकि फ्रांस को खिताब जीतने के लिए काफी नहीं था। लियोनेल मेसी की अगुवाई वाली अर्जेंटीना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3-3 से ड्रॉ रहे मैच को पेनल्टी शूट आउट तक पहुंचाया और आखिरकार दक्षिण अमेरिकी टीम ने पेनल्टी शूट आउट में 4-2 से जीत हासिल की। तो ये था वर्ल्ड कप फुटबॉल का बुखार। वर्ल्ड कप फुटबॉल के बारे में कुछ रोचक तथ्य हमने आपको बताया और आइए अब अपनी प्रैक्टिकल दुनिया की तरफ लौट आते हैं और आपको बताते हैं कि व्हाट्सएप को हैक करने से बचाने के लिए किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए। व्हाट्सएप को आज भारत में 20 करोड़ से ज्यादा यूजर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप आसानी से हैक हो सकता है। ऐसे में व्हाट्सएप को सुरक्षित रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो ये कि व्हाट्सएप को हैक होने से बचाने के लिए हमेशा 6-डिजिट SMS वेरिफिकेशन कोड या कोई अन्य OTP किसी के साथ साझा न करें। आपको अपने WhatsApp में हमेशा 2-स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर लेना चाहिए। इसके अलावा समय समय पर लिंक्ड डिवाइसेस की चेकिंग भी कर लेनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ और बातें आपको बताते हैं। अपने WhatsApp खाते के लिए एक मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, इसे किसी से भी साझा न करें। जैसे कि हमने आपको बताया 2-स्टेप वेरिफिकेशन, आप WhatsApp की सेटिंग में जाएं, अकाउंट में जाएं, 2-स्टेप वेरिफिकेशन को चालू करें और इस तरह से ये एक लेयर बढ़ जाएगी सिक्योरिटी की। इसके बाद कोई भी व्यक्ति अपने फोन में आपका व्हाट्सएप चालू नहीं कर पाएगा। यदि कोई आपसे आपका 6-डिजिट वेरिफिकेशन कोड मांगता है तो वो आपका दोस्त हो, परिचित हो, आपको ये कतई नहीं देना है। आपको व्हाट्सएप में जाना है और चेक करना है लिंक्ड डिवाइसेस, जहां वो बताएगा कि आपका व्हाट्सएप कहां कहां कंप्यूटर पर लॉग इन है। सभी जगह से आपको लॉग आउट करके रखना चाहिए। इसके अलावा संदिग्ध लिंक से बचें, बहुत जरूरी बात है। किसी भी अनजान नंबर से कोई मैसेज आया है, कई बार वो लिंक हो सकती है, कई बार वो तस्वीर हो सकती है। हाल ही में एक शख्स को किसी शादी का कार्ड आया, उसने वो क्लिक किया और उसका व्हाट्सएप हैक हो गया। ये कार्ड किसी अनजान नंबर से आया था। दूसरी बात, बायोमेट्रिक लॉक सेट करें। व्हाट्सएप को सुरक्षित रखने के लिए आप फिंगरप्रिंट या फेस आईडी के लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने फोन में और कंप्यूटर में व्हाट्सएप का बैकअप रखें, जैसे कि हम अपने ईमेल आईडी पर व्हाट्सएप का बैकअप सेट कर सकते हैं, ताकि अगर आपका खाता हैक हो जाए तो आप अपने डेटा को इस तरह से वापस ला सकते हैं। किसी भी तरह की मुसीबत की स्थिति आए तो अपने व्हाट्सएप अकाउंट को एक्सेस न कर पाने की स्थिति में support@whatsapp.com पर मेल करके अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप 30 दिनों तक अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं करते हैं तो अपने आप आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। और अब हम याद कर रहे हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को, जिनकी याद का दिन होता है 27 जून को। फील्ड मार्शल सैम हॉर्मुज़ फ्रेम जी जमशेद जी मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को ब्रिटिश भारत के अमृतसर में हुआ था। उनके पिता हॉर्मुज़ मानेकशॉ पारसी थे और पेशे से एक डॉक्टर थे। मां का नाम था हीरेबाई मानेकशॉ।

शॉ। सैम मानेक शॉ के पिता चाहते थे कि वो मेडिकल की पढ़ाई करें, लेकिन सैम का मन था कि वो आर्मी में जाएं, और उन्होंने भारतीय सैन्य एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया। उनकी पढ़ाई नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में हुई थी। 1932 में वो फौज में आ गए। 1934 में फौज में स्नातक हुए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बर्मा के युद्ध क्षेत्र में जापानी सेना के खिलाफ उन्हें लड़ने के लिए भेजा गया था। 1971 की जंग में पाकिस्तान को हराने और नया मुल्क बांग्लादेश बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। वो एक ऐसे लीडर बने जिन्होंने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था। गोरखा और भारतीय सेना के जवान उन्हें हमेशा प्यार से सैम बहादुर कहा करते थे। रिटायरमेंट के बाद वो तमिल लोगों के इसलिए प्रिय हो गए क्योंकि नीलगिरीज में उन्होंने अपना घर बना लिया था। 1968 में पद्म भूषण, 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए थे सैम मानेकशॉ। और आपको बता दें कि 1971 का जो भारत पाक युद्ध था उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को 100% विक्ट्री का वादा किया था और उसे निभाया भी था। 27 जून 2008 को सैम मानेकशॉ गहरी नींद में सो गए, हम सबसे बिछड़ गए। उस वक्त उनकी उम्र थी 94 बरस। सैम मानेकशॉ पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है सैम बहादुर। इस गाने के जरिए हम सैम बहादुर को नमन करते हैं। ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। मिलेंगे अगले हफ्ते नई जानकारियों के साथ। शोध आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: दोस्तों, हवा महल के अंतर्गत सुनो कहानी श्रृंखला में इन दिनों आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का वाचन। इस कड़ी में आज आपको सुनवा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी नशा। वाचन स्वर है अमरकांत दुबे का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर।
2: ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थीं। मैं जमींदारी की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता। वो जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी। मैं इस वाद विवाद की गर्मा गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बातें कह जाता, लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। शायद इसका कारण यह था कि वो अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वो सीधे मुंह बात न करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है, उसका उसे भी प्रचुर भाग मिला था। दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा होता था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझमें भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थीं, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं निजी दशाओं पर टिका हुआ था। लेकिन वो मेरी जगह होकर भी शायद अमीर

ही रहता क्योंकि वो प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर न जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए न थे और न मैं घर वालों को तकलीफ देना चाहता था। इसके साथ ही परीक्षा का भी ख्याल था, अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी था और घर जाकर कौन पढ़ता है। लेकिन जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। उसने इसके साथ ही कहा, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहाँ अगर जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहाँ जाकर कुछ और हो जाऊंगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूँ, उसने जवाब दिया। तो मैंने कहा, तो तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब

तो मैंने कहा, तो तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया। अगर वो अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता। सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर न किया था। अब की सेकंड क्लास में सफर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को ही स्टेशन जा पहुंचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामों को यह समझने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन, लेकिन न जाने मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी की जेब से गए। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने ही दे दी। मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला। वो भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खानसामों ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। गाड़ी चली, डाक थी, प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला। मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, दूसरा दर्जा, सेकंड क्लास। उस मुसाफिर ने डब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ, सेवक भी इतना समझता है, और बीच वाले बर्थ पर जाकर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 2 भद्र पुरुष थे, 5 बेगार। बेगारों ने हमारा लगेज उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चल दिए। दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हैं, तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे। दोनों सज्जनों ने ईश्वरी से पूछा, ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं। ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूं कहिए कि आप ही की बदौलत मैं इलाहाबाद में पढ़ा हुआ हूँ, नहीं तो कब का लखनऊ चलाया होता। अब की बार मैं इन्हें घसीट लाया। इनके घर से कई तार आ चुके थे, मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए। आखिरी तार तो अर्जेंट था, जिसकी फीस 4 आने प्रति शब्द है, पर यहाँ से भी इसका जवाब इनकारी ही गया। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा, आतंकित हो जाने की चेष्टा करते हुए जान पड़े। रियासत अली ने अर्ध शंका के स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका निवारण की, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं, पुराने सारे कपड़े जला दिए। यूं कहो कि राजा हैं, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी मूरत तो देखो, मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़कर आए हैं। राम हरक बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भांप ही नहीं सकता। मैं मन में कटा जा रहा था, पर न जाने क्या बात थी कि ये सफेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद न जान पड़ा। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीपतर आता जाता था। मैं शहसवार नहीं हूँ, हाँ, लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूँ। यहाँ देखा तो 2 कलाराज घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ, पर बोटियां कांप रही थीं। मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दिया, घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। खैरियत ये हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज न किया, वरना शायद मैं हाथ पांव तोड़वा कर लौटता। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि ये कितने पानी में है। ईश्वरी का घर क्या था, किला था किला। इमाम बाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ, नौकरों का कोई हिसाब नहीं, एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ सबसे मेरा परिचय कराया, और उसी अतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछिए। नौकर चाकर ही नहीं, घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीद कर रहे हो। ईश्वरी ने सुदृढ़ मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं। जरा देर बाद एक नाई हमारे पांव दबाने आया। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पांव दबा। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हों। मैं इसे अमीरों के चोंचले, रईसों का गधा

अपन और बड़े आदमियों की मुटमर्दी और न जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता और आज मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे, नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक ही पहुंच पाई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया, हम स्नान करने चले गए। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छांट लिया करता हूँ, मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की ही भांति अपनी धोती भी छोड़ दी। अंदर भोजन करने चले। होटल में जूते पहन मेज पर डटते थे, यहाँ पांव धोना आवश्यक था। सेवक पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पांव बढ़ा दिए, सेवक ने उसके पांव धोए, मैंने भी पांव बढ़ा दिए, सेवक ने मेरे पांव भी धोए। मेरा वो विचार न जाने कहाँ चला गया था। सोचा था वहाँ देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे, मगर वहाँ सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था। नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता, अपने हाथ पांव को हिलाने की कोई जरूरत नहीं, केवल एक जबान हिला देना काफी है। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था, भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक दिमाग बन गया था, या बनने पर मजबूर किया गया था। एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में थे, शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहाँ 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरा। 11:30 बजे मेहरा आया, बड़ा मुंह लगा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुधि ही ना रही। अब जो याद आई तो भागा हुआ आया। मैंने ऐसी डांट बताई कि उसने भी याद किया होगा। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया, ये सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य हैं। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई पर लैंप न चला। लैंप मेज पर रखा हुआ था, दिया सिलाई भी वहीं थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता। फिर कुंवर साहब कैसे जलाएं? मैं झुंझला रहा था। समाचार पत्र आया रखा हुआ था, जी इधर लगा हुआ था पर लैंप नदारित। दैव योग उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ निकले, मैं उन्हीं पर उबर पड़ा। ऐसी फटकार बताई कि बेचारा उल्लू हो गया। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया। वहाँ एक ठाकुर अक्सर आया करता था, कुछ मनचला आदमी था। मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा लिहाज करता था, पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना, लोग कहते हैं कि यहाँ सुराज हो जाएगा तो जमींदार न रहेंगे। मैंने शान जमाई, जमींदारों के रहने की जरूरत ही क्या है, ये लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा करते क्या हैं? ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्या सरकार सब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी? मैंने कहा, बहुत से लोग खुशी से दे देंगे, जो लोग खुशी से न देंगे उनकी जमीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, जो ही सुराज आएगा अपने इलाके असामियों के नाम हिब्बा कर देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा, फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार, हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दें तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहें। मैंने कहा, अभी तो मेरा कोई अख्तियार है नहीं भाई, लेकिन ज्यों ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा। सुना उस दिन ठाकुर ने खूब भंग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया। छुट्टी इस तरह तमाम हुई और हम फिर प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए। ठाकुर तो हमारे स्टेशन तक आया। मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और अपनी कुबेरोचित विनय और देवत्व की मोहर हरेक हृदय पर लगा दी। जी तो चाहता था हरेक को अच्छा इनाम दो, लेकिन यह सामर्थ कहाँ थी। वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था, पर गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोग कर सभी लोग लौट रहे थे। सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह न थी, इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर। ये आखिरी गाड़ी थी, किसी तरह रुक न सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिल गई। हमारे ऐश्वर्य ने वहाँ अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से लेटे लेटे, जा रहे थे सिकुड़े हुए, पहलू बदलने की भी जगह न थी। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा सा गट्ठर बंधा था कलकत्ते जा रहा था, कहीं गठरी रखने की जगह न मिलती थी, पीठ पर बांधे हुए था।
इससे बेचैन

0: होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा था। उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं कुछ देर जब्त किए बैठा रहा। एकाएक मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे पकड़कर धकेल दिया और दो तमाचे जोर जोर से लगाए। उसने आंख निकालकर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी? हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर दो तीन तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया। चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे? कोई बड़ा आदमी होगा, अपने घर का होगा, मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता। क्या कसूर किया था बेचारे ने? गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया तो इस पर इतना क्रोध? अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत खो देता है? ये सभी बातें वहाँ लोग कहते रहे। एक ग्रामीण बोला, दफ्तरन मा घुसन तो पावत नहीं, उस पर इतना मिजाज। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, वॉट एन इडियट यू आर बीर। और मेरा नशा कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था।
1: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी नशा। वाचन स्वर था अमरकांत दुबे का। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने।
2: सुनो कहानी।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म ओ रोमियो से, आवाजें सुखविंदर सिंह और रेखा भारद्वाज की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत विशाल भारद्वाज का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकी

0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म पुष्पा 2 से। आवाज़ श्रेया घोषाल की थी, गीत के बोल रकीब आलम के और संगीत देवी श्री प्रसाद का।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को

0: समय एक छोटे से अंतराल का शेष कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले

0: भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में MSME दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
2: It is very impressive that the contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. So MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
1: इस अवसर पर MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
3: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, MSME के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी MSME को आगे ले जाना चाहते हैं।
1: उपराष्ट्रपति ने देश में MSME को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में PM फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे।

0: तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साई जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
2: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन ना करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम ना बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने कहा

0: कहा कि अब तक कुल दो व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने ये भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हरा कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने दो दो सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

श्रद्धाएं, गीत आपने सुना फिल्म धड़क से, आवाजें अजय गोगावले और श्रेया घोषाल की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत अजय अतुल का।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म ए जेंटलमैन से। आवाज़ें ऐश किंग और जिगर सरैया की थी। गीत के बोल रफ्तार और सिद्धार्थ मल्होत्रा के, संगीत सचिन जिगर का।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म लखनऊ सेंट्रल से, आवाज अरिजीत सिंह की थी, गीत के बोल कुमार के और संगीत अर्जुन हरजाई का।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म ओके जानू से। आवाज ए आर रहमान, श्रीनिधि वेंकटेश की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत ए आर रहमान का।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसी बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज एक खास दिन है, एक संगीतकार की याद का दिन, और वो संगीतकार हैं पंचम।

दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम में हम आपको किसी गीतकार, संगीतकार या किसी कलाकार की पूरी जीवन यात्रा बताते हैं। हम ये बताते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए, कैसे उनकी परवरिश हुई और कैसे उनका करियर शुरू हुआ और फिर वो कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ते चले गए। लेकिन आज है पंचम दिवस और पंचम के बारे में हम ये मानकर चलते हैं कि आपको तमाम जानकारियां विविध भारती के इससे पहले के आज के फनकार कार्यक्रमों के जरिए मिल गई होंगी। आज हम आपको सुनवाएंगे दास्ताने पंचम, यानी कैसे पंचम ने अपने गानों की धुनें बनाई। उनके जीवन से जुड़ी बड़ी दिलचस्प घटनाएं भी हम आपको बताएंगे और इसके अलावा पंचम की रचना प्रक्रिया में झांक कर भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दास्ताने पंचम। दरअसल जाने माने संगीतकार आर डी बर्मन का नाम तो पंचम रख दिया गया। वो सचमुच सुरों से सराबोर भी रहे, लेकिन सचिन देव बर्मन बड़े व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने पंचम को कोलकाता में अपनी मम्मी के घर पर रख दिया था, यानी दादी जी ने पंचम की परवरिश की। सचिन देव बर्मन को ज्यादा पता नहीं होता था कि पंचम कर क्या रहे हैं। एक बार एक स्कूल के फंक्शन में एस डी बर्मन को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुला लिया गया और जब स्पेशल गेस्ट के तौर पर वो वहां गए तो उन्होंने देखा कि पंचम हारमोनिका बजा रहे हैं। उन्हें अपने बेटे की इस प्रतिभा को देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। एक और दिलचस्प घटना हुई थी, एक स्कूल के स्पोर्ट्स फंक्शन में इनाम बांटने के लिए एस डी बर्मन को बुलाया गया। सचिन देव बर्मन इनाम बांट रहे थे तो ऐलान हुआ साइकिलिंग के लिए अवार्ड राहुल देव बर्मन को। अब उनका बेटा ही उनके सामने खड़ा था और साइकिलिंग के लिए वो उसको पुरस्कार दे रहे थे। अगले दिन उन्होंने पंचम को अपने पास बुलाया और बोला, कब से तुम साइकिलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो? पंचम ने जवाब दिया, 8 दिन से। उन्होंने पूछा, ये बताओ तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? पंचम ने जवाब दिया, आपसे बेहतर म्यूजिक डायरेक्टर बनना। ये जवाब सचिन देव बर्मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पंचम को अलग अलग साज सीखने के लिए प्रेरित किया और ब्रिजेन बिस्वास के पास भेज दिया तबला सीखने के लिए। इसके अलावा पंचम को भेजा गया उस्ताद अली अकबर खां और आशीष खां के पास सरोद सीखने के लिए। कई ऐसे गाने हैं जिनमें पंचम ने खुद सरोद बजाया है। एक बार सचिन देव बर्मन इसी तरह से छुट्टियां बिताने के लिए अपनी मां के पास कोलकाता गए। उन्होंने राहुल देव बर्मन को बुलाया और उनसे कहा कि जरा अपनी मार्कशीट दिखाना। मार्कशीट देखकर वो आग बबूला हो गए, पढ़ाई में इतने कमजोर। उन्होंने तय किया राहुल को मुंबई ले जाएंगे क्योंकि उनकी भी अब उम्र बढ़ रही है और राहुल को अपने करियर में किसी तरह से एस्टेब्लिश करना है। 10-12 साल में राहुल कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। लेकिन राहुल देव बर्मन की दादी ने इसका विरोध किया। गुस्से में एस डी बर्मन ने वापस मुंबई जाने का फैसला किया। इससे पहले आखिरी बार पंचम को बुलाया और कहा, जरा ये बताओ तुमने कौन कौन सी ट्यून्स बनाई हैं? बस पंचम ने एक के बाद एक 15 धुने सुना दी। सचिन देव बर्मन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो मुंबई चले गए। एक साल बाद का वक्त, राहुल देव बर्मन कोलकाता के एक थिएटर में फिल्म फंटूश देख रहे थे। अचानक ये गाना

से स्वीकार करती है। हो गया ना टेस्ट, तू कामयाब हो गया बेटे, बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर बनेगा तू। और इस तरह 9 बरस की उम्र में सचिन देव बर्मन ने राहुल देव बर्मन की पहली धुन का इस्तेमाल फिल्म फंटूश में किया था। आर डी बर्मन से जुड़े अनगिनत किस्से हैं। मजेदार बात यह है कि आर डी बर्मन मुंबई जाना चाहते थे और कोई जुगाड़ बन नहीं रही थी। कभी दादी नहीं मानती तो कभी पिता। सन 1955 के दिसंबर की बात है, गुरुदत्त कोलकाता आए। आर डी बर्मन गुरुदत्त से मिले और उनसे निवेदन किया कि मुझे मुंबई ले चलो। बस गुरुदत्त पंचम को मुंबई ले आए और फिल्म प्यासा में पहली बार पंचम ने एस डी बर्मन के असिस्टेंट के रूप में काम किया। उन्होंने एक गाना भी कंपोज किया और गानों में माउथ ऑर्गन भी बजाया और कुछ अन्य इंस्ट्रूमेंट भी बजाए।

0: न जा।
1: राहुल देव बर्मन उछल पड़े, अरे ये तो मेरी धुन है, ये तो उन्हीं धुनों में से एक है जो मैंने अपने पिता को सुनवाई थी। उन्होंने फौरन अपने पिता से संपर्क किया और उनसे कहा कि आपने मेरी जून चुरा ली। सचिन देव बर्मन बहुत हाजिर जवाब थे। उन्होंने कहा, मैं तो ये टेस्ट कर रहा था कि तेरी धुनें पब्लिक किस तरह

ये वो दौर था जब सचिन देव बर्मन अपने इस प्रतिभाशाली बेटे को संगीतकार बनने के लिए तैयार कर रहे थे। उन्होंने संगीत निर्देशन की बारीकियां अपने बेटे को सिखाई और उसको ये कहा कि जब कभी भी किसी गाने की धुन बन जाए तो प्रसन्न होने की बात नहीं है, उसे कुछ दिनों के लिए वैसे ही छोड़ दो, उसके बाद दोबारा सुनो, हो सकता है तुम्हें अपने ही काम की कमियां नजर आए, हो सकता है तुम अपनी ही ट्यून को रिजेक्ट कर दो। इस तरह से राहुल देव बर्मन ने अपने पिता से संगीतकारी की बारीकियां सीखी। कई बार राहुल देव बर्मन ने ये अपने इंटरव्यूज में बताया है कि कई धुनें उनके सपने में आई हैं। तो आइए वो गाने सुने जिनकी धुनें राहुल देव बर्मन को सपने में सूझी। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गाना।

के लिए जाया करते थे और कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन्हें देखकर फुसफुसाता, देखो देखो सचिन देव बर्मन जा रहे हैं। एक दिन दिलचस्प घटना हुई। एसडी बर्मन टहल रहे थे और पीछे से किसी ने कहा, देखो देखो राहुल देव बर्मन के फादर जा रहे हैं। सचिन देव बर्मन का सीना गर्व से फूल गया। घर जाकर उन्होंने आरडी से ये कहा कि लगता है अब तुम वाकई कामयाब होते चले जा रहे हो।

नासिर हुसैन तीसरी मंजिल बना रहे थे और उसके लिए एक नए संगीतकार की तलाश थी जो अपनी तरह से एक्सपेरिमेंट करे। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने राहुल देव बर्मन को लेने की सिफारिश की। ये वो दौर है जब तीसरी मंजिल के हीरो देव आनंद थे। आगे चलकर किस्मत ने पलटी खाई, देव आनंद इस फिल्म से बाहर हो गए और उनकी जगह शम्मी कपूर आ गए। जब ये खबर राहुल देव बर्मन को मिली तो उन्हें लगा किस्मत ने धोखा दे दिया, ये फिल्म तो अब हाथ से गई, क्योंकि सारी दुनिया जानती थी कि शम्मी कपूर के प्रिय हैं शंकर जयकिशन और शम्मी कपूर और जयकिशन तो बड़े पक्के दोस्त हैं। लेकिन यहाँ किस्मत ने काम किया। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन ने शम्मी कपूर से कहा कि पंचम में बहुत दम है, तुम उसकी धुनें सुनो तो सही। और बस यही हुआ। एक दिन शम्मी कपूर पंचम के पास पहुंचे और बोले, ए पंचम जरा धुनें सुनाओ। जैसे ही दो लाइनें पंचम ने सुनाई तो पता चला कि शम्मी कपूर ने ये गाना दार्जिलिंग में किसी चौकीदार को गाते हुए सुना था। और तुरंत शम्मी कपूर ने रोका और कहा, रुक जाओ, ये धुन तो मैं जयकिशन को देने वाला हूं। अब पंचम को लगा ये फिल्म मिलने वाली नहीं है। लेकिन धीरे धीरे काम आगे बढ़ता चला गया और हुआ ये कि न केवल नासिर हुसैन खुश हुए पंचम से, बल्कि शम्मी कपूर भी बहुत खुश हो गए। तीसरी मंजिल का जो गाना इस ट्यून पर था वो है ये।

सन 1964 में तीसरी मंजिल आई। इस फिल्म में जैज को बड़ी रचनात्मकता के साथ पंचम ने इस्तेमाल किया था और पंचम के खाते की ये एकमात्र हिट फिल्म थी। जब आराधना का संगीत तैयार हो रहा था तो आरडी बर्मन ने सचिन देव बर्मन की मदद की थी, वो उनके असिस्टेंट के तौर पर रहे थे। शक्ति सामंत को उनका काम अच्छा लगा और उन्होंने फिल्म कटी पतंग उन्हें दे दी थी। कमाल की बात यह है कि कटी पतंग में अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन पंचम ने किया और सही मायनों में अपनी पतंग आसमान में बहुत ऊंचाई पर तान दी।

ये गाना राग खमाज और राग कलावती पर आधारित है, लेकिन इसमें वेस्टर्न म्यूजिक के कॉर्ड्स का अद्भुत संयोजन दिखाई देता है। कमाल की बात यह है कि एक तरफ भारतीय शास्त्रीय संगीत और दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत, दोनों का जबरदस्त संयोजन करने में पंचम बड़े माहिर थे। एक समय की बात है, राजकमल स्टूडियोज में पंचम किसी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार कर रहे थे, तभी गुलजार वहां पहुंचे और उन्होंने अपने एक गाने का मुखड़ा पंचम को सौंप दिया। ये गाना था परिचय फिल्म का, मुसाफिर हूं यारों। गुलजार चले गए।

पंचम ने अपना काम जारी रखा। रात हो गई। गुलजार गहरी नींद में सो रहे थे। रात के एक बजे फोन की घंटी बजी। गुलजार ने उनींदे होकर फोन उठाया तो पंचम थे। कहने लगे, तुरंत नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए ट्यून लेकर आया हूँ। गुलजार नीचे उतरे। पंचम ने गाड़ी में कैसेट प्लेयर पर वो धुन गुलजार को सुनाई और पूरे बैंड्रा में ड्राइव करते रहे। बैंड्रा मुंबई का एक उपनगर है, आप तो जानते ही हैं। कार के डैशबोर्ड पर रिदम बजाते रहे और इस तरह से उन्होंने गुलजार को अपनी पहली ट्यून गुलजार के लिए जो बनाई थी वो सुनाई। आगे चलकर गुलजार और पंचम ने इतिहास रचा। फिल्म आंधी के लिए संगीत तैयार किया जा रहा था। ये वो दिन थे जब पंचम कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए बांग्ला गाने तैयार कर रहे थे। गीतकार गौरी शंकर ने बहुत ही बढ़िया एक धुन पंचम को दी। पंचम उस पर गाना बना रहे थे, तभी गुलजार को ये धुन पता चली और उन्होंने इस धुन में शब्द पिरो दिए। इस तरह बना फिल्म आंधी का ये

गुलजार और आरडी बर्मन के बीच हमेशा रचनात्मक चुनौतियां चलती रहती थीं। एक बार गुलजार मेरा कुछ सामान, जो फिल्म इजाजत का मशहूर गाना है, उसकी इबारत लेकर पंचम के पास पहुंचे और कहा इसकी धुन बनानी है। पंचम ने वो पूरी इबारत पढ़ी और गुस्से में कहा, कल को तुम कोई समाचार पत्र मेरे पास ले आओगे और कहोगे कि इसकी भी धुन बना दो, ये भी कोई बात हुई। लेकिन पंचम ने इसी गाने की अनमोल धुन बनाई और गुलजार और आशा भोसले को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार और सर्वश्रेष्ठ गायिका के राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। एक दिन पंचम गीतकार गुलशन बावरा के घर पहुंचे, कॉल बेल बजाई, दरवाजा गुलशन बावरा की पत्नी अंजू ने खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, पंचम गाने लगे, मक्के की रोटी पकाना अंजू, सरसों का साग पकाना अंजू, और उन्होंने गुलशन बावरा को ये इशारा किया कि यही मेरी धुन है, गाना तैयार करो। वो गाना था

आइए अब पंचम के गानों के प्रयोग पर एक नजर डालते हैं, किस तरह से गानों में वो अलग अलग साउंड तैयार करते थे। फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा, जरा इसका ये शुरुआती संगीत सुनिए। ये संगीत दरअसल एक खाली बोतल को फूंक कर निकाला गया है। फिल्म यादों की बारात के मशहूर गाने का ये शुरुआती संगीत। ये संगीत ग्लास को चम्मच से बजाकर निकाला गया है। फिल्म डार्लिंग डार्लिंग का ये गाना सुनिए।

जब इस गाने के लिए रिदम की जरूरत हुई तो पंचम ने अपने ढोलक और तबला वादक अमृत राव काटकर की शर्ट उतरवा ली और उनकी पीठ पर अपने हाथों से ये रिदम बजाया।

फिल्म चरित्रहीन का ये गाना सुनिए। इस गाने का रिदम उल्टी टिम्पनी यानी केटल ड्रम को पलट कर रख कर बजाया गया है और इस तरह से निकाला गया है। अब जरा ये गाना सुनिए। इस गाने में ये जो रिदम है इसे सैंड पेपर को घिसकर और बांसों को आपस में टकराकर आवाज तैयार की गई है।

फिल्म पड़ोसन का ये गाना सुनिए। ये जो कंघी की आवाज है ये दरअसल मेटल के बने लैटिन अमेरिकन स्क्रैपर से तैयार की गई है।

पंचम ने हिंदी सिनेमा के गाने तैयार करते हुए कई ऐसी ध्वनियां दी जिनसे पहले न तो संगीतकारों का परिचय था और न ही गाने सुनने वाले इन ध्वनियों को जानते पहचानते थे। पंचम ने तो न जाने किन किन चीजों से ध्वनियां निकाल ली। वो साउंड के सही मायने में जुनूनी थे, मास्टर थे। पंचम को वेस्टर्न म्यूजिक में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि सन 1987 में उन्होंने एक लैटिन अमेरिकन रॉक एल्बम निकाला था जिसका नाम था पंटेरा। हालांकि ये एल्बम 1983-84 में रिकॉर्ड हो चुका था लेकिन इसे रिलीज करने में बहुत वक्त लग गया था। बहुत मन से उन्होंने इस एल्बम को तैयार किया था। वैसे पंचम ने हिंदी फिल्मों में अंग्रेजी गाने देने का कमाल भी किया। यश चोपड़ा की फिल्म दीवार 1975 में आई थी जिसमें पंचम ने उर्सुला वास से ये गाना गवाया था।

वैसे पंचम ने कई पाश्चात्य धुनों को बहुत अलग अंदाज में अपनी पैकेजिंग के जरिए अपना बनाया, नया रूप दिया और उन्होंने इसे हिंदी में पेश किया, जिसे फिल्म शोले का गाना महबूबा महबूबा असल में टेमिस रूसो का बनाया हुआ है और ये एक ट्रेडिशनल साइप्रस ट्यून है। पॉप सिंगर अब्बा का एल्बम आया मामा मियां, इस गाने से प्रेरित होकर पंचम ने बनाया

इसी तरह से बॉन जोरा का एक गाना है, इफ इट इज वेडनेसडे इट मस्ट बी बेल्जियम। इस गाने का हिंदी रूप पंचम ने बनाया फिल्म यादों की बारात में।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने पंचम की गाथा सुनाई, हमने पंचम के कुछ गानों के बनने की कहानी, ध्वनियों के उनके अभिनव प्रयोग भी बताए। पंचम की ये दास्तान कभी खत्म नहीं हो सकती। उनका संगीत संसार इतना विस्तृत और विराट है कि आधे घंटे के इस समय में उसको समा पाना संभव

0: आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा छाया गीत कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती पेस्ट।

0: आइए सुने छाया गीत। सुनने वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार। रात गहरी है मगर चांद चमकता है अभी, मेरे माथे पे तेरा प्यार दमकता है अभी। ये चांद भी मेरी तरह तन्हा है बहुत ज्यादा, एक से मुसाफिर हैं, एक सा मुकद्दर है। मैं जमीन पर तन्हा और वो आसमान में, आज रात के दश्त में फूल खिले हैं भूली बिसरी यादों के। सीने में रोशन है दिल, दिल में रोशन इश्क तेरा। सीने में रोशन है दिल, दिल में रोशन इश्क तेरा। उफ, चिराग पे चिराग रख दिए हैं तुमने
1: आपके हसीन रुख।

मैं तो हर रात यही सोच के सोता हूँ, कल सुबह शायद तेरे दीदार का सूरज निकले। हर रोज तेरे ख्वाब लिए आंखों में दर बदर घूमता फिरूं मैं। एक चेहरा है जो आंखों में बसा रहता है, एक तसव्वुर है जो तन्हा नहीं होने देता। इश्क किसी को बताना नहीं पड़ता, आंखें खुद ही सब कुछ कह देती हैं। ये प्यार जो है तुझसे मेरा, किसी किताब में नहीं लिखा गया। तेरी आंखों में डूबा तो जाना कि मोहब्बत क्या होती है। बोझल हैं आंखें मगर नींद नहीं आती। वो तेरी सांसों की गुलाबी खुशबू, दिल भी खाली खाली है बहुत। तू मेरी रूह का हिस्सा था, मेरे चारों तरफ चांद की तरह से रक्षा था। वो भी क्या जमाने थे जब हम रोज मिला करते थे।

जब पहले पहल तुझे देखा था, दिल कितनी जोर से धड़का था। वो लहर न फिर दिल में जागी, वो वक्त न लौट के फिर आया। सब्ज मध्यम रोशनी में सुर्ख आंचल की धनक, सर्द कमरे में मचलती गर्म सांसों की महक, रेशमी बाहों में चूड़ी की मध्यम खनक, शर्म की लहजों में धीरे से कभी चाहत की बात, दो दिलों की धड़कनों में गूंजती थी एक सदा। उधर धूप डल रही थी, इधर दिल डूबता जा रहा था। हाँ, आज तलक याद है वो शाम जुदाई मुझको।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। साथियों, शायरी एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें जाहिराना तौर पर रंग बिरंगे फूल हैं। ये दिल बहलाने का एक तरीका है साहब, जिसे हम पा नहीं सकते, उसे अल्फाजों में जी लेते हैं। वो उसका नर्म मुलायम लहजा, जैसे ढलती सांझ की लाली नर्म कोमल सुरों में कोई प्यार की बात कहने चली हो। उसकी हंसी की रिमझिम कि जैसे फजा में नीली, बहुत हल्की नीली सी चमकदार बूंदों के घुंघरू छनकने लगे हों, कि फिर उसकी आवाज की छुवन से हवाओं के हाथों में अनदेखे कंगन खनकने लगे हों। वही लहजा जब भी मुझे छेड़े है, यादों में, ख्वाबों में, ख्यालों में, तो ऐसा लगे जैसे सावन की चंचल हवा सब्ज पत्तों के झांझन पहन सुर्ख फूलों की पायल बजाती हुई मेरे रुखसार को गाहे गाहे शरारे से छूने लगे।
1: तड़प ये दिन रात की कसत।

पे, पलकों पे, होठों पे, माथे पे, रुखसार पर फूल ही फूल होंगे। मेरा चेहरा तुम्हारी नज़मों, तुम्हारे गीतों की चिलमनों से उभर रहा होगा। तुम्हारी आंखों में छुपे समुंदरों में डूब जाएंगी मेरी आंखें। इतना तो किसी ने तुम्हें चाहा भी ना होगा जितना मैंने सिर्फ सोचा है तुम्हें। सच वो चांद है इश्क, जो दिखता सबको है, मगर उसे पाना हर किसी के बस का काम नहीं।

देखते देखते तारों का सफर भी खत्म हो गया, चांद भी सो गया, मगर नींद न आई मुझको। कौन था तू कि फिर न देखा तुझे, मिट गया ख्वाब आंख मलते ही। वो कौन है उससे तुम्हें वाकिफ भी नहीं हूं, जो मुझको किसी और का होने नहीं देता। हमें चाहिए था मिलना किसी अहदे मेहरबान में, किसी ख्वाब के यकीन में।

साथियों, आज के छाया गीत का सफर बस यहीं तक। गीत संगीत की ऐसी ही सुरीली महफिल में फिर होगी मुलाकात। शेफाली कपूर को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

विविध भारती, आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपके दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी जोधपुर के FM सेंसिटी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में। दोनों ही समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक बंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद

बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लिएंड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: In southern Lebanon, an Israeli drone strike hit the Nabatea area a day after Israel and Lebanon signed a U.S. brokered framework for Israeli withdrawal and restoring Lebanese state authority. In the FIFA World Cup, Panama will take on England in Group L match at East Rutherford in U.S. tonight. In another Group E fixture, Croatia will face Ghana at Philadelphia in U.S. And that is the end of this news bulletin.
1: FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी जोधपुर का ये FM सेंसिटी चैनल है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की सेवा यहीं संपन्न होती है। कल सवेरे 5:55 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।